मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, सक संवत 1948 के आषाढ़ मास की नवी तिथि, तदनुसार 30 जून सन 2026 सुबह के 5:59 होने को हैं। अब आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव और प्रसार भारती की ऑफिशियल एप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 6 बजने को है समाचार, कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है।

0: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं समूह स्वर में मातृवंदना।

अभी आपने सुना कृष्ण भजन अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के स्वर में। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनते हैं महेंद्र कपूर के स्वर में भगवान श्री हनुमान लला की आरती।

कार्यक्रम के अंत में अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में श्री हनुमान लला जी की आरती। इसी के साथ आज की वंदना संपन्न होती है।

मीडियमवेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती किसानी। विषय होगा अधिक दुग्ध उत्पादन हेतु आहार प्रबंधन। श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण समय रहेगा 6:40 पर। गायक स्वर होगा मालिनी नामव्याल का और संगीत संयोजन होगा सतीश भाटिया का। चिंतन सुनिए 6:50 पर। 7:20 पर बुंदेली सुगंध कार्यक्रम में सुनिए बुंदेली किस्सा सुरहिन गऊ। कहानीकार होंगे ओम प्रकाश तिवारी।

फिल्म संगीत का आनंद लीजिए सुबह 7:30 पर, शाम 5:40 पर और रात 8:00। सुबह 8:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे पंडित राजन साजन मिश्र से राग ललितमय गायन। सुबह 9:00 सुनी बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग, इसमें आज कलाकार होंगी रजनी भास्कर। 9:30 पर सुनिए एक ही गीतकार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसिद्ध गीतकार लेखिका कौसर मुनीर के लिखे कुछ फिल्मी नगमे। 10:00 सुनिए आकाशवाणी भोपाल केंद्र से जिले की चिट्ठी। 10:05 पर सुनिए पत्रिका कार्यक्रम फिल्मी पत्रिका, प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। इसमें आज आप सुनेंगे वार्ता भारतीय सिनेमा में महिलाओं की हिस्सेदारी, वार्ताकार होंगे देवदत्त सूर्यवंशी।

दिन में एक बजे सुने कार्यक्रम महिला सभा। इसमें महिलाएं सुनेंगी वार्ता योग और प्राणायाम का महत्व। वार्ताकार होंगे रामकुंवर पटेल। साथियों की उपयोगी जानकारी शाम 5 बजे युवा साथी

साथियों के लिए युवा वाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें युवा साथी सुनेंगे वार्ता, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। वार्ताकार होंगी कमला पटेल, साथियोगी रोजगार सूचना। शाम 6 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी, जिसका अनुप्रसारण आकाशवाणी भोपाल केंद्र से किया जाएगा। शाम 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आज कलाकार होंगे धनीराम अहिरवार।

0: शाम 7:20 पर सुनिए ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घरनी। इसमें महिलाएं सुनेंगी श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। वार्ता में सुनिए पीएम मुफ्त सूर्य घर योजना का लाभ एवं फायदे। वार्ताकार होंगे ब्रजेश कुमार पुष्पद और आज की सीख होगी जो जिए सो खेले फाग। रात 10 बजे सुनिए श्रोताओं की ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनभावन। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आज हम अनुप्रसारित करेंगे। दिन में 11 बजे सुनिए फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दिन में 12 बजे और दोपहर 2:30 पर। 12:30 पर सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा दिन में 1:30 पर और सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1:45 पर। 2 बजे सुनिए फिल्म संगीत। आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से आज हम अनुप्रसारित करेंगे रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक और 9:45 पर सुनिए कार्यक्रम मंथन। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। किसान भाइयों के लिए लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती किसानी। विषय अधिक दुग्ध उत्पादन हेतु आहार प्रबंधन।
1: आज की खेती किसानी में अपने पशुपालकन से अपने पशुधन से अधिक दूध को उत्पादन प्राप्त करने के तरीकन की कछु चर्चा हम कर रहे हैं। अपने दुधारू पशुओं से अगर अपन दूध अधिक ले वो चाहत है तो जरूरी है कि उनके आहार प्रबंधन में सुधार करके पोषक आहार पशुओं का उपलब्ध कराएं। जब अपन रोज पर्याप्त चारों पानी अपने जानवरों का देत हैं, तो जो सवाल मन में और वो मुनासिब है कि जो आहार प्रबंधन या पोषक आहार का और कैसे होते है, तो जो जानवे के लाने ध्यान से सुनो। ऐसो आहार प्रबंधन जिसे अपने जानवरों के शारीरिक विकास व शारीरिक आवश्यकता वाले सभी तत्वों की पूर्ति आसानी से हो जावे, एक उम्दा पोषक आहार कहाउत है। भैया उम्दा पोषक आहार अपने जानवरन की खुराक तो पूरी करता ही है, संगे संगे उनकी प्रजनन शक्ति बढ़ावे में, दूध की मात्रा बढ़ावे में, फेट यानी दूध में घी की मात्रा बढ़ावे में भी सहायक होत है। मांगी खरी दाना या फिर बाजार में बिकवेई वालो बनोबनाओ पशु आहार पोषक आहार है या होत है, ऐसो सोचबो या मानबो बिल्कुल गलत है। इमें खर्चा करवो अपने पशुपालन की लागत बढ़ावो आए। इके एवज में तनासी जानकारी जुटा के थोड़ी सी मेहनत करके और वैज्ञानिक तरीका से अपन अपने घर में बहुत ही उम्दा शुद्ध सस्तो और संतुलित पोषक आहार अपने जानवर के लिए तैयार कर सकत है। पशु आहार में सूखी घास और हरो चारो मुख्य है। जी में हरे चारे को बहुत ही ज्यादा महत्व है और इसे अपने जानवर का कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन भैया हरे चारे की पूर्ति अपन पूरे साल तो कर नहीं सकत। पे समस्या को समाधान अपने पशुपालक भैया हरे चारे को साइलेज बना के कर सकते हैं। अब जो जरूर अपन जानवो चाहो कि जो साइलेज कैसे बनत, चलो जो भी हम बता रहे तना ध्यान से सुनो। साइलेज खा अपन हरे चारे को अचार भी कह सकत, जो मक्का ज्वार बाजरा दलहनी चारे आदि फसलों से तैयार करो जात है। साइलेज तैयार करवे के लाने 3 मीटर लंबो 1.25 मीटर गहरो और 2 मीटर चौड़ो गड्ढा अपन का करने है, जी की तरी और दीवारें गोबर में BSC पाउडर मिला के लीप के चिकनी कर देने हैं। जब गड्ढा अच्छे से सूख जावे तो चारों को सूखे घास की एक परत लगा देने हैं। इतनो करवे के बाद अच्छी रसीली अवस्था में 4 से 5 सेंटीमीटर आकार को हरो चारो काट काट के गड्ढा में दबा दबा के ठास ठास के ठूस के भरत जाने, जिसे ऊके भीतर हवा ना जान पावे। अगर अपन दलहनी चारे से साइलेज बना रहे हो तो 2-2 फुट के

0: चारे की परत के बाद गुड़ या शक्कर के पानी को घोल भी छिड़कत जाने। भैया ऐसो करत कर जब गड्ढा पूरा भर जाए तो फिर सूखी घास या भूसा से ढक के मिट्टी और गोबर से लीप के बंद कर दें। 50 से 60 दिन में अपने जानवर खिलाने साइलेज बन के तैयार हो जाए है। जी में ताजे हरे चारे से भी ज्यादा पोषक तत्व राहत है, जल्दी पचे वालो होत, और सबसे अच्छी बात इखा पूरी साल अपन दूध दे वाले जानवर खा हरे चारे के रूप में खवा सकत है। तैयार साइलेज खा जानवर खा डारवे के लाने जब अपन निकारे तो ध्यान रखने है कि एक तरफी से गड्ढा का खोल के निकारे और फिर बंद कर दें। अपन बाजार के खरीदे पोषक आहार में 25% की कटौती कर दें और अपने घर में अपने हाथन तैयार साइलेज दूध देवे वाले जानवर का खवाए तो हमारी जाय कई माने रहियो उन जानवर की दूध देवे की मात्रा घट तो सकत नहीं है, बढ़ चाहे जितनी जाए। ई के अलावा 4 किलो यूरिया को घोल 60 लीटर पानी में और 10 किलो गुड़ को घोल 8 लीटर पानी में अपन बनाए। एक बड़ी बरसाती पे 100 किलो सूखो चारों या भूसा फैला के इपे एक फब्बारे से यूरिया और गुड़ के मिश्रण के घोल को छिड़काव करके उपचारित करें। 2 हफ्ता के लाने चारों कोच से ऐसो बंद करके पॉलीथीन से रखें कि उनमें तनकु हवा न जान पावे। इखा धूप और बरसात से भी अपन का बचाव ने है। 2 हफ्ता बाद उपचारित भूसा या चारे खा 3-4 घंटा के लाने खुलो छोड़ देने है जिसे उमे बनी अमोनिया गैस निकल जावे। भैया ई प्रकार से उपचारित भूसा हवा की अनुपस्थिति में नाइट्रोजन खा प्रोटीन में बदल के अपने भूसा या सूखे चारे खा एक उम्दा पोषक आहार में बदल देते है। 21 दिन बाद 6 महीना से छोटे जानवर खा छोड़ के सबरे दूध देवे वाले और अन्य सभी जानवर खा अपन खूब खवा सकते हैं। तो सबरे पशुपालक भैया नई बचारन के संगे पूरे वैज्ञानिक तरीका से अपने घर में अपने जानवरन को संतुलित पोषक आहार को निर्माण कर सकत और पोषक आहार के प्रबंधन की समस्या से छुटकारा पाके दुग्ध उत्पादन की मात्रा बढ़ा सकत हैं। ऐसो करे में अपन खा लाभ भी हुई है और पशुपालन की लागत में कमी भी आ है।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसानी। विषय था अधिक दुग्ध उत्पादन हेतु आहार प्रबंधन। मीडियम वेव और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार हैं मालिनी नामव्याल और संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

कामदेव को भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए भेजना देवताओं की एक चाल थी जिसमें वे सफल हुए थे, किंतु शिव के तृतीय नेत्र के खुलते ही कामदेव के भस्म हो जाने की घटना से देवगण एक बार फिर हतोत्साह हो गए। रति के रोने बिलखने से द्रवित होकर भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया कि उसका पति कामदेव अब से अनंग होकर सभी प्राणियों को व्यापेगा। इस वरदान से देवताओं का मनोबल बढ़ा और ब्रह्मा तथा विष्णु समेत सभी देवता शिव जी के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने अनंग के रूप में कामदेव को पुनर्जीवन देने के लिए शिव जी की प्रशंसा की। देवगण ने तब पार्वती के अपार तप का वर्णन करते हुए शिव जी से उन्हें पत्नी रूप में अंगीकार करने की प्रार्थना की। अपने आराध्य श्री राम के वचन याद करके शिव जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस खान मीडियम पर, ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
1: मनुष्य द्वारा किए गए हर एक कार्य में उसे प्रशंसा मिले ये जरूरी तो नहीं है, कभी उसे आलोचना भी मिल सकती है, उसके किए गए कार्य में कमियां भी निकल सकती हैं। इसलिए हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हमारी आलोचना भी हो सकती है। सामान्यतया अपनी विधा में कुशल व्यक्ति अपने कार्य में कमियां नहीं निकाल पाता, और ऐसे में यदि कोई दूसरा उसकी कमियों को इंगित करता है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कमियों को स्वीकार करने से ही उसे दूर करने का प्रयास हो पाता है, और ऐसा करने से उसे लाभ ही होगा। कबीरदास जी ने भी अपने एक दोहा में कहा है, निंदक निगरे डाकिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। ये सच है कि हमें आलोचना से ज्यादा प्रशंसा सुनना ही अधिक अच्छा लगता है। आलोचना सुनने से मन में तकलीफ और चौपन सी महसूस होती है, और जो हमारी कमियां निकालता है वो फिर हमें बिल्कुल नहीं भाता। लेकिन हर किया जाने वाला कार्य सर्वोत्तम हो ये जरूरी तो नहीं है, उसमें गलतियां भी हो सकती हैं। इसीलिए गलतियों को स्वीकार करके सुधारने में ही व्यक्ति का हित छिपा है। वैसे लोग कार्यों की तारीफ ही करते हैं, बुराई या कमियां नहीं देखते, क्योंकि ये सभी को पता है कि त्रुटियां निकालने से सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाएगा। इसीलिए गलतियां होते हुए भी वो प्रशंसा कर देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कमियां देखते ही उसे उजागर कर देते हैं। यदि कमियां ना हों और जबरदस्ती कमियां निकालने की कोशिश की जा रही हो तो ऐसे व्यक्ति से सावधान रहने की जरूरत है। जब कोई अन्य व्यक्ति हमारी कमियां निकालता है या गिनाता है तो वो कमियों के द्वारा हमारे जीवन के उन द्वारों को खोलने में हमारी मदद करता है जिनके द्वारा हम नई राहों पर चल सकते हैं। जितनी कमियां होंगी हमारे बढ़ने के रास्ते उतने ही अधिक होंगे, बशर्ते हम अपनी उन कमियों को नजरअंदाज ना करें। इसी प्रयास में हमें नई राहें और आगे बढ़ने के नए रास्ते मिलेंगे, यही रास्ते हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति अपने कार्य में सफल होता है वो उन व्यक्तियों को जरूर याद करता है जिनकी आलोचना के कारण उसने आगे बढ़ने का निश्चय किया, जिनकी चोटिल बातों से वो आहत जरूर हुआ लेकिन उन्हीं को याद करते हुए वो निरंतर आगे बढ़ता रहा। ये सच है कि बुराइयां तीखी कड़वी तीर के समान चुभने वाली होती हैं जो गहरा घाव देती हैं, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि इन्हीं के कारण हम अपने जीवन में वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो शायद पहले कभी कर ही नहीं सकते थे। इसलिए आलोचना करने वाले के प्रति मन ही मन आभार व्यक्त जरूर करना चाहिए कि उन्होंने हमें सच का आईना दिखाया जो हर कोई नहीं दिखाता। देखा जाए तो आलोचना करने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक हमारे शुभचिंतक और दूसरे प्रतिद्वंदी या अहित सोचने या करने वाले। शुभचिंतक व्यक्तियों की आलोचना में सकारात्मकता छिपी होती है, हमारा हित करने का भाव होता है, जबकि अहित करने वाले व्यक्तियों की आलोचनाओं में नकारात्मक भाव छिपा होता है। वे जो भी हमें बताते दिखाते हैं उससे मन में नकारात्मक प्रभाव का प्रवेश होता है। इन दोनों की आलोचना को समझ

0: लिखते समय हमें सावधान रखना चाहिए और शुभ चिंतकों की बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे सच्चे मित्र और संबंधी हमारा हित ही चाहेंगे। वे अपनी राय देकर हमारी मदद ही करना चाहेंगे। हमें नीचा दिखाना या गर्त में ढकेलना उनका उद्देश्य नहीं होता। इसलिए शुभ चिंतकों की राय को बड़े ध्यान से सुने, बल्कि सुने ही नहीं उस पर अमल भी करें, और उन आलोचकों को अनसुना करें जो वास्तविकता से परे हैं, जिनकी नकारात्मक कल्पनाएं हैं। जब हम आलोचनाओं को सहन करना सीख जाते हैं तो हम अपने आप को पहले से ज्यादा संतुलित बना पाते हैं। फिर आलोचनाओं का सही जवाब देना भी हम जान जाते हैं। हमारा अहंकार हमारे सोचने समझने की क्षमता को सीमित करके रखता है, जो हमारी व्यक्तिगत प्रगति और स्वास्थ्य संबंधों के लिए ठीक नहीं है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि हर बात पर तारीफ करने वाले लोग हमें लाभ के बजाय हानि या नुकसान अधिक पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोग आने वाले खतरों से हमें आगाह नहीं कराते और हमारी चेतना को भी जागृत बनाने के बजाय सुप्त करते हैं। इसलिए आलोचनाओं को स्वीकार करके हम वास्तविकता से अधिक परिचित होते हैं, अधिक जागरूक होते हैं और जीवन में दूसरों से सही व्यवहार करना भी सीखते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखें कि हम अपने जीवन में जितना आगे बढ़ते जाते हैं आलोचनाएं उतनी ही बढ़ती जाएंगी। कोई बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हुए हम अपनी बुराइयों को स्वस्थ भाव से स्वीकारें, क्योंकि समय के साथ हमें इस बात का अभ्यास भी हो जाता है कि किन्हें स्वीकारना चाहिए और किन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए। लेकिन सार बात यह है कि हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए अपनी गलतियों को सुनना, उस पर विचार करना, कमियों को सुधारना हमें आगे बढ़ाने में सक्षम और समर्थ बनाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। मीडियम वेव और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। सुनिए समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने ह्यः 26,000 द्वितीय रक्षा अलंकरण समारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मूवर्या शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। शौर्य पुरस्काराः रक्षा सैन्य बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, केन्द्र शासित आरक्षकाणां, कार्मिकाणां च कृते प्रदीयन्ते। एते पुरस्काराः सशस्त्र बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षिबलानां, अन्य सुरक्षा अभिकरणानां च कार्मिकाणां असाधारण शौर्य कार्यान् उद्दिश्य प्रदीयन्ते। राष्ट्रपतिना समारोहे 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदकानि, 30 परम विशिष्ट सेवा पदकानि, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदकानि, 50 अतिविशिष्ट सेवा पदकानि च वितरितानि। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, अन्ये केन्द्रीय मंत्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाः अधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः मुर्मुः वर्या इतः पूर्वं अस्मिन् मासे 8 राष्ट्रपति भवने रक्षा अलंकरण समारोहे प्रथम चरणस्य शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः अवदत् यत् तस्य सेशेल्स देशस्य यात्रा महत्वपूर्णैः परिणामैः पूरितम् आसीत्, येन भारत सेशेल्स देशयोः मैत्री प्रवर्धिता भविष्यति। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् विगत 15 वर्षेषु उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धः सुदृढ विश्वासेन संयुक्त प्रगतिना च चिह्नितः अस्ति। यदा तु आगामि 50 वर्षाणि नवान्वेषणेन सुस्थिरतया संयुक्त समृद्ध्या च निर्धारिताः भविष्यन्ति। सः सेशेल्स देशस्य स्वातन्त्र्यस्य 50 वर्षे राष्ट्रिय दिवसस्य समारोहे भागग्रहणाय हर्षं प्रकटितवान्। श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपत्ये डॉ पैट्रिक हर्मिनी इत्यस्मै सेशेल्स देशस्य सर्वकाराय, जनानां च स्नेहाय धन्यवादम् अददात्। राष्ट्रिय निवेशावसंरचना कोषस्य नीफ इत्यस्य कृते सर्वकारस्य समग्र प्रतिबद्धता अधुना 60,000 कोटि रूप्यकाणि अभवत्। एतदुपक्रमं मूलसौकर्याणां कृते अन्येषु

0: राष्ट्रिय महत्वपूर्णेषु क्षेत्रेषु च केन्द्रस्य निवेश प्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन गतसप्ताहे आधारभूत संरचना निवेशस्य गतिं वर्धयितुं देशे संस्थागत मूलधनम् उत्प्रेरयितुं च निधौ 30,000 कोटिरूप्यकाणां अतिरिक्त निवेश प्रतिबद्धतानुमोदिता। केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य आरभ्य पूर्वोत्तरस्य द्विदिवसीय यात्रायां भविष्यति। श्री चौहानः असम राज्यस्य गुवाहाटी नगरे उच्चस्तरीय समीक्षा सभायाः आयोजनं करिष्यति। सभायाम् असम राज्यस्य समीपस्थेषु क्षेत्रेषु सस्येषु ग्रामेषु महत्वपूर्ण जलसंरचनायां च जलप्लावस्य प्रभावस्य समीक्षा भविष्यति। वर्तमान सहायोद्धार कार्याणां प्रगतेः समीक्षापि भवितुं शक्नोति। असम राज्यस्य समीक्षायाः अनन्तरं श्री चौहानः श्वः अरुणाचल प्रदेशस्य जलप्लावित क्षेत्राणां निरीक्षणं विधास्यति। सः जलप्लावितानां ग्रामाणां कृषिक्षेत्राणां सहायोद्धार शिबिराणां च स्थित्याः मूल्यांकनं कर्तुं वायुमार्गेण भूमार्गेण च सर्वेक्षणं करिष्यति। जुलाई मासस्य तृतीय दिनांकादारभ्यमाणस्य 75-दिवसात्मिकायाः वार्षिक अमरनाथ यात्रायाः प्राक् सुरक्षा संस्थाः पंजाबतः जम्मू कश्मीर पर्यन्तं तीर्थयात्रामार्गे सज्जतां तीव्रीकृतवन्तः। मोक ड्रिल इति आचरन्ति, निरीक्षण प्रणालीं सक्रियं कुर्वन्ति। सहस्रशः तीर्थयात्रिणां सुरक्षित गमनागमनं सुनिश्चेतुं अन्ता संस्था समन्वयं सुदृढं कुर्वन्ति च। वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध हट जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, इस वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसीलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियमन भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के दो दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की

0: क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति कल से चरणबद्ध ढंग से लागू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अगले 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत जबकि 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर एक एक गोल की बराबरी पर थीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है जबकि जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Minister of Petroleum and Natural Gas said that with effect from tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets or public sector oil marketing companies. According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. Union Information and Broadcasting Ministry has announced 2 major decisions aimed at boosting the Indian film industry. The decisions were taken at a high-level review meeting chaired by Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav in New Delhi yesterday. We have a report.
3: The meeting focused on measures to enhance film production, improve distribution networks and integrate emerging technologies into the Indian cinema ecosystem. The ministry said the initiatives are intended to make Indian cinema more globally competitive while encouraging investment in cinema infrastructure, particularly in smaller towns and rural areas. A high-level study group under the chairmanship of Prasar Bharati Chairman Prasoon Joshi has been formed, which will study the opportunities and challenges before Indian cinema. It will suggest ways to strengthen the sector and recommend measures to make Indian films more competitive globally. The ministry has also prepared a model state cinema regulations for adoption by the states. The rules have been sent to all state governments with a request to adopt them. This move will help build a strong, modern and globally competitive Indian film industry. With Soumya and Aman, this is Chirag Jha from News Desk.
2: West Bengal government has decided to implement the Uniform Civil Code UCC in the state. Chief Minister Subhendu Adhikari announced in the assembly that a draft proposal of the bill will be presented at the scheduled state cabinet meeting on Thursday. Following the models of Gujarat, Uttarakhand and Assam, a committee has been formed under the leadership of retired Supreme Court Judge Justice Ranjana Desai. Chief Minister stated that the committee will conduct a study on a total of 9 subjects, including marriage, divorce and adoption, and submit its report within 4 weeks, based on which the state government will formulate the code. However, he clarified the scheduled tribes, Adivasis, Kurmis and ancient indigenous communities will be kept outside the purview of this law. Delhi Cabinet has approved the Delhi Electric Vehicle EV policy. set for a phased 4-year rollout starting from the 1st of July.

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में शामिल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा। जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह आज, मुख्यमंत्री राजगढ़ जिले के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कड़ी सुरक्षा के बीच 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में अपनी जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली में डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आयोजित डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च कार्यक्रम में आरोग्य सेतु 2.0 सहित कई नई डिजिटल स्वास्थ्य पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में शामिल है और इन पहलों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक एकीकृत, सुलभ, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना है।
2: Applications launch was going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
1: इस अवसर पर मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू भी हुआ। इसके तहत आगामी 3 वर्षों में पीएम केयर्स के माध्यम से प्रदेश को 13 एमआरआई मशीनें, 11 मेमोग्राफी मशीनें तथा 308 एआई सक्षम हैंडहेल्ड एक्सरे उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे प्रदेश में स्वास्थ्य एवं निदान सेवाओं को उल्लेखनीय मजबूती मिलेगी तथा आधुनिक

0: स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के साथ उनके संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किए गए जलगंगा संवर्धन अभियान का आज समापन हो रहा है। इस अभियान के संचालन में राजगढ़ जिले को भोपाल संभाग में प्रथम स्थान मिला है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के विकासखंड सारंगपुर के अंतर्गत भैंसवा माताजी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और जिले के 352 करोड़ रूपये के विकास कार्यो का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल और सांसद रोडमल नागर भी उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि जलगंगा संवर्धन अभियान की इस अल्पावधि में ग्रामीण, नगरी, वन, सिंचाई, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न स्तरों पर लगभग 3,62,000 से अधिक जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य सफलतापूर्वक क्रियान्वित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुना जिले की बमोरी विधानसभा के ग्राम चक विश्वनगर स्थित भौरा में लगभग 278 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 220 केवी विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन किया। यह महत्वपूर्ण परियोजना क्षेत्र के लगभग 225 गांवों के 2.5 लाख से अधिक परिवारजनों को सुदृढ़, निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम सशक्त, समृद्ध एवं विकसित गुना के निर्माण हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्यरत हैं।
1: जिस बमोरी में कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उस बमोरी में आज 220 केवी का सबस्टेशन मुंद्रा हनुमान में स्थापित हो रहा है 280 करोड़। मैं देश का ऊर्जा मंत्री रहा हूँ, उस बमोरी में 200 केवी का सबस्टेशन मुंबई, कलकत्ता, बंगलुरु यहाँ लगते थे। मोदी जी के जमाने में 220 केवी का सबस्टेशन मुंद्रा हनुमान में लग रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे जिसमें खेती से जुड़े मॉडल और आधुनिक कृषि के तरीकों, मृदा प्रबंधन, फसल सुरक्षा, पशुपालन और ग्रामीण आजीविका से जुड़ी पहल प्रदर्शित करने वाले स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके बाद श्री चौहान पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल क्षति, गांवों और बुनियादी ढांचों की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने और कालाबाजारी रोकने के लिए 12 जून से ये अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसके तहत एक ग्राहक या एक वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल नई दिल्ली में नोटरी नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक नया आवेदन मॉड्यूल लॉन्च किया। ये मॉड्यूल योग्य कानूनी पेशेवरों और अधिवक्ताओं को नोटरी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सक्षम बनाता है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि विधिक मामलों का विभाग नोटरी अधिनियम 1952 और नोटरी नियम 1956 के अंतर्गत आवश्यकताओं के आधार पर समय समय पर इस मॉड्यूल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगा। 3 जुलाई से शुरू हो रही 57 दिन की अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रा मार्ग, आधार शिविरों और पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों रास्तों पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों के पहले जत्थे जम्मू पहुंचने लगे हैं। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल भी की है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से नीदरलैंड के मुंबई स्थित कौंसुल जनरल नबील ताउआती ने आज पुलिस मुख्यालय भोपाल में मुलाकात की। इस अवसर पर काउंसलेट जनरल के साथ मुंबई के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार कौस्तुब परिहार तथा कृषि सलाहकार प्रसाद पारते भी उपस्थित रहे। भेंट के दौरान पुलिस महानिदेशक ने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, आधुनिक पुलिसिंग तकनीकी नवाचार एवं नागरिक केंद्रित पुलिसिंग के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी दी। उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल करेंगे। और

राष्ट्रपति डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार तथा सांसद बालयोगी उमेश नाथ महाराज, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन विशिष्ट अतिथियों के रूप में उपस्थित रहेंगे। अब रुख करते हैं खेल की खबर का। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने टी20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा के मोतीसागर तालाब पर होमगार्ड जवानों का विशेष तैराकी और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण आगामी 5 जुलाई तक जारी रहेगा। इंदौर जिले के छोटी बेटमा स्थित विशिष्ट आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर में पीटीआई के रिक्त पदों के लिए 6 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते आज डिंडौरी जिले के प्रवास पर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही वे समनापुर और कुटेला क्षेत्र के स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 10 जुलाई कर दिया गया है। झाबुआ में युवा संगम का आयोजन 1 जुलाई को शासकीय शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय में किया जाएगा। बैतूल में हॉकी प्रतिभा खोज चयन ट्रायल में जिले के युवा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी खेल क्षमता का प्रदर्शन किया। और कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने निर्वाचन सदन स्थित ईवीएम वेयरहाउस और स्ट्रांग रूम का त्रैमासिक निरीक्षण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इको सिस्टम में शामिल, कहा स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने। जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह आज, मुख्यमंत्री राजगढ़ जिले में होंगे शामिल। कड़ी सुरक्षा के बीच 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में अपनी जगह बनाई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। बुंदेली सुगंध कार्यक्रम में लीजिए सुनिए बुंदेली किस्सा सुरहिन गऊ। कहानीकार हैं ओम प्रकाश तिवारी।
1: बुंदेलखंड के गांवों में हरेक घर में किस्सा कहानियां कहवे को चलन बहुत ही पुरानो है। इते कोड़े पे किस्सा कहानियां कहवे और सुनवे को रिवाज सुहतो और है। घर घर में मताई बहने और बड़े बूढ़े अपने मोड़ी मोड़न को ज्ञान और संस्कार देवे को इन्हीं किस्सा कहानियां को सहारो लेते अपन को सो आज में ऐसे ही कहानियां सुना रहो जो बुंदेलखंड के हर गांव में देवी के भजन के रूप में सोई गाई जात। खास तौर से चैत और कुंवर महीना की नौ दुर्गा के त्योहार पर राजा जगदेव को गायन जनमानस करत है। उको नाव है सुरहिन गैया। पुराने कथाओं और लोकमानस में गऊ के देवी स्वरूप कामधेनु और नंदिनी बिटिया की कल्पना करी गई जो मनुष्य की सभी कामनाओं को पूरी करत है। जो कल्पना गऊ के प्रति लोक श्रद्धा को प्रतीक है लोकमानस द्वारा गऊ की यही पावन रूप को गाथा में ढाल के ऊ के प्रति अपनी भावना को व्यक्त करो। राजा जगदेव दुर्गा के परम भक्त थे। उनने दुर्गा की आराधना करत करत अपनो शीश माता के चरण में काट के चढ़ा दो और वे फिर जिंदा हो गए। तेई अवसर पे बुंदेलखंड के भगत सुरहिन गऊ की लोक गाथान को गाउत जी में लोक संस्कृति को प्रभाव दिखाई देत सो बे लोक कथा किस्सा हम अपन को सुना रहे सो सुनो। ऐसे ऐसे बहुत पहले की बात है। सुरहिन गैया अपने बछड़ा के संगे एक ठोर पर रत्ती बार रोजाना अपने बच्चा को भूराई से दूध पिया के डांग में चरण चली जाती और दिन डूबे अपने ठोर पर लौट आती। एक दिना दिन के उंगत नहीं जैसे ही सूरज की पहली किरण फूटी सुरहिन गऊ बनखो चरवे के लाजे चल रही। चलत चलत सुरहिन एक बन से दूसरे बन होत भई तीसरे बन में पहुंची। वो बन कजरी बन हतो। उमे चंदन के वृक्ष लगे हते। सुरहिन गऊ ने एक कोर चरवे को घालो और फिर दूसरो कोर चरो।

जैसे ही तीसरो कोर चरबी खूं घालो, सो सिंह की हुंकार सुनके सुहेन घबरा गई। उन्हें जान लई कि जा तो सिंह की आवाज आए, सो उए लगी कि अब हम नहीं बच रहे, सिंह तो हमें खा जाए, छोड़े नहीं। जाबा सोच ही रही थी कि इत्ते में सामू सिंह आई गौ। सिंह खो सामू देख के सुहेन गऊ डरन के मारे थर थर कपन लगी और बोली के हे सिंह राजा, हमारी चूक खो बगस दो जाए, फिर हम कभू कजरीवन में ना आए और तुम्हारे चंदन के बिरछन को कोनो नुकसान ना पहुंचाए। हमें माफ कर दो, काहे के हमारे घरे हमाओ हल्को सो नादान बछरा हमारी बाट हिर रहो, वो दिन भर को भूको है, सो हमें छोड़ दो, हमें ना खाओ। जा सुनते नहीं वो सिंह गरज के बोलो, हम तुम्हें नहीं छोड़ते, तो ये खा के हम अपनी भूख मिटाए, काहे के हमें सो भूख लगी। सुरहिन ने मन में विचार करो कि अब नहीं बच रहे, जो सिंह तो अब हमें खा ले, छोड़े नहीं, सो ऊके असुगा आ गए। बस सोचन लगी के कजंत हमें सिंह खा ले तो हमाओ बछड़ा कैसे जिए, उगे जब हम ना मिले तो दूध कोपी आए, वो कैसे बचे। सो बात सिंह के आगे गिज्ञान लगी और बोली, हमाओ नादान बछड़ा घरे है, एक काम करो, हमें उगे दूध पिया आन दो, काहे के वो भोरे से भूखो है, हम ऊखो दूध पिया गए तुरत ही तुम नो आ जाए, सो तुम हमें खा लियो। सिंह बोलो कि जा बताओ कि हम तुम पे विश्वास कैसे करें, कि तुम लौट के आ जाओ, तुमाओ साक्षी को है, तुमाओ जमानतदार को है, जिसे हम तुमाओ विश्वास करें, को है साखी तोरो सुरहन गैया, को है तोरो जमान हो माए। सुरहन गैया बोली, चंदा सूरज मोरे लगे लगनिया, बन के बिरछा जमान हो माए, धरती के बासुक मोरे लगे लगनिया, धरती मोरी जमान हो माए। जैसी सिंह ने ये बातें सुनी, सुबह बोलो कि तुम तिरबाचा दो तो हम तुम्हें पे विश्वास करें। सुरहन गैया ने तिरबाचा दई, सो सिंह बोलो कि जाओ तुम बछड़ा को दूध पिया के हमारे लिंगा आ जाइयो, सो हम तुम्हें खा लें के अपनी भूख मिटा लें। जा सुनत नहीं सुरहन रमात भई, बछड़ा के लिंगा पहुंच बेखो दौड़ी दौड़ी दौड़ी, बा एक बन से दूसरे बन होत भई। जैसे ही बा तीसरे बन में पहुंची, सो अपने बछड़ा के लाने रमानी, अपनी मताई खो रमात सुन के बछड़ा सो कूदत फांदत, अपनी मताई सुरहन गऊ ताए दौड़ो। जैसे ही सुरहन ने अपनी ताई अपने बछड़ा खो आओ देखो, सो बार रोत भई दूर से बोली, आओ आओ बछड़ा पीलो मोरो दुदुआ, सिंह बचन दे आई हो माए। जा सुनते नहीं बछड़ा बोलो, कैसो बचन कौन बचन। सो सुरहन गऊ ने सबरी कथा सुना दई के बन में सिंह हमें खाबे पे उतारू हतो, सो हम उए जो बचन दे आए के हम तुम्हे दूध पिया के सिंह के लगा लौट जे, जिसे वो हमें खा ले। जैसे दित्ती बात बछड़ा ने सुनी, सो उकी आंखन से असुगा टपकन लगी। सुरहन सो रोन लगी, बछड़ा बोलो, बचन को बांधो दुदुगा ना पी हो, चलो तुम्हारे संग हो माए। मैं बचन को बंधो दुदुगा नहीं पी हो, मैं तो तुम्हारे संगे बन में सिंह के लंगा चलो। सुरहन गैया ने बछड़ा को बहुत समझाओ, पे बछड़ा ने एक न मानी, वो तो मताई के संगे चलवे की जिद करन लगो। हार के सुरहन गैया बछड़ा के संगे सिंह के लिंगा लौट चली। आगे आगे बछड़ा पाछे पाछे सुरहन, दो मिल बनखो जाए हो माए। एक बन चाली सुरहन दूजे बन चाली, तीजे बन पहुंची जाए हो माए। जैसे ही सुरहन बछड़ा के संगे तीजे कजरी बन में पहुंची, सुका देखत के सिंह उठ उठ के देख रहो कि अबे तक सुरहन नहीं आई, बातो तिरवाचा के बूल से बंदी हती। उठ उठ हेरे बन बारो वो सिंघा, सुरहन अबई न आई हो माए। बोल की बांधी बचन की सांची, एक गई दो आई हो माए। जोनो सिंघा जा सोच ही रहो तो तोनो वे सुरहन और उको बछड़ा आउ दिखानो, सो उने देखत नहीं सिंह उठ बैठो और सुरहन को खाबे की सोचन लगो। पे उने देखो के सुरहन को बछड़ा उके आगे ठाड़ो होके कन लगो है, पहले बमैया हमई को खा लो, पाछे हमारी माए हो माए। अरे सिंह मम्मा, पहले हमें खा लो, पाछे हमारी मताई को खाइयो, पहले तुम हमें खाने तुम्हें हमें खाने परे। जैसे ही सिंह ने बछड़ा के ये वचन सुने, सो ऊके कान ठाड़े हो गए। वो सोचन लगो कि जो बछड़ा तो हमें मम्मा कह रहो, तो इकी मताई तो हमारी बेन लगी, कहू मम्मा बेन भानेज को खाते, वो तो इनकी रक्षा करत, सो ऊको हृदय भर आओ। वो बोलो जा बताओ, कौन भने जा तो ये सिख बुद्ध दीनी, कौन लगे गुरु कान हो माए। तुम जा बुद्धि कीने।

दई तुम्हें, हम तुम्हारे मम्मा आए जा कीने बताई। बछड़ा कन लगो के देवी ज्वाला मुए सिख बुद्ध दीनी, बीरा लंगुरे लगे मुए कान हु माए, मुए जा बुद्धि मैया ज्वाला ने दई और बीर लंगुरे ने हमें जा शिक्षा दई। सो हे मम्मा सिंह तुम पहले हमें खालू, हम मताई के बिना जियत नारे पे। जैसे जे बचन सिंह ने बछड़ा से सुने सो ऊकी डबैया भरियाई। वो बोलो कजरी बंद मैंने तुम्हें खो दीनो, छुटक चरो मैदान हो माए, सो गऊ आगे सो गऊ पाछे, हुयो बगर के साण हो माए। सिंह बोलो सबसे बड़ो रिश्तो बेन भाने को होत, सो तुम निष्फिकर होके मताई के संगे मन लगा के चरो, जो कजरी बन मैंने तुम्हें खो दाओ। जाओ तुम्हाए अंगाई पीछू सो सो गैया हरे, तुम ऊ बगर के साढ़ हुइयो। जा सुन के बछड़ा कूदत फांदत अपनी मताई सुरहन गऊ के संगे, खुशी खुशी अपने ठोर पे लौट आओ। बाड़ी ने बनाई टिकटी, हमारी कानियां निपटी।

0: बन चाली सुरहन, दूजे बन चाली, तीजे बन पहुंची, जाय हो माय। बोलो जय दुर्गा मैया की जय।
1: बुंदेली सुगंध कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बुंदेली किस्सा सुरहिन गऊ। कहानीकार थे ओम प्रकाश तिवारी। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में जवानी फिल्म का ये गीत। गीतकार थे गुलशन बावरा और संगीत दिया था आरडी परमन ने।

अगला गीत सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, आवाज है मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम है जीने की राह।

0: जीने की राह, अभी आपने सुना इस फिल्म का ये गीत। आवाज थी मोहम्मद रफी की।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लीजिए अब सुनते हैं RD बर्मन के संगीत निर्देशन में गुलशन बावरा का लिखा ये गीत। आवाज है किशोर कुमार की और फिल्म का नाम है राही बदल गए।

श्रोताओं, अभी आपने सुना राही बदल गए इस फिल्म का ये गीत, आवाज थी किशोर कुमार की। लीजिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में मनोहर खन्ना का लिखा ये गीत। आवाज है हेमंती शुक्ला की और फिल्म का नाम है स्वीकार किया मैंने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम के अंत में लीजिए अब हम आपको सुनवाते हैं आरडी वर्मन के संगीत निर्देशन में एमजी हसमत का लिखा ये गीत। आवाज है लता मंगेशकर अमित कुमार की और फिल्म का नाम है तड़प।

लता मंगेशकर और अमित कुमार के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, सुनिए समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मूज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक के मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों

0: का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के दो दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रूपये खर्च करेगी।
2: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमरीका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल

0: हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग 1 वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कल गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर पूर्वी राजस्थान गुजरात मराठवाड़ा आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रूपये तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रूपये। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी

Sanida madada, nida mama,

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित राजन साजन मिश्र से राग ललित में गायन। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। इसमें आज कलाकार हैं रजनी भास्कर। झीका पर है बाबू रेखवार, बैंजो पर है अशोक मस्ताना और ढोलक पर है वीरेंद्र अहिरवार। कार्यक्रम के आरंभ में इनके स्वर में सुनते हैं ये चेतावनी, लेकिन इसके पहले सुनते हैं ये अंतराल।

0: में अभी आपने सुनी ये चेतावनी?
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

हंसी मजाक होने लगी। अभी आपने सुनी ये गारी, गायक कलाकार थी रजनी भास्कर। लीजिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं ये विदाई गीत।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोकरंग कार्यक्रम। लीजिए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं बाबा साहब पर आधारित ये देशभक्ति लोकगीत। गायक स्वर है रजनी भास्कर का।

इसी लोकगीत के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इसमें आज कलाकार थी रजनी भास्कर। मीडियम वेव और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए एक ही गीतकार कार्यक्रम में प्रसिद्ध गीतकार लेखिका कौसर मुनीर के लिखे कुछ फिल्मी नगमे। श्रोताओं, बॉलीवुड की जानी मानी गीतकार और पटकथा लेखिका कौसर मुनीर हिंदी सिनेमा के सम्मानित कलाकारों में से एक हैं। उन्होंने इश्क जादे, बजरंगी भाईजान और डियर जिंदगी जैसी फिल्मों के सुपरहिट गाने लिखे। कौसर का जन्म और परवरिश मुंबई महाराष्ट्र के बांद्रा इलाके में हुआ था। उन्होंने मुंबई के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक ग्रेजुएशन किया है। उनकी पहली शादी वर्ष 1957 में दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता निर्मल पांडे से हुई थी। कुछ वर्षों बाद 2000 में उनका तलाक हो गया। बाद में उन्होंने 2001 में नवीन पंडित के साथ विवाह किया। कौशल मुनीर ने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो जस्सी जैसी कोई नहीं के टाइटल ट्रैक से की थी और फिल्म टशन के गाने फलक तक से उन्हें बॉलीवुड में बड़ी सफलता मिली। लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं इश्क इन पेरिस फिल्म का ये गीत। आवाज है सोनू निगम और सुनिधि चौहान की।

श्रोतों कौसर मुनीर, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो जस्सी जैसी कोई नहीं से एक जूनियर राइटर के रूप में की थी। उन्हें पहला बड़ा मौका फिल्म टसन में मिला, जहां उन्होंने फलक तक चल गीत लिखा था। उनके द्वारा लिखे गए कुछ सबसे लोकप्रिय गानों में तेरी ओर, सिंह इस किंग, भर दो झोली मेरी, बजरंगी भाईजान, लहरा दो तिरासी, नचने फिरा, सीक्रेट सुपरस्टार और आज से तेरी पैडमैन शामिल हैं। फिल्म तिरासी की गीत लहरा दो के लिए उन्हें प्रतिष्ठित आईफा बेस्ट रिलिक्स गीतकार का पुरस्कार भी मिला था। उनकी कलम अपनी सादगी और भावनाओं की गहरी समझ के लिए जानी जाती है, जो अक्सर नारीवादी और प्रेरक विचारों को पेश करती है। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, बजरंगी भाईजान फिल्म से। गीत गाया है अदनान सामी ने और गीत लिखा है कौसर मुनीर ने।

श्रोताओं, प्रसिद्ध गीतकार कौसर मुनीर को फिल्म 83 में गाने लहरा दो के लिए प्रतिष्ठित फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार और आईफा सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला। वह फिल्म फेयर जीतने वाली पहली महिला गीतकार बनी थी। इसके अलावा उनके शानदार लेखन को भी अन्य कई सम्मान भी मिले। मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स, इश्कजादे फिल्म के गाने परेशान के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पॉपुलर अवार्ड, आइडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स, रॉकेट बॉयज सीजन 2 के लिए बेस्ट डायलॉग ड्रामा ओटीटी का टेक्निकल अवार्ड और FYA ऑनलाइन अवार्ड्स 2023 गोल्ड फिश गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार। साथ ही उन्हें पद्मावत, सीक्रेट सुपरस्टार, डियर जिंदगी और गहराइयां जैसी कई फिल्मों के लिए बेहतरीन गानों के लिए भी कई बार नामांकित भी किया जा चुका है। लीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फैंटम फिल्म से। गीत गाया है साहित माल्या ने, प्रीतम का संगीत है और गीत लिखा है कौशर मुनीर ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एक ही गीतकार कार्यक्रम में प्रसिद्ध गीतकार कौशर मुनीर के लिखे कुछ फिल्मी नगमे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लीजिए, अब हम आपको सुनवाते हैं जय हो फिल्म का ये गीत। साजिद आजिद का संगीत है, कौशर मुनीर का लिखा गीत है और आवाजें हैं हिमेश रेशमिया, कीर्ति और पलक मुछाल की।

श्रेया घोषाल के गाए इसी गीत के साथ एक ही गीतकार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने वाले हैं। सुनिए जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी है, लीजिए प्रस्तुत है बालाघाट जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बालाघाट जिले की चिट्ठी। आलेख श्रीनिवास चौधरी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बालाघाट जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। मौसम में हुए बदलाव का असर बालाघाट जिले में भी देखा जा रहा है। पिछले दिनों हुई हल्की बारिश के कारण लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन तेज बारिश का अब भी लोग इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में बालाघाट जिले में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। जिले में बीते 1 जून से 24 जून तक कुल 22 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। अब बात करते हैं विश्व सिकल सेल दिवस की। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय बालाघाट में मुस्कान ओपीडी के अंतर्गत विशेष जागरूकता एवं जाँच कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमें कुल 1899 लोगों की जाँच की गई। इस वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस की थीम जीवन रक्षा के अंतर को समाप्त करना, सिकल सेल देखभाल में समानता सुनिश्चित करना रही। कार्यक्रम के दौरान 40 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की सिकल सेल की जांच की गई और गर्भवती महिलाओं तथा उनके परिजनों, बच्चों, सिकल सेल पॉजिटिव मरीजों तथा आमजनों को रोग के प्रति जागरूक किया गया। बीते 21 जून को बालाघाट के मुलना स्टेडियम में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर सांसद भारती पारधी की अध्यक्षता में सामूहिक योग में जनप्रतिनिधियों, कलेक्टर मृणाल मीना, अधिकारी कर्मचारी सहित विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों और नगर के गणमान्य नागरिकों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित ज्ञान भारतम मिशन के तहत बालाघाट जिले में प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों की खोज, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण के लिए व्यापक अभियान शुरू किया जा रहा है। अब बात करते हैं किसानों के कल्याण से जुड़ी खबर की। बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,36,130 किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड की जिला स्तरीय रैंकिंग में बालाघाट जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2026 माह में बालाघाट जिले ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लगातार 2 माह तक प्रदेश के शीर्ष 3 जिलों में स्थान बनाकर बालाघाट ने किसान कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया है। अब बात करते हैं खेल और युवा कल्याण के क्षेत्र की। विश्व ओलंपिक दिवस के अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने चित्रकला के माध्यम से योग, स्वास्थ्य और ओलंपिक मूल्यों का संदेश दिया। इस अवसर पर 35 खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा पदक पहनाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि सतीश शर्मा ने कहा कि कड़े परिश्रम, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से ही भविष्य के ओलंपिक मेडलिस्ट तैयार होंगे। अब बात करते हैं जिले में प्रशासनिक गतिविधियों की। भोपाल से मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बीते दिनों प्रदेश के सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। इस समीक्षा बैठक में बालाघाट जिले ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां दर्ज कर प्रदेश के अग्रणी जिलों में स्थान बनाया। इसी प्रकार टीबी रोगियों को पोषण किट वितरण में भी बालाघाट ने 100% उपलब्धि के साथ प्रदेश में पहला स्थान साझा किया। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में भी बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के पंजीयन में बालाघाट जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। बच्चों की अपार आईडी बनाने में भी बालाघाट जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। अब बात साइबर जागरूकता की। बालाघाट जिले में पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट रेंज ललित शाक्यवार, उप पुलिस महानिरीक्षक विनीत कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा की उपस्थिति में बीते दिनों साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर आयोजित सेफ क्लिक 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पुलिस महानिरीक्षक ललित शाक्यवार ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराधी लगातार नए नए तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। युवाओं को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण को लेकर एक अच्छी खबर है। पुलिस सेवा में अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पुलिस बैंड भर्ती की घोषणा की गई है। इस क्रम में जिला पुलिस बालाघाट द्वारा अमर शहीद आशीष शर्मा निशुल्क पुलिस बैंड प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है। वर्तमान में इस प्रशिक्षण के माध्यम से लगभग 250 से अधिक युवा लाभान्वित हो रहे हैं। ये प्रशिक्षण केवल बालाघाट तक सीमित नहीं है, बल्कि बालाघाट सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के युवाओं के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं अन्य राज्यों के युवा भी यहां निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर पुलिस बैंड भर्ती एवं रोजगार की दिशा में अपने सपनों को साकार करने की ओर अग्रसर हैं। और अंत में बात दो बूंद जिंदगी की। बालाघाट जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो महाअभियान चलाया जा रहा है, जहां 3,584 टीकाकरण कर्मी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपनी पूरी तत्परता के साथ सेवाएं दे रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे बालाघाट जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए पत्रिका कार्यक्रम फिल्मी पत्रिका, प्रस्तुति है रविंद्र कुमार प्रजापति की।
2: फिल्मी पत्रिका। श्रोताओं, किसी ने क्या खूब कहा है, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो इसी प्रेरक विचार के साथ स्वागत है आप सभी का माह के अंतिम मंगलवार को कार्यक्रम फिल्मी पत्रिका में। तो स्वीकारिए मेरा यानी अर्चना जैन का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ चर्चाएं, सुनवाएंगे बॉलीवुड के प्रसिद्ध पटकथा लेखक निर्माता निर्देशक कमलेश मिश्रा से की गई बातचीत का दूसरा व अंतिम भाग, साथ ही होगी वार्ता भारतीय सिनेमा में महिलाओं की भूमिका, इसके अलावा होंगे फिल्मी समाचार और आपका मनोरंजन कराएंगे गीत संगीत के माध्यम से। लेकिन पहले कर लेते हैं एक छोटी सी चर्चा पुराने बनाम नए गाने इस विषय पर। श्रोताओं, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय बेहद दिलचस्प है, यानी कि पुराने बनाम नए गाने। श्रोताओं, आप सभी ने ये तो सुना ही होगा कि ओल्ड इज गोल्ड होता है। जी हाँ, जो पुराना है वो सोना है, क्योंकि पुराना वास्तविक है, उसका अपना एक प्रमाण है, वो किसी की नकल नहीं है। इसीलिए नए गानों की अपेक्षा पुराने गानों में प्रामाणिकता व भावनात्मक गहराई अधिक होती थी। श्रोताओं, जब पहले के समय में गीतों की रिकॉर्डिंग की जाती थी तब गायन में स्पष्टता, वाक्यांश और लाइव प्रदर्शन की बारीकियों पर जोर दिया जाता था। इसके अलावा पुराने गानों में ताल शैली के अनुसार भिन्न होती थी, लेकिन अक्सर लाइव लय पर निर्भर करती है। श्रोताओं, नए गानों में क्लोज माइजिंग, वोकल ट्यूनिंग, लेयरिंग और शैलीगत प्रभावों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त नए गाने प्रोग्राम किए गए बीट्स, तेज गति और इलेक्ट्रॉनिक डांस और हिप हॉप से प्रभावित लय पैटर्न पर आधारित होते हैं। श्रोताओं, पुराने गानों में शास्त्रीय संगीत की मधुर कर्णप्रिय धुनें होती थीं। इन्हीं धुनों पर गायक शास्त्रीय राग के साथ गाने गाते थे। गीतों की रचना भी मधुर व लयबद्ध होती थी, इसीलिए इन गीतों को गाने वाले गायक भी अमर हो गए। पुराने गानों को सुनने पर आज भी ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने कानों में मिश्री घोल दी हो। पुराने गाने दिल व दिमाग को सुकून देते हैं। श्रोताओं, ऐसा नहीं है कि नए गाने मधुर नहीं हैं। कुछ नए गाने ऐसे हैं जिन्हें हम बार बार सुन सकते हैं, लेकिन सभी नए गानों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल के गानों में ना मधुर व कर्णप्रिय संगीत है, ना सुर है, ना लय है, ना ताल है, सभी कुछ बनावटी व कंप्यूटराइज्ड है। श्रोताओं, आजकल तुकबंदी का बोलबाला है और आजकल सामूहिक नृत्य का ज्यादा चलन है, इसलिए गानों का संगीत भी डांस को या नृत्य को ध्यान में रखकर ही तैयार किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आजकल के नए गानों का कोई और छोर नहीं है, जबकि पुराने गाने किसी संदेश या उपदेश को लेकर रचे गए और उनकी धुन भी उसी उपदेश को ध्यान में रखकर तैयार की गई। तो आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं एक ऐसा ही गीत जो एकता, श्रमदान व आपसी सहयोग की शक्ति का संदेश देता है।

0: ये प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया था फिल्म नया दौर से। गायक स्वर थे मोहम्मद रफी, आशा भोसले एवं साथियों के। साहिल लुधियानवी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था ओपी नैयर ने। और आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं वार्ता, भारतीय सिनेमा में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार है अनिल अहिरवार।
1: आज बात करेंगे हम भारतीय सिनेमा में महिलाओं की हिस्सेदारी। भारतीय सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज का दर्पण भी है। समाज में जो परिवर्तन होते हैं उनकी झलक फिल्मों में दिखाई देती है और फिल्मों के माध्यम से समाज की सोच भी बदलती है। इस परिवर्तन की यात्रा में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। आज भारतीय महिलाएं केवल पर्दे पर अभिनय तक सीमित नहीं हैं, बल्कि निर्देशन, पटकथा, लेखन, संगीत निर्देशन, संपादन, छायांकन निर्माण, कला निर्देशन, ध्वनि संपादन और फिल्म प्रबंधन जैसे लगभग हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। लेकिन यह स्थिति एक दिन में नहीं बनी, इसके पीछे संघर्ष, साहस, प्रतिभा और वर्षों की मेहनत की लंबी कहानी छिपी है। भारतीय सिनेमा की शुरुआत 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई है। उस समय समाज में महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में आना उचित नहीं माना जाता था। यही कारण था कि शुरुआती फिल्मों में महिलाओं के पात्र भी पुरुष कलाकार निभाते थे और उस दौर में महिलाओं का फिल्मों में काम करना सामाजिक दृष्टि से अपमानजनक नहीं माना जाता था। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली, कुछ साहसी महिलाओं ने समाज की रूढ़ियों को चुनौती दी और फिल्मों में कदम रखा। उनके साहस ने अनेक आने वाली पीढ़ियों के लिए नए रास्ते खोले। प्रारंभिक दौर की इन महिलाओं ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपने आत्मविश्वास और प्रतिभा के बल पर उन्होंने भारतीय सिनेमा में महिलाओं की मजबूत स्थिति स्थापित की। समय के साथ भारतीय सिनेमा का विस्तार हुआ, मूक फिल्मों से बोलती फिल्मों का दौर आया, श्वेत श्याम फिल्मों से रंगीन फिल्मों तक की यात्रा हुई, तकनीकी बदली, कहानियां बदली और महिलाओं की भूमिकाएं भी बदली चली गईं। शुरुआती फिल्मों में महिलाओं को प्रायः त्याग, सहनशीलता और पारिवारिक जिम्मेदारियां तक सीमित दिखाया जाता था। वे माँ, पत्नी, बहन या बेटी की भूमिकाओं में अधिक दिखाई देती थीं। लेकिन जैसे जैसे समाज में महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी, वैसे वैसे फिल्मों में भी महिला पात्र अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनते रहे। आज भारतीय सिनेमा में महिलाएं वैज्ञानिक, सैनिक, पुलिस अधिकारी, खिलाड़ी, पत्रकार, न्यायाधीश, उद्यमी, अंतरिक्ष यात्री और राजनीतिक नेतृत्व जैसे अनेक प्रेरणादायक पात्र निभा रही हैं। इन फिल्मों ने समाज में महिलाओं की नई पहचान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महिलाओं की भागीदारी केवल अभिनय तक सीमित नहीं रही, उन्होंने निर्देशन के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। महिला निर्देशकों ने संवेदनशील विषयों को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। उन्होंने महिलाओं के जीवन में संघर्ष, सपनों और उपलब्धियों को यथार्थ के साथ फिल्मों में स्थान दिया है। समाज की भूल है देवदास, बालयोगिनी, आदमी, दुनिया ना माने की फिल्मों में अनमेल विवाहों की समस्याओं को उठाया गया। अछूत कन्या फिल्म में छुआछूत जैसी समस्याओं को दर्शकों के सामने लाया गया। हिंदी सिनेमा में स्त्री जीवन से संबंधित और समाज की विविध समस्याओं को दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया गया और 50 और 60 के दशक में भी हिंदी सिनेमा में अनेक अच्छी अभिनेत्रियां थीं, लेकिन तब ऐसे निर्देशकों और फिल्में नहीं थीं जो किसी अभिनेत्री की प्रतिभा का पूरा अर्थपूर्ण इस्तेमाल कर सके। ऐसे पटकथा लेखक नहीं थे जो किसी अभिनेत्री की सामर्थ्य को सामने रखकर भूमिका की रचना कर सके। वहीदा रहमान और नूतन सरी की अभिनेत्रियों ने अपने समय में अपनी सीमाओं के भीतर अच्छा और अर्थपूर्ण काम किया है। आजादी के बाद की फिल्में दहेज, पति परमेश्वर, हकीकत, पूरब और पश्चिम, कर्मा, आदमी जैसे फिल्मों में स्त्री परिवार और पति के प्रति समर्पित एवं त्यागी तथा पति के अहम को संतुष्ट करें और पति के लिए अपना सब कुछ छोड़कर उसके स्वर से स्वर मिलाकर जिए भूमिका में दिखाया गया कि हिंदी सिनेमा में स्त्री की भूमिका परिवार के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। 70 व 80 के दशक में स्त्री की स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब स्त्री घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करती है। अर्थ, मिर्च मसाला, मृत्युदंड, दामिनी जैसी फिल्मों में भी समाज के भीतर स्त्री की संघर्ष को दिखाने का प्रयास प्रयास किया गया। मदर इंडिया में राधा परिवार के प्रति समर्पण और न्याय के लिए संघर्ष करती हुई एक दशक स्त्री किसान स्त्री के रूप में प्रस्तुत की गई। 90 के दशक में जब वैश्वीकरण का

0: तौर आया और भारतीय समाज का विश्व के समाज से अपेक्षाकृत अधिक जुड़ा हुआ तो इसका स्पष्ट प्रभाव समाज पर पड़ा। भारतीय स्त्री न्याय के लिए घर परिवार के समाज से कैसे लड़ती है, वह राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित दामिनी फिल्म में देखने को मिलता है। फिल्म की नायिक दामिनी का देवर राकेश और उसके तीन मित्र नौकरानी के साथ बलात्कार करते हैं और दामिनी इस घटना की साक्षी होती है। परिवार इस घटना को छुपाता है लेकिन दामिनी राकेश और उसके तीन मित्र को गिरफ्तार करवाती है। बात अदालत तक पहुंच जाती है। परिवार वाले दामिनी को गवाही न देने के लिए कहते हैं लेकिन दामिनी गवाही देकर नौकरानी को न्याय दिलाने की ठान लेती है तो परिवार वाले उसे प्रताड़ित करते हैं। अंत में दामिनी अदालत में गवाही देकर नौकरानी को न्याय दिलाने में सफल होती है। इस फिल्म में दामिनी का चरित्र सशक्त रूप से उभर कर सामने आया है। 20वीं सदी में आते आते स्त्री की स्थिति में सुधार आया और अब नायिका अपनी भूमिकाओं और पटकथा का चुनाव करने लगी। स्त्री की भूमिकाओं को महत्व मिलने लगा था और स्त्री केंद्रित फिल्मों का निर्माण हुआ और सफलता भी मिली। राम माधवानी द्वारा निर्देशन फिल्म नीरजा 23 साल की साहसी नीरजा भनोट के जीवन पर आधारित है जिसने 1986 कराची में पैन एम विमान की उड़ान में आतंकियों से 73 यात्रियों की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी थी। एक लड़की समाज की पारंपरिक सोच से नहीं लड़ती बल्कि आतंकवादियों से भी लड़ते हुए कई यात्रियों की जान बचाती है। समाज एक क्षण नहीं लगता है स्त्री के चरित्र पर सवाल उठाने में, उस पर हमला या वार करने में। वही स्त्री इन सभी की परवाह न करती हुई सामाजिक और नागरिक होने की सारे दायित्व निभाने से पीछे नहीं हटती। प्रदीप सरकार निर्देशन फिल्म मर्दानी में चाइल्ड सेक्स के अवैध व्यापार जैसी समस्याओं को सामने लाने का प्रयास किया गया। फिल्म की नायिका शिवानी राय क्राइम ब्रांच में सीनियर इंस्पेक्टर की बेहतरीन भूमिका निभाती हैं, जो कि अपने काम को प्राथमिकता देती हैं। साहसी और निडर हैं। स्त्री केंद्रित फिल्मों के माध्यम से स्त्री के साथ साथ समाज की भी विभिन्न समस्याओं को सामने लाया गया है। पितृसत्तात्मक और मानसिकता में अपने अस्तित्व और पहचान के लिए जो लड़ाई लड़ रही थी, हिंदी सिनेमा ने आगे आकर उसकी इस लड़ाई में भागीदारी देखकर स्त्रियों के समाज में परिवर्तन लाने की पहल की और स्त्री को पुरुष वर्ग के समान बनाने में समाज की भूमिका रही। हिंदी सिनेमा में स्त्री अपनी पहचान को खोजकर उसे स्थापित किया। फिल्मों में स्त्रियों ने अपनी मौजूदगी देकर प्रत्येक क्षेत्र में अपने सशक्त रूप को सामने रखा। समाज में भी उन सबसे बाहर निकलकर खुद का वजूद बनकर सम्मानित जीवन जीने में सक्षम है। 21वीं सदी में पुरानी परंपरा टूटने लगी और स्त्री भूमंडलीकरण के प्रभाव में ज्यादा मुखर होने लगी और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगी और उसकी पतिव्रता सती प्रेमिका पति पूरक जैसे छवि से बाहर निकलकर साहसी आत्मविश्वास से भरी हुई आत्मनिर्भर एवं सशक्त रूप में उभर कर सामने आई। हिंदी सिनेमा में स्त्री को स्वतंत्र सशक्त एवं संघर्षरत रूप में दिखाया जाता है। हिंदी सिनेमा ने अत्याचार अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष स्त्री सामर्थ्य की खोज एवं पहचान स्त्री की मानसिकता में बदलाव देकर उसे एक नई दिशा प्रदान करता है। हिंदी सिनेमा ने समकालीन समाज में और उससे जुड़ी समस्याओं प्रवृत्तियों या चुनौतियों को बड़ी कुशलता से दिखाया है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छी सोच संस्कार अच्छी शिक्षा और नैतिक मूल्यों को सार्थक करके उन्नत और सुसंस्कृत समाज का निर्माण करें। सिनेमा ने स्त्रियों को रोजगार का अवसर देकर इनको आर्थिक रूप से भी मजबूत किया है। सिनेमाई स्त्री के स्वतंत्र और सशक्त का असर स्त्री समाज में तेजी से देखने को मिल रहा है। आज शहर में ही नहीं गांव में भी स्त्रियां जीन्स टी शर्ट शर्ट कपड़े पहनने लगी हैं और सशक्त बनने को उत्सुकता दिखाने लगी हैं।
1: दोस्तों अभी आपने सुनी ये वार्ता भारतीय सिनेमा में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार थे अनिल अहिरवार। और आइए श्रोताओं अब रुख करते हैं अगली चर्चा की ओर जिसका विषय है ओटीटी प्लेटफॉर्म और बदलता सिनेमा। श्रोताओं पिछले कुछ वर्षों में ओवर द टॉप अर्थात ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने के साथ मनोरंजन की दुनिया और सिने जगत में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इन प्लेटफॉर्म्स ने दर्शकों को फिल्मों टीवी शोज वृत्त चित्रों और अन्य कई प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराकर पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने से सिनेमा का पर्याय बदला है। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म उन वीडियो सेवाओं को संदर्भित करते हैं जो पारंपरिक केबल या सैटेलाइट प्रदाताओं को दरकिनार करते हुए सीधे इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। ये ऑन डिमांड सामग्री प्रदान करते हैं जिसे दर्शक किसी भी समय किसी भी डिवाइस पर और नेट कनेक्शन के साथ कहीं से भी देख सकते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म

0: के आने के साथ पारंपरिक फिल्म या सिनेमा हॉल उद्योग को झटका लगा है। हालांकि ये सिनेमा के अनुभव को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर पाया है, बल्कि उन उपभोक्ताओं के लिए एक विकल्प है जो लंबी कतारों, टिकटों की ऊंची कीमतों और भीड़भाड़ वाले सिनेमा घरों की परेशानी से बचना पसंद करते हैं। श्रोताओं, ये प्लेटफॉर्म्स दर्शकों को अपनी पसंद की फिल्में व शोज अपने घरों में आराम से देखने की सुविधा प्रदान करते हैं। श्रोताओं, कोविड-19 महामारी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के उदय को और भी तेज कर दिया था। वर्ष 2020 में नेटफ्लिक्स में ग्राहकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई थी। वर्ष की दूसरी तिमाही में ही 10 मिलियन से अधिक नए ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़े थे। यहाँ ये स्पष्ट है श्रोताओं कि सिनेमा उद्योग खत्म नहीं हुआ है, बल्कि सिनेमा घरों में दर्शकों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पर अब सिनेमा घर भी धीरे धीरे बदलते परिवेश के अनुरूप बदल रहे हैं। कई सिनेमा घरों ने IMAX 3D तकनीक जैसी अधिक आकर्षक तकनीक के साथ सिनेमा देखने का अनुभव प्रदान करना शुरू कर दिया है। लाइव इवेंट, खेल प्रसारण और यहाँ तक कि वीडियो गेम टूर्नामेंट जैसे विविध प्रकार के कंटेंट भी पेश करना शुरू कर दिया है। OTT प्लेटफॉर्म निसंदेह मनोरंजन के उपभोग के तरीके को बदल रहे हैं और सिनेमा उद्योग को इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ रहा है। पर श्रोताओं, सिनेमा तो सिनेमा है। चाहे कंटेंट उपलब्ध कराने में कितनी भी तकनीकी प्रगति हो जाए, चाहे OTT हो या कुछ और, अंततः बड़े पर्दे पर सिनेमा देखने का रोमांच ही अलग है। इसका कोई मुकाबला नहीं। और श्रोताओं, इस चर्चा को देते हैं विराम और श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं भेंट वार्ता। इसमें आज आप सुनेंगे सिने जगत के मशहूर निर्माता, निर्देशक, लेखक कमलेश मिश्रा जी से की गई बातचीत के अंश। इनसे बात कर रही हैं अर्चना जैन। श्रोताओं, आज हम आए हुए हैं खजुराहो फिल्म महोत्सव में। यहाँ हमारी मुलाकात हुई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता पटकथा लेखक, निर्माता, निर्देशक कमलेश कुमार मिश्रा जी से। तो हमने उनसे उनके सफल कैरियर के बारे में बातचीत की, तो आइए सुनते हैं उनसे की गई बातचीत के अंश। सबसे पहले कमलेश जी, बुंदेलखंड की पर्यटन नगरी खजुराहो और फिल्म फेस्टिवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। आपके इतनी सुंदर नगरी में इतना भावपूर्ण अभिवादन आपका और ये जो स्वागत है अभिभूत कर रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: और सर, आपने एक बहुत ही प्यारा नारा है जो राष्ट्रव्यापी नारा है, बेटी बचाओ, ये भी आपने लिखा है। लेकिन फिर भी हमारी बेटियां जो हैं, हम कितने कैंपेन्स बनाए या कितने नारे बना रहे हैं, बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन कोई ना कोई घटना हमें सुनने के लिए मिलती है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है?
1: देखिए, मैं ये जो थोड़ा दूसरे ढंग से इसको देखता हूँ
0: जी,
1: कि आज मैं पिछले साल अपने गांव गया था
0: जी,
1: तो हमारे कॉलेज में हमें बुलाया गया, जो हमारा कॉलेज जहां हम पढ़े थे
0: जी,
1: तो जब हम पढ़ते थे
0: जी,
1: तो मुश्किल से 2-4 लड़कियां थी हमारे पूरे 100-200 बच्चों में
0: जी,
1: लड़कों के बीच। मैं इस बार गया तो हालांकि समय बहुत बड़ा लंबा गैप के बाद है गया
0: जी, जी।
1: लेकिन मैं जब देखा तो मेरी इतनी मतलब की खुशी हुई
0: जी,
1: कि वो संख्या लगभग बराबर थी। और आप ये देखिए, आप छतरपुर से चल करके 50 किलोमीटर चल करके आप यहाँ आ गई हैं
0: जी, जी बिल्कुल।
1: आपके घर की बेटी बहन 50 किलोमीटर जा करके पढ़ के आती होगी रोज,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: यहाँ अकेली लड़की सफर कर रही है ट्रेन में, अकेली लड़की हवाई जहाज से सफर कर रही है,
0: बिल्कुल।
1: अकेली लड़की ड्राइव करते हुए बाइक से एक जगह से दूसरी जगह जा रही है
0: जी।
1: मैं ऐसे गांव में जब देखता हूं कि 10-20 लड़कियां एक समूह में साइकिल चलाते हुए अपने स्कूल जाती हैं
0: जी, जी।
1: तो मैं उसको उस ढंग से देख रहा हूं, बदलाव के उस रूप में उसे देख रहा हूं। जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं उनके साथ जिस तरह के अपराध की, वो जाहिर सी बात है कि बढ़ रही हैं, हाईलाइट हो रही हैं
0: जी।
1: लेकिन उसी अनुपात में लड़कियां अपनी हिम्मत से
0: जी,
1: ऐसे परिस्थितियों को मुंहतोड़ जवाब भी दे रही हैं
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जब हम कहीं ये कहते हैं कि

0: ये चीजें सरकार को या प्रशासन को और पुलिस को सुरक्षा देनी चाहिए
1: जी।
0: तो वो एक सच है
1: जी।
0: लेकिन जब लड़कियां स्वयं में हिम्मत बटोरती हैं और समाज जब अपने आप को आईने के सामने खड़ा करके झांकेगा
1: जी,
0: तो वो पाएगा कि भाई हम यदि समाज में, वो पुरुष की समाज में कह दूं
1: जी,
0: तो कह रहा है कि कोई जा रही बच्ची किसी वो पराई बच्ची नहीं, वो आपके घर की ही कोई बच्ची है
1: बिल्कुल,
0: या वो भी एक मतलब कि एक ऑब्जेक्ट नहीं है, सामान नहीं है वो, ठीक है ना,
1: बिल्कुल,
0: वो एक इंसान है ठीक है, उसके अंदर जो भावनाएं हैं जो वो आपके अंदर भी है, आपके घर परिवार के लोगों के अंदर भी है
1: बिल्कुल,
0: उस नजरिए से समाज को भी बदलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जब ऐसा होगा तो बदलाव और भी तेजी से बढ़ेगा
1: जी।
0: जो घटनाएं अप्रिय होती हैं उसके लिए निसंदेह हमें चिंतित सचेत सजग रहना चाहिए
1: जी।
0: और ऐसी स्थितियों में ऐसी कोई अपराधी है तो उसको जल्दी से जल्दी सजा हो, तो थोड़ा सा अलर्ट मतलब एक होता है ना कि थोड़ा डर पैदा भी होना चाहिए ऐसे अपराधियों के मन में
1: जी, जी।
0: तो ये भी होना चाहिए, तो मैं इस पूरे पहलू को इस तरह से देखता हूं,
1: उससे कुछ कंट्रोल भी होगा
0: जी बिल्कुल
1: सर। जैसे आजकल कुछ युवा एक्टिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, अभिनय करना चाहते हैं, कुछ राइटर बनना चाहते हैं, कुछ स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स बताएं।
0: देखिए जो सिनेमा में, मैं मुंबई में हूँ, सिनेमा में जो सबसे ज्यादा लोग आते हैं वो अभिनय के लिए आते हैं
1: जी बिल्कुल,
0: तो बहुत सारे लोग अभिनय में आते हैं, सफल होते हैं, उनकी पहचान कायम हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहचान कायम नहीं होती लेकिन वो सफल होते हैं
1: जी बिल्कुल।
0: बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोनों से वंचित रह जाते हैं
1: जी।
0: तो अपने को मुंबई की तरफ आने से पहले अपने को अपने कुछ सीनियर से, अपने के खुद के उससे ये समझना चाहिए कि क्या मैं उधर कदम बढ़ा रहा हूँ तो मैं उसके लिए उपयुक्त हूँ, मेरे अंदर क्या एक्टिंग का स्किल है, यदि वो है उसको जरा एक बार परखवा लेना चाहिए या परख लेना चाहिए, उस दिशा में जाए। जहाँ तक और सिनेमा के और दूसरे पहलू हैं, कुछ तकनीकी पहलू हैं, जैसे एडिटिंग सीखी जा सकती है, कैमरा आपका सीखा जा सकता है, और भी तरह के टेक्निकल चीजें सीखी जा सकती है, लेकिन नजरिया आपको सिनेमाई पैदा करना स्वयं पड़ेगा
1: जी बिल्कुल,
0: ठीक है बिल्कुल। और उसके लिए एक बड़ा लगन और तपस्या और समर्पण की आवश्यकता है
1: जी बिल्कुल।
0: सच पूछिए तो ये फील्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसा काम नहीं करता है
1: जी।
0: कि आप गए और आपके अंदर स्किल है तो आपके लिए एक जॉब सुनिश्चित है, ऐसा नहीं है। आपको बहुत ज्यादा मतलब कि मौके तलाशने पड़ते हैं
1: जी।
0: उसमें कई बार टूटन हो जाती है, मन की टूटन हो जाती है, पैसे की टूटन हो जाती है
1: जी।
0: और वो फिर कई बार आपका अवसाद की तरफ ही ले जाती है। तो इन सब चीजों को जो मैं कर रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ लेकिन मैं स्थितियों को बता रहा हूँ कि इनको समझ करके ही आगे बढ़ना चाहिए
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: जहाँ तक लेखन की बात है, लेखन और इवन मतलब और भी जो कला तरह की चीजें हैं उसमें आपका दृष्टिकोण और आपके अंदर जो एक लेखन शैली, वो कोई उंगली पकड़ के नहीं सिखा सकता, या ना आप कहीं से पढ़ करके सीख सकते
1: जी, बिल्कुल।
0: वो रॉ मटेरियल की तरह आपके अंदर होता है
1: जी।
0: उसको आप पॉलिश करते जाएं, लिखते जाएं, तो पता चलेगा कि आप एक बेहतर लेखक हैं। आपको खुद को अंदाजा लग जाता है
1: जी।
0: कि आप कितना कुछ अच्छा लिखते हैं
1: जी।
0: और सिनेमा लिखना, सिनेमा लिखने की एक अलग विधा है, टेक्निक है, वो उसे सीखा जा सकता है
1: जी, जी।
0: लेकिन जो भाव है वो तो आपको, लेखन भाव है वो आपको अंदर होना चाहिए
1: जी।
0: उसको जगाया जा सकता है, उसको पॉलिश किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लिखना जानते हैं तो हम सिनेमा लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होता।
1: जैसे कई बार फिल्म समारोह जो होते हैं बड़े बड़े, फिल्म फेयर अवार्ड हुआ या और भी कई पुरस्कार समारोह होते हैं, जिनमें मतलब कई बार ऐसा कहा जाता है कि इनका अभिनय बहुत सशक्त था इसलिए फिल्म सुपरहिट हुई।

0: या कभी खलनायक के लिए, कभी निर्देशन के लिए कहा जाता है फिल्म मतलब हिट हुई तो एक कहानी के लिए। मैंने कम सुना है कि क्या कहानी का सशक्त होना कितना जरूरी है किसी फिल्म के हिट होने के लिए?
1: कहानी ही बुनियाद है
0: जी,
1: स्क्रिप्ट ही बुनियाद है
0: जी।
1: आप उस बुनियाद पे खराब बिल्डिंग बना सकते हैं
0: जी,
1: लेकिन ऐसा नहीं कि कमजोर बुनियाद पे
0: जी
1: बड़ी बिल्डिंग बना लेंगे
0: जी,
1: ऐसा नहीं है। बुनियाद ही स्क्रिप्ट है जिस भी फिल्म की
0: जी,
1: एक्टिंग वगैरह ने और चेहरे ने सपोर्ट किया
0: जी,
1: लेकिन कहानी में एक नयापन, नया दृष्टिकोण
0: जी
1: और पैनापन नहीं है तो फिल्म नहीं चलेगी। उसके हिट होने की, उसके सामान्य ढंग से भी आगे बढ़ने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है
0: जी।
1: स्क्रिप्ट ही आधार है
0: जी।
1: एक लाइन की बात
0: जी। तो कमलेश जी, आपने अपना इतना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद अर्चना जी, आपने भी हमें इस योग्य समझा कि हम आपके ऑडियो पॉडकास्ट के लिए कुछ बात करें
0: जी।
1: आपका धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता के अंतर्गत सिने जगत के मशहूर निर्माता, निर्देशक, लेखक कमलेश मिश्रा जी से की गई बातचीत के अंश। इनसे बात कर रही थी अर्चना जैन। श्रोताओं, यदि आपने आरके बैनर की मूवीज ध्यान से देखी होंगी तो आपको एक लोगो फिल्म की शुरुआत में दिखाई देता है। जी हाँ, ये लोगो दिग्गज अभिनेता राज कपूर व नरगिस पर फिल्माए गए सुपरहिट फिल्म बरसात के एक रोमांटिक और भावपूर्ण दृश्य से प्रेरित है। ये लोगो राज कपूर और नरगिस के उस सदाबहार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री का प्रतीक था जिन्होंने एक साथ 15 से अधिक फिल्मों में काम किया था। तो श्रोताओं, आज कर रहे हैं चर्चा सिने जगत की इस मशहूर जोड़ी के बारे में। श्रोताओं, इसे किस्मत का खेल ही कहेंगे, इस मशहूर जोड़ी में से एक की जयंती और दूसरे की पुण्यतिथि एक दिन के अंतर से आती है। यानी 1 जून को होता है नरगिस जी का जन्म दिवस, वहीं 2 जून को आती है द ग्रेट शोमैन राज कपूर साहब की पुण्यतिथि। श्रोताओं, राज कपूर जी ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत मात्र 10 वर्ष की उम्र में वर्ष 1935 में बनी फिल्म इंकलाब से एक बाल कलाकार के रूप में की थी। फिल्मों की बारीकियों को सीखने के लिए उन्होंने क्लैब बॉय का काम किया और चौथे असिस्टेंट के तौर पर उन्होंने काम किया। दोस्तों, उनके पिता का कहना था कि यदि आप निचले दर्जे से शुरुआत करेंगे तो एक दिन आप अव्वल दर्जे पे जाएंगे, और राज कपूर साहब ने उनकी बात को मानते हुए चौथे असिस्टेंट के तौर पर काम किया। दोस्तों, अभिनेता के तौर पर उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला केदार शर्मा की वर्ष 1947 में बनी फिल्म नीलकमल में, जिसमें उनकी हीरोइन थी मधुबाला। श्रोताओं, महज 24 साल की उम्र में उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी आरके फिल्म्स की शुरुआत की। इस कंपनी के बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी आग, जो कि वर्ष 1948 में बनी थी, और राज साहब अपने समय के सबसे कम उम्र के निर्देशक बने। इस फिल्म में पहली बार राज कपूर और नरगिस की जोड़ी को सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ पेश किया गया था। जी हाँ दोस्तों, नरगिस यानी कि फातिमा रशीद भारतीय सिने जगत की एक महानतम अभिनेत्रियों में से एक थीं, जिन्हें मदर इंडिया जैसी क्लासिक मूवी में उनके दमदार अभिनय के लिए जाना जाता है, और ये फिल्म उनके फिल्मी कैरियर में मील का पत्थर साबित हुई। श्रोताओं, इन्होंने भी अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत वर्ष 1935 में मात्र 6 वर्ष की उम्र में फिल्म तलाशी हक से एक बाल कलाकार के तौर पर की थी। श्रोताओं, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वे पहली भारतीय अभिनेत्री थीं। इसके अलावा वे कला क्षेत्र में राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली फिल्मी हस्ती थीं। उन्होंने अपने सह कलाकार सुनील दत्त से वर्ष 1958 में प्रेम विवाह किया। उनके 3 बच्चे हुए, नम्रता दत्त, संजय दत्त व प्रिया दत्त। उनके पुत्र संजय दत्त बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हैं। श्रोताओं, वर्ष 1981 में अग्नाशय के कैंसर से मात्र 51 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी याद में उनके पति सुनील दत्त ने नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। श्रोताओं, राज कपूर नरगिस की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन की सबसे मशहूर और हिट जोड़ी थी। इस जोड़ी ने आर के बैनर के तले कई हिट फिल्में दी, जैसे आवारा, आग, बरसात, आह, श्री 420, चोरी चोरी, अंदाज, जागते रहो आदि। दोनों की जुगलबंदी, मासूमियत, रोमांस को जनता ने बेहद

पसंद किया। यही कारण है कि ये जोड़ी इतनी सफल रही। श्रोताओं, नरगिस न केवल राज कपूर की नायिका थी बल्कि उनकी प्रेरणा भी थी। पर्दे पर उनकी जोड़ी और उनकी केमिस्ट्री ने उनकी फिल्मों को क्लासिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आइए श्रोताओं, सिल्वर स्क्रीन पर फिल्माया गया इसी मशहूर जोड़ी का एक प्यारा सा गीत अब आपको सुनवाते हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म आह से। गायक स्वर है मुकेश एवं लता मंगेशकर के। शैलेंद्र की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया था फिल्म आहा से। और श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं अगली चर्चा की ओर। श्रोताओं, भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे महान और प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में से एक थी नूतन, जिन्होंने 4 दशकों तक अपनी अभिनय क्षमता के दम पर दर्शकों के दिलों पर राज किया। 4 दशकों तक 80 फिल्मों से अधिक फिल्मों में काम किया। अपने स्वाभाविक और संजीदा अभिनय के लिए जानी जाने वाली नूतन जी ने कई पुरस्कारों सहित 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। दोस्तों, नूतन जी का जन्म 4 जून वर्ष 1936 को मुंबई में एक फिल्म प्रधान घर में हुआ था, यानी कि उनकी मां शोभना समर्थ एक जानी मानी सफल अभिनेत्री थी, वहीं पिता कुमार सेन समर्थ फिल्म निर्माता थे। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत वर्ष 1950 में बनी फिल्म हमारी बेटी से की थी। इस फिल्म का निर्देशन उनकी मां शोभना समर्थ ने ही किया था। इसके बाद वर्ष 1952 में उन्होंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लिया और वे मिस इंडिया बनी। मिस इंडिया बनने वाली वे पहली बॉलीवुड अभिनेत्री थी। श्रोताओं, वर्ष 1959 में इनका विवाह नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से हुआ और इसके बाद उनकी दुनिया में एक और शख्स आया, उनका बेटा मोहिनीश बहल, जो हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता हैं। श्रोताओं, प्रसिद्ध हीरोइन काजोल व तनिषा उनकी भांजी व हीरोइन तनुजा उनकी सगी छोटी बहन है। श्रोताओं।

नूतनजी को अक्सर संघर्षरत, मजबूत और अपरंपरागत महिलाओं की भूमिकाओं में से उनके स्वाभाविक प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है। ऐसी ही कुछ प्रमुख फिल्में हैं सीमा, सुजाता, बंदनी, अनाड़ी, मिलन, मैं तुलसी तेरे आंगन की। श्रोताओं, फिल्म सीमा के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, जबकि मैं तुलसी तेरे आंगन के लिए उन्हें अंतिम और पांचवा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। उन्होंने कुल 7 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, जिसमें से 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का तत्कालीन रिकॉर्ड दशकों तक कायम रहा, 2 बार सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार उन्होंने जीता। श्रोताओं, इसके अलावा भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1974 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। श्रोताओं, कैंसर के कारण 21 फरवरी वर्ष 1991 में उनका निधन हो गया था। श्रोताओं, भले ही आज प्रत्यक्ष रूप से वो हमारे बीच नहीं हैं, परंतु अपनी उत्कृष्ट अदाकारी के चलते लाखों फैंस के दिलों में आज भी वो जिंदा है। ऐसी महान अभिनेत्री को फिल्मी पत्रिका की ओर से शत शत नमन। और आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं अगली चर्चा की ओर, जिसका विषय है भारतीय सिनेमा को नई दिशा देने वाले निर्माता निर्देशक एलवी प्रसाद। श्रोताओं, आप सभी को फिल्म एक दूजे के लिए तो याद है ना, प्रेम प्रसंग और बेहतरीन संगीत के लिए याद की जाने वाली सुपर डुपर हिट फिल्म थी। आज मैं इस फिल्म के बारे में नहीं बल्कि इस फिल्म के निर्माता के बारे में बात कर रही हूँ, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा प्रदान की। जी हाँ, ये मशहूर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता हैं एलवी प्रसाद। दोस्तों, बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों ही सिनेमा क्षेत्रों में भारत की पहली टॉकी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। ये फिल्में थी आलमारा, तेलुगु टॉकी फिल्म भक्त प्रहलाद और तमिल टॉकी फिल्म कालिदास। श्रोताओं, ये उपलब्धि अपने आप में इतिहास है। श्रोताओं, जब भारतीय सिनेमा बोलना सीख रहा था, उस परिवर्तन के प्रत्यक्ष साक्षी थे एलवी प्रसाद। विगत 22 जून को थी इस महान शख्स की पुण्यतिथि। दोस्तों, इस महान शख्स का जन्म 17 जनवरी वर्ष 1907 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के सोमबरप्पाडु गांव में हुआ था। इनका नाम रखा गया था अक्की केनी लक्ष्मीवारा प्रसाद राव। इस किसान पुत्र का मन किताबों से ज्यादा नाटक मंचन में लगता था। गांव के हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में सबसे आगे रहता था ये बालक। अभिनय प्रतिभा जन्मजात थी। कर्ज के कारण आर्थिक संकट आने पर परिवार मुंबई आ गया। जेब में सपने थे मगर जेब खाली थी। सिर्फ उम्मीद के सहारे पहुंचे वीनस फिल्म कंपनी में और छोटे छोटे काम किए, छोटे कलाकारों के साथ भी काम किया। जल्दी ही अभिनय का मौका मिला, ये अवसर किसी खजाने से कम न था। वर्ष 1943 में फिल्म गृह प्रवेशम में सहायक निर्देशक का काम मिला। इसे संयोग ही कहेंगे श्रोताओं, जब निर्देशक काम बीच में छोड़कर चले गए, तब संयोग से प्रसाद जी को निर्देशन का काम सौंपा गया और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी संभाला। फिल्म में अभिनय भी किया और बेहतरीन निर्देशन भी किया। वर्ष 1946 में जब फिल्म रिलीज हुई तो उसे शानदार सफलता मिली। यहीं से एक नए एलवी प्रसाद का जन्म हुआ। श्रोताओं, वर्ष 1949 में आई फिल्म माना देसम ने उन्हें नई पहचान दी। इसी फिल्म में उन्होंने एक छोटे से किरदार में उस कलाकार को मौका दिया जो आगे चलकर तेलुगु सिनेमा का सुपरस्टार बना। नाम था एंटी रामाराव और इस तरह वे दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे भरोसेमंद निर्देशक बन गए। श्रोताओं, एलवी प्रसाद जो भी फिल्में बनाते उनमें मनोरंजन और भावनाओं के साथ परिवार की संवेदनाएं शामिल होती थीं। यही कारण था दर्शक उनसे जुड़ते चले गए। दक्षिण से लेकर हिंदी सिनेमा तक वे छाए रहे। उनकी बनाई कुछ फिल्में हैं छोटी बहन, बेटी बेटे, जीने की राह, मिलन, खिलौना, विदाई और एक दूजे के लिए। इन फिल्मों ने उन्हें पूरे भारत में लोकप्रिय बना दिया। श्रोताओं, वर्ष 1956 में उन्होंने प्रसाद प्रोडक्शंस की स्थापना की। धीरे धीरे एक विशाल समूह में बदल गया। इसके अंतर्गत प्रसाद स्टूडियोज, प्रसाद फिल्म लैब्स, प्रसाद आईमैक्स, प्रसाद ईएफएक्स, प्रसाद डिजिटल और अन्य कई संस्थान स्थापित हुए। सिनेमा के अलावा उन्होंने समाज सेवा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। हैदराबाद में एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रोताओं, ये संस्थान आज दुनिया के प्रमुख
नेत्र चिकित्सा केंद्रों में गिना जाता है।

श्रोताओं, सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए वर्ष 1980 में रघुपति वेंकैया पुरस्कार एवं वर्ष 1982 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रोताओं, सिने जगत के इस महान हस्ती को फिल्मी पत्रिका की ओर से शत शत नमन। और आइए श्रोताओं, अब एलवी प्रसाद जी की हिट फिल्म मिलन से सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत, जिसमें गायक स्वर हैं मुकेश एवं लता मंगेशकर के। आनंद बख्शी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: और श्रोताओं, अब वक्त हो चला है सिने जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों का, तो आइए सुनते हैं। श्रोताओं, इस पहली खबर में फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियों को दिया गया प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार। श्रोताओं, वर्ष 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिल्म इंडस्ट्री की तीन दिग्गज हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ममूटी एवं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण से, वहीं लोकप्रिय अभिनेता आर माधवन को कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। श्रोताओं, रुख करते हैं अगली खबर की ओर। द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने 529 लोगों को ऑस्कर वोटिंग पैनल में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा है, जिसमें हॉलीवुड के फिल्म मेकर्स व एक्टर्स के अलावा भारतीय सिनेमा के अपने अपने फील्ड के 6 महारथियों को भी शामिल किया गया है। ये हैं विशाल भारद्वाज, दीपा भाटिया, नवनीत कौर, एकता लखानी, दिलीप शंकर और ए श्रीकर प्रसाद। श्रोताओं, रुख करते हैं अगली खबर की ओर। श्रोताओं, आलिया भट्ट व शर्वरी वाघ की फिल्म अल्फा 3 जुलाई को रिलीज हो रही है। इसमें मुख्य भूमिका में शर्वरी वाघ है। यशराज बैनर के तले बनने वाली इस एक्शन फिल्म में आलिया के अलावा अनिल कपूर व बॉबी देओल भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। ये फिल्म स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला प्रधान फिल्म है। और श्रोताओं, रुख करते हैं अगली खबर की ओर। श्रोताओं, हमें बड़े दुख के साथ ये समाचार देना पड़ रहा है। तमिल फिल्म उद्योग के निर्माता के भाग्यराज का 73 वर्ष की उम्र में चेन्नई में निधन हो गया। उन्हें किंग ऑफ स्क्रीन प्ले कहा जाता था। उन्होंने 75 से अधिक फिल्में बनाई व 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया। उनकी फिल्म एंगा चिन्ना रासा से प्रेरित थी सुपरहिट फिल्म बेटा। श्रोताओं, इस अंतिम खबर में जून माह में जन्मे सभी बॉलीवुड कलाकारों को फिल्मी पत्रिका की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और उन सभी कलाकारों को विनम्र श्रद्धांजलि जिनका निधन इस माह में हुआ है या जिनकी पुण्यतिथि इस माह में आती है। तो श्रोताओं, ये तो थी सिने जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। आज आपका और मेरा साथ बस इतना ही। चलने का समय हो रहा है तो अनुमति दीजिए। प्रवक्ता अर्चना जैन, प्रस्तुतकर्ता रविंद्र कुमार प्रजापति।
1: फिल्मी पत्रिका। फिल्मी पत्रिका।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे पत्रिका कार्यक्रम। प्रस्तुति थी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम होगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

0: शहर में एक बढ़िया रेस्टोरेंट था। उसका बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था। एक गरीब आदमी उसके दुकान के सामने सुबह के समय रोज आता। जैसे ही दुकान में आवाजाही बढ़ती, वो भी रेस्टोरेंट में बैठकर भरपेट स्वादिष्ट व्यंजन खाता और चुपचाप भीड़ से निकल जाता। दुकान के नौकर चौकर ने देखा और इसकी शिकायत अपने मालिक से की। रेस्टोरेंट का जो मालिक था उसने मुस्कुराकर कहा, इस बात को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ और बहुत शुक्रगुजार ऊपर वाले का कि उस गरीब व्यक्ति के भरपेट खाने से मेरा रेस्टोरेंट बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और मुझे बहुत अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। तो ये थे एक अच्छे कर्म और साथ ही ईमानदारी भी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमारे जीवन में जब हम अच्छे काम करते हैं और ईमानदारी से किसी काम को करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा या बुरा, इस बात पर हम जानेंगे आपके विचार। इसके लिए हमारे फोन नंबर हैं 2660902 और जो श्रोता साथी बाहर से हमसे बात करना चाह रहे हैं, भोपाल से बाहर से, वो उनको एसटीडी कोड लगाना पड़ेगा 0755। तो इंतजार है हमें आपके विचारों का। हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्ते नमस्ते, आकाशवाणी
0: जी, आकाशवाणी भोपाल से हम बोल रहे हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे।
1: आप कौन दीदी?
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ। स्वागत है आपका कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में, है ना? पहले आप अपना नाम बताएं।
1: रमेश पेंटर सतना से
0: जी। तो रमेश जी कैसे हैं आप?
1: ठीक है जी।
0: जी हम आपसे कुछ बातें करना चाहेंगे कि जैसे हमारे जीवन में जब हम कोई काम अच्छे से करते हैं, मन लगा कर करते हैं, ईमानदारी से उस काम को करते हैं, है ना, तो उसका क्या होता है, मतलब उसके फायदे क्या होते हैं?
1: देखिए ईमानदारी से तो देखिए हर सभी चीज का फायदा है उसमें
0: जी।
1: ईमानदारी में तो सभी चीज का फायदा है।
0: हाँ जी बताएं, इससे आपके काम कैसे होते हैं, समय पर होते हैं, सफल होते हैं, बताएं।
1: हम ही लोग लगे रहते हैं काम में दिन भर।
0: जी जी जी, इसके लिए आप सुबह से उठते होंगे, तैयारी करते होंगे, समय पर पहुँचते होंगे।
1: जी दीदी
0: बताएं किस तरह आप अपने काम को करते हैं?
1: अब हम लोग तो काम में लगे रहते तो लगे ही रहते हैं, हम लोग को तो काम दीवारों में लिखने जाना पड़ता है विज्ञापन।
0: अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो इसके लिए भी आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, सुबह उठते होंगे जल्दी, उठकर जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर जल्दी समय पर पहुंचते होंगे अपने काम पर।
1: घर पे भाई शाम को जब तक दिन निकला रहता है काम करना पड़ता है, दीवारों में लिखना पड़ता है, वॉल पेंटिंग।
0: जी जी वॉल पेंटिंग। हाँ तो मतलब यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जब हम पूरी ईमानदारी से किसी काम को करते हैं तो उसका फल हमें अच्छा मिलता है ना। पूरी ईमानदारी से अगर हम किसी काम को करें तो उसका फल हमें कैसा मिलेगा?
1: उसका फल अच्छा ही मिलता है
0: जी,
1: जब ईमानदारी से करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा
0: जी, यही मैं जानना चाह रही थी। तो देखिए आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: दोस्तों नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका, आपकी रेडियो मित्र श्वेता के साथ। एक छोटी सी कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: नमस्ते मैम, प्रणाम करता हूँ
0: जी। आपका नाम बताएं
1: जी। संतोष कुमार राव बात कर रहा था, बीरसिंहपुर पाली उमरिया मध्य प्रदेश से
0: जी। तो कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे मैडम। कहते हैं ना, वाणी से ही बीज झरे, वाणी से ही रसधार, और मीठा वाणी बोलिए जीवन का है सार।
0: बहुत अच्छी बात, हमेशा मीठी वाणी ही बोलना चाहिए।
1: जी बिल्कुल मैम। और आकाशवाणी जो मध्य प्रदेश होता है, बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रमों का संचालन करता है, और इसमें जो निकलने वाली कार्यक्रम होती है, जिसमें गीत सागर, नमस्कार भोपाल, और कार्यक्रम बात आपकी गीत, हमारे कार्यक्रम फोन करें गीत सुने कार्यक्रम, युवाणी कार्यक्रम, एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ हमें जो रोजगार के अवसर मिलते हैं, ये भी सब कुछ बतलाए जाते हैं मैडम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमें ये तो ये जानकर लग रहा है कि आप हमारे कार्यक्रमों को बहुत अच्छे से सुनते हैं, है ना? हमें बहुत अच्छा लगा। आज हम आपसे बात करना चाहेंगे कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में, कि जैसे किसी काम को हम करते हैं जीवन में, तो
1: जी।
0: आपकी पढ़ाई लिखाई भी हो सकती है, आपका दुकान, आपके व्यवसाय, नौकरी, कुछ भी हो सकता, अगर उसको हम ईमानदारी के साथ करें तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में?
1: जी, काम को यदि शांतिपूर्वक रूप से किया जाए तो काम बिल्कुल बेहतर बन जाता है। काम यदि अच्छे तरीके से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए, तो काम बिल्कुल दुगने उत्साह के साथ पूरा हो पाता है। यदि कोई व्यक्ति मजदूरी करता है, जब उसका मूल्य उसे प्राप्त होता है, तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। उसी प्रकार से यदि हम अपने कामों को आनंद के रूप में यदि लें, तो काम बोझिल नहीं नजर आता, बल्कि वह सम्मान भाव से अच्छा ही बनने का प्रयास होता है। तो काम को अच्छी ईमानदारी के साथ हमें करना चाहिए, और जीवन में अच्छा सोच रखेंगे तो सभी काम अच्छे से अच्छे हो पाएंगे।
0: बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर, है ना? आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
1: जी योगेश जांगड़े पे मैं तरह छत्तीसगढ़ से।
0: जी तो स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद।
0: बताइए क्या हालचाल है वहाँ का, मतलब मौसम क्या हालचाल है?
1: है मौसम, बारिश का तो अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं।
0: अच्छा, मतलब पानी
1: जी
0: रुक रुक कर गिर रहा है?
1: जी जी नहीं, बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है।
0: नहीं हुई है? अच्छा
1: जी
0: अच्छा अच्छा चलिए हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्द ही आपके यहाँ अच्छी से बारिश हो ताकि ठंडक पहुंचे, है ना? तो बताएं कि कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में हम आपके हम सब बात साझा करना चाह रहे थे कि जैसे कोई भी काम हम करते हैं जीवन में, है ना, निश्चित रूप से अपने जीवन से जुड़े कुछ काम, तो वो अगर हम ईमानदारी से करें तो उसका

0: क्या फल मिलता है?
1: फल यही मिलता है, सफलता जरूर मिलती है भले देर सबेर मिलती है। मतलब सही ढंग से प्रयास जब हम करते हैं, समय जरूर लगता है लेकिन उस चीज की कीमत हमें बिल्कुल मिलती है।
0: वही मैं कह
1: हाँ
0: रही हूँ
1: जी,
0: कि
1: मतलब
0: कोई, हाँ
1: कोई
0: जी
1: दूसरा रास्ता नहीं है ईमानदारी और सच्चाई के अलावा उस जगह पहुंचने के लिए।
0: बिल्कुल, कुछ लोग शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं, झूठ बोलकर काम करते हैं, तो
1: जी
0: वो सारी चीजें कारगर सिद्ध नहीं होती।
1: जी और हो भी जाए तो वो एक समय तक रहता है,
0: बस छोटे से
1: लेकिन
0: समय
1: जो
0: के लिए।
1: चीज
0: हाँ
1: हम मेहनत से और लगातार प्रयास से करते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहती है।
0: बिल्कुल, और वही मौलिक रूप में हमारे साथ होती
1: जी
0: है ना। आपने फोन किया, बहुत अच्छे विचार हम पे बांटे, इसके लिए आपका
1: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: जी नमस्ते।

0: जी नमस्ते।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी, सादर नमस्कार।
0: आपका नाम बताएं।
1: मैं बहुत पुराना श्रोता, 70 के दशक का श्रोता हूँ,
0: जी
1: राजेश नेमा, सिंहपुर बड़ा से।
0: जी तो
1: और
0: आपका
1: आप
0: जी हम
1: हमारे
0: जानते हैं
1: पत्र
0: बिल्कुल।
1: शामिल नहीं कर रहे आपकी फरमाइश में।
0: अच्छा नहीं, ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल जानती हूँ आपको। आप हमारे बहुत पुराने श्रोता
1: जी,
0: साथी हैं, है ना। और
1: नियमित पत्र भेज रहे हैं, कृपया शामिल
0: बिल्कुल
1: कीजिएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, है ना।
1: जी जी
0: और हमें बहुत खुशी होती है जब आप जैसे पुराने श्रोता साथियों से हमारी बात
1: जी
0: होती है ना।
1: मैं तो काफी पुराना श्रोता
0: जी
1: हूँ और उस समय का श्रोता हूँ जब। जी
0: बिल्कुल। तो अब हम आपसे कुछ विचार जानना चाहेंगे, बात
1: जी
0: आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में,
1: जी जी
0: कि अगर आप पढ़ाई करते हैं या आप अपने जीवन से जो जुड़े रिश्ते हैं, है ना, बहुत सारे रिश्ते
1: जी
0: हैं, हम माता पिता हैं, भाई बहन हैं, है ना,
1: हाँ हाँ बिल्कुल
0: तो
1: जी
0: मित्र हैं, तो इसमें अगर हम ईमानदार हैं, अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभा रहे हैं, अपने सारे काम ईमानदारी से कर रहे हैं, तो उसका क्या फल मिलता है हमें,
1: जी
0: बताएं।
1: बिल्कुल, बहुत आवश्यक है। रिश्ते आज के समय में वैसे भी भाग दौड़ बहुत है, तो
0: जी
1: निश्चित रूप से रिश्ते तो निभाना ही चाहिए, क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो रिश्ते ही काम आते हैं।
0: जी हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग,
1: जी
0: उन्हें हम सम्मान दें, प्यार दें और उनके अनुभव से सीखें, क्या लगता है
1: बिल्कुल,
0: आपको।
1: बहुत आवश्यक है। वो तो बुजुर्ग एक बहुत बड़ी पाठशाला होते हैं,
0: जी
1: उनका सानिध्य नितांत आवश्यक है।
0: और हम बहुत कुछ उनसे सीखते हैं, नहीं
1: बिल्कुल, बहुत,
0: है
1: वो
0: ना।
1: तो
0: आजकल
1: जरूरी
0: ऐसा हो
1: चीज
0: गया
1: है।
0: है कि बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं रहता है, मोबाइल के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, उसमें समय देते हैं, लेकिन अगर हम अपने बुजुर्गों के पास बैठकर उनकी बातों को सुने, उनके अनुभवों को सुने, तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, क्या लगता है आपको,
1: जी,
0: है ना।
1: बिल्कुल, बहुत आवश्यक है आज के समय में, क्योंकि जब इंसान मशीन हो गया है तो रिश्ते कोई भी हो संभाल के रखना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: और सबसे जो बुजुर्ग हैं उनसे तो निश्चित रूप से सान्निध्यता होनी ही चाहिए,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि एक वो जीवन का पूरा निचोड़ होते हैं और सच्ची सीख भी देते हैं।
0: बिल्कुल। और परिवार के साथ अगर हम एक समय में मिल बैठकर खाना खाएं, है ना, तो वो भी
1: हाँ
0: बहुत
1: बिल्कुल,
0: अच्छा
1: वो
0: है।
1: जी बिल्कुल, वो एक परिवार के साथ रहना और मिलकर बैठ के बातें करना और सानिध्य बनाए रखना, ये आज के समय की मांग है।
0: और इससे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें सुलझ जाती हैं।
1: हाँ बिल्कुल जी
0: हाँ,
1: बिल्कुल,
0: और
1: जीवन का
0: हम
1: निचोड़ मिलता है
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: आने वाली समस्याओं से कैसे निपटा जाए
0: इसका भी समाधान
1: उसकी एक
0: मिलता है।
1: विस्तृत जानकारी भी मिलती है।
0: बिल्कुल। तो आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और आपके पत्र आप हमें भेजते रहिए, है ना।
1: हाँ बिल्कुल, मैं तो
0: बिल्कुल
1: बहुत आकाशवाणी भोपाल का, तो मैं 70 के दशक का श्रोता हूँ
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो
1: और उस समय भी सुनता था और आज भी सुन रहा हूँ।

0: जी
1: और सभी कार्यक्रम लाजवाब हैं।
0: जी धन्यवाद। और आज आपसे बात करके भी हमें बहुत अच्छा लगा, आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी
0: नमस्कार।
1: धन्यवाद।

0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत करते हैं आपका। नाम बताएं।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते,
1: नमस्ते मैम।
0: नाम
1: मैं रानी कलिया छतरपुर मध्य प्रदेश से रशीद अहमद खान बात कर रहा हूँ
0: जी।
1: क्या विषय रखा सर मैम आपने आज?
0: अपनी जगह का नाम एक बार हमें फिर से बता दें।
1: रानी कलिया छतरपुर मध्य प्रदेश।
0: जी हाँ हाँ, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम बात आपकी, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में। आज हमने विषय रखा है कि आप कोई भी काम करते हो जीवन में, अगर आप उसे ईमानदारी से करते हैं, है ना, अपने जीवन से जुड़े सारे अच्छे काम, अगर हम पढ़ाई करते हैं, व्यवसाय है, नौकरी है, हमारा परिवार, इन सभी चीजों में अगर हम ईमानदार हैं तो उससे हमें क्या लाभ है?
1: ईमानदारी से तो अच्छा कोई है नहीं मैम, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
0: जी
1: तो उसका तो सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर हमेशा रहेगा। यदि आप अपने कर्तव्यों में, अपने व्यवस्थाओं में अगर ईमानदार हैं, संबंधों में ईमानदार हैं आप
0: जी,
1: तो हमेशा आप सक्सेस रहेंगे।
0: जी बिल्कुल। हाँ।
1: थोड़ी देर के लिए टाइमिंग दिक्कतें आती हैं, ये आ सकती हैं आज के परिवेश के हिसाब से
0: जी,
1: लेकिन अंततः विजय आपके ईमान की ही होगी, आपकी ईमानदारी की ही होगी।
0: जी जी जी बिल्कुल,
1: तो उसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए ईमानदार होना तो एक बहुत मतलब अच्छी चीज है।
0: जी बिल्कुल।
1: और बाकी तो इधर मतलब आज के जैसे वातावरण बदल रहा है
0: जी जी,
1: उसी हिसाब से लोग इधर उधर सब मतलब होते रहते हैं काम, अभी इससे कुछ कह दिएगा, अभी उससे कुछ कह दिया, लेकिन अंततः जो है वो ईमानदारी ही आपको सक्सेस की राह पे लेके जाती
0: है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो आपके काम हो, है ना, कोई भी क्षेत्र हो, अगर आप उसमें लगन है, आप में ईमानदारी है आप में, तो आप जरूर सफल होंगे, है ना।
1: डेफिनेटली वो है ही भाई, वो सक्सेस का तो एक तो कोई शॉर्टकट नहीं है और कोई मतलब उसका वो नहीं है, उसमें कोई मिलावट करके आप काम कर रहे हैं वो नहीं है,
0: ना? जी बिल्कुल।
1: ईमानदार का, ईमानदारी का संबंध डायरेक्ट आत्मा से है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए
1: तो आत्मा में मिलावट नहीं चलती मैम।
0: बिल्कुल,
1: दुनियादारी मिलावट चल जाएगी लेकिन आत्मा और परमात्मा मिलावट नहीं चलेगी। आपको ईमानदार होना ही पड़ेगा तभी आप सक्सेस हो पाएंगे।
0: बिल्कुल, तभी आपका जीवन सहज सुंदर होगा, है ना। आपने फोन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: थैंक यू मैम।
2: सजन रे झूठ मत बोल।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी।
0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका। आपका नाम बताएं।
1: मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से।
0: जी तो स्वागत है आपका कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में। और आज
1: धन्यवाद
0: हमने
1: दीदी आपको।
0: जी आज हमने विषय रखा है कि जीवन में आप अपने काम के प्रति अगर ईमानदार हैं तो उससे क्या फायदे हैं आपको।
1: दीदी जीवन में अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं
0: जी
1: तो उसमें सफलता निश्चित मिलती है और असफलता का नाम नहीं रहता है।
0: बिल्कुल। और अगर आप लगन से करते हैं है ना, साथ ही
1: और
0: साथ
1: उसमें उसमें आपको तरक्की होना ही होना है।
0: बिल्कुल। और साथ ही साथ ये ईमानदारी अगर आप जीवन में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ रखते हैं तो उससे फायदा होता है आपको,
1: बिल्कुल दीदी।
0: है ना। परिवार में
1: घर का विश्वास बना रहता है
0: बिल्कुल, जैसे
1: और
0: आपके
1: अच्छा
0: बड़े
1: लगता
0: बुजुर्ग
1: है।
0: हैं घर पर, बड़े बुजुर्ग
1: जी
0: हैं है ना, उनका आप
1: जी
0: सम्मान करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनके अनुभवों को सुनते हैं तो इससे आपको फायदा मिलता
1: जी जी जी
0: है
1: जो
0: ना।
1: हमारे बड़े हैं तो वो अपना अनुभव हमसे शेयर करेंगे तो हमको भी अच्छा ज्ञान हो जाएगा
0: बिल्कुल
1: और हम अपना ज्ञान बच्चों को शेयर करेंगे उनको भी ज्ञान हो जाएगा।
0: बिल्कुल। और काम जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप नौकरी कर रहे हैं या कहीं पर आपका व्यवसाय है, अगर आप इन कामों में झूठ बोलते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं तो इससे आपको सफलता अगर मिलती है वो सफलता बहुत लंबे समय के लिए नहीं होती। क्या सोचते
1: बिल्कुल
0: हैं
1: दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं जी।
0: आप, अगर हम मेहनत
1: देखिए
0: हैं।
1: मैं दुकानदार हूँ
0: जी
1: तो मेरा बिजनेस है
0: जी जी
1: तो अगर बिजनेस के प्रति ईमानदार नहीं रहूंगा, ग्राहकों के प्रति ईमानदार नहीं रहूंगा
0: बिल्कुल
1: तो कोई एक बार किसी को धोखा दे सकते हैं, बार बार नहीं दे सकते।
0: बिल्कुल है ना। बहुत अच्छी बात कही आप। ग्राहकों के प्रति अगर ईमानदार हैं, उन्हें अच्छा सामान दे रहे हैं तो वो आपकी दुकान में आएंगे ही।
1: जी बिल्कुल दीदी
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: आपका कारोबार बढ़ेगा है ना।
1: जी
0: जी आपने फोन किया और बहुत ही अच्छे विचार हम तक बांटे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी। धन्यवाद आपको भी।

0: जी नमस्कार।
1: हेलो,
0: हाँ कार्यक्रम बात आपकी गीत
1: वंदे
0: हमारे।
1: मातरम।
0: जी नमस्कार, आपका नाम बताएं।
1: किशन घी वाला।
0: जी तो कहाँ से
1: हेलो,
0: बात कर रहे हैं आप, आपकी जगह का नाम बताएं।
1: दमोह।
0: जी कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये कार्यक्रम में आपका फोन लगा है और हम बात कर रहे हैं आज ईमानदारी के गुण की, कि अगर आप ईमानदार हैं तो उससे आपके
1: जी
0: जीवन में आपको क्या फायदा है।
1: बहुत अच्छा विषय है,
0: जी
1: मेरा ही विषय है ये। जी
0: जी जी जी
1: सुनिए,
0: हाँ
1: मेरा ऑटोमोबाइल का काम है।
0: जी जी जी
1: तो यदि हम दुकान चलाते हुए, अपना व्यापार करते हुए ईमानदारी से, मतलब जिस चीज का जो रेट है वही बताते चले जाते हैं सबको, तो वो फिर हमें याद नहीं करना पड़ता। एक दो बार बस देखा कि इसमें गेयर की कीमत 920 है, तो सबको 920।
0: बिल्कुल, बहुत
1: आप
0: अच्छी
1: सुन
0: बात।
1: रही
0: हाँ
1: हैं?
0: जी बिल्कुल, मैं आपकी बात ध्यान से सुन रही हूँ। अगर आप ईमानदार हैं तो निश्चित रूप से
1: जी,
0: आपका कारोबार बढ़ेगा,
1: दूसरी चीज,
0: है ना।
1: आप हमारे यहाँ वर्कशॉप है,
0: जी जी
1: सर्विस सेंटर है मारुति,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: उसमें जो भी पार्ट

0: लगता है,
1: जी जी
0: जो भी, चाहे वो 2 रुपए का बोल्ट है या स्क्रू है, और चाहे वो 5,000 रुपए का कोई पार्ट है। तो ईमानदारी से उतना ही लिखा जाता है, उसमें हेरा फेरी या आज की भाषा में कष्टपट कुछ नहीं किया जाता।
1: बिल्कुल।
0: तो वो फिर हमेशा के लिए, कोई भी हमारा बिल देखता है तो हमारे बिल ऑनलाइन जाते हैं, जरा भी उसमें संशय नहीं रहता है। कोई अगर 6 महीने बाद भी बिल देखे कि आपकी मारुति, हमारी मारुति में ये काम हुआ था,
1: जी
0: तो
1: जी
0: बराबर हुआ था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत विश्वास की बात है और आपका एक भरोसा रहेगा अपने ग्राहकों के लिए, तो
0: उससे बहुत फायदा होता है।
1: जी जी
0: लाभ होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखिए, हाँ फोन किया,
0: ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा अनुभव
0: है,
1: बहुत अच्छा अनुभव। हाँ, तो बस हम इस कार्यक्रम में तो आपके विचार जानना चाह रहे हैं, आपके अनमोल विचार जो हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आपने फोन किया,
0: आपसे सीखने को मिल जाता ना।
1: जी जी जी,
0: आप भी बता दीजिए, आप कौन बोल रही हैं?
1: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ, और आपसे जो विचार हमने सुनने को मिले वो बहुत अच्छे लगे, है ना? इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम कह सकते हैं। नमस्कार।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: जी नमस्ते।
2: जी नमस्कार बहन जी,
1: आपका नाम बताएं।
2: जी मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजना, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से बात।

0: जी, तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपका फोन लगा है कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में, है ना।
1: जी,
0: और
1: बताइए कैसा क्या है आज।
0: आज हम बात कर रहे हैं ईमानदारी के गुण के, कि हम अपने जीवन में अगर किसी भी काम से जुड़े हुए हों, अपने जीवन से जुड़े अच्छे काम, आपका रोजगार, आपका व्यवसाय, पढ़ाई, तो इन सब चीजों में ईमानदारी के क्या मायने हैं।
1: ईमानदारी के मायने है कि जैसे अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं तो अपन को मतलब पीछे नहीं हटना पड़ेगा, सफलता ही सफलता मिलती जाएगी आगे के लिए। जी
0: बिल्कुल,
1: और ईमानदारी से भी काम करना चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल,
1: और कोई काम है तो ऐसा नहीं है कि मतलब बेफजूल का पैसा ही लेना चाहिए किसी का, जो काम करे वो ईमानदारी से करे।
0: बिल्कुल, अगर ईमानदार हैं हम तो निश्चित रूप से मतलब एक भरोसा कायम होगा हमारा
1: जी जी
0: लोगों के
1: जी
0: प्रति, है ना, और लोग हम पे विश्वास करेंगे, है ना,
1: जी बिल्कुल
0: और हम
1: बिल्कुल
0: निश्चित रूप से सफल होंगे।
1: जी
0: तो
1: जी आज आप

0: जो काम करें वो ईमानदारी से करें।
1: बिल्कुल, अगर ईमानदार हैं हम तो निश्चित रूप से मतलब एक भरोसा कायम होगा हमारा
0: जी जी
1: लोगों के
0: जी
1: प्रति, है ना, और लोग हम पे विश्वास करेंगे, है ना,
0: जी बिल्कुल
1: और हम
0: बिल्कुल
1: निश्चित रूप से सफल होंगे।
0: जी जी
1: तो
0: आज आप शायद मुझसे लगता है,
1: नहीं, मैं आपके रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ,
0: अच्छा
1: है
0: शायद
1: ना।
0: आपसे पहली बार बात हो रही।
1: जी, और आपसे बात करके भी हमें बहुत अच्छा लगा, आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: ये था कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे। इस कार्यक्रम में आज मैं थी आपकी रेडियो मित्र श्वेता। तो सभी को मेरा नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृहमंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर अमर वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने एक पोस्ट में कहा कि महान सेनानियों ने आदिवासी समाज के शोषण के विरुद्ध और अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और विश्व भर के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। एक पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। प्रदेश भर में जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के भैंसवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान जल संरक्षण के कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पंचायतों, शासकीय विभागों, निजी संस्थाओं, विभिन्न संगठनों और समूहों सहित जागरूक नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में इस वर्ष ग्रामीण, नगरीय, वन, सिंचाई, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न स्तरों पर लगभग 3,62,000 से अधिक जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य किए गए हैं। 3 जुलाई से शुरू हो रही 57 दिन की अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और भोपाल के गांधी भवन में आज शाम 6 बजे भारत में भाषाओं की भूमिका विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आ गले लग जा। इस फिल्म का गाना आवाज है किशोर कुमार सुषमा श्रेष्ठा की, साहिल लुधियानवी के बोल है और संगीत है आर डी बर्मन का। और इस गाने को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। और साथ ही साथ ये फरमाइश हम तक आई है शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमलेश, सरोज, आरती, ऋतिका, स्वीटी, रिया, ऋषभ ने इस गाने को पसंद किया है। तो चलिए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म आ गले लग जा का ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और ये पत्र हम तक आया है राजा रामनगर देवास से राजू अग्रवाल शांति महाजन मुकेश महाजन का और साथ ही साथ उपाध्याय नगर से मुरारीलाल वर्मा मनीष वर्मा शिवम वर्मा और साथ ही साथ नागू सिंह कुमावत राजकुमार कुमावत अभिषेक कुमावत आप सबकी पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म लोफर का गाना लता मंगेशकर की आवाज है, आनंद बख्शी की बोल है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अब सुनिए फिल्म राम लखन का गाना, मनहर अनुराधा और साथियों की आवाज है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और शब्द रचना है आनंद बख्शी की। और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता है बड़वाहा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी शिमाली, और ये फरमाइश है पटेल नगर पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और आरजू ने इस गीत को पसंद किया है।

स्वातंत्र्यम का गाना सुनिए, आवाज लता मंगेशकर की। गाने को लिखा है सावन कुमार ने और संगीत है उषा खन्ना का। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता है सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। साथ ही अमरावती महाराष्ट्र से नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं तुम बिन। इस फिल्म का गाना आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम और साथियों की। फैज अनवर ने गाने को लिखा है और संगीत है निखिल विनय का। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं दतरेंगी से भागवत वर्मा, गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और सिंगारपुर से सालिक पुजारी। साथ ही साथ इंदौर से ये फरमाइश हम तक आई है लाल फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन और तानिया की।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 12वीं कड़ी।

0: धारावाहिक भुवन मोहिनी में अब तक आपने सुना, हूणों के साथ युद्ध में भुवन मोहिनी छाया की तरह विजय श्रवा के साथ रही और विजय श्रवा को विजय हासिल हुई। भुवन मोहिनी और राजमाता को दिए गए वचन के अनुसार विजय श्रवा ने चंद्रहासिनी से विवाह किया, सम्राट बना। भुवन मोहिनी उन दोनों के सुखमय जीवन के लिए दूर चली गई और समाज सेवा में जुट गई। जब वो वापस लौटी तो चंद्रहासिनी ने भुवन मोहिनी का अपमान किया। उससे दुखी होकर विजय श्रवा भुवन मोहिनी को अपने पास बुलाकर महल से अलग रहने लगा। चंद्रहासिनी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सम्राट विजय श्रवा ने उसको निष्कासित करने का आदेश दे दिया। भुवन मोहिनी के निवेदन पर राजकुमार ने चंद्रहासिनी को क्षमा कर दिया। भुवन मोहिनी एक बार फिर दोनों को समीप करके स्वयं दूर चली गई और 5 वर्षों तक इधर उधर भटकने के बाद ये सोचकर वापस आई कि अब सब ठीक हो गया होगा, सम्राट उसे भूल चुके होंगे और अब वो स्थिर होकर शांतिपूर्वक अपना शेष जीवन बिताएगी। सम्राट ने उसे एक अलग महल दे दिया जहाँ भुवन मोहिनी बीमार रहने लगी। असलियत का पता लगाने जब विजय श्रवा चंद्रहासिनी के महल गया तो उसे पता चला कि चंद्रहासिनी अपनी ममेरी बहन विमला के हाथों भुवन मोहिनी को जहर दिला रही है। अब आगे क्या होता है सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 12वीं कड़ी में।
1: नीच स्त्री, कहाँ गई वो चिकित्सिका?
2: वो उधर छुप रही है स्वामी।
1: ठहर चांडालनी, निकाल वो विष के शीशे, कहाँ छुपा रखी है? निकाल कुलटा।
3: निकालती हूँ, ये रही सम्राट।
1: अरे नक, इससे दोनों हार भी छीन लो।
2: चल निकाल, दोनों हार कहाँ है?
3: ये है सम्राट।
1: अब इन दोनों की गत मैं बनाता हूँ, चलो दोनों।
3: सम्राट,
1: इस प्रासाद में रहने वाले सभी दास दासियां देख लो, अपनी साम्राज्ञी की काली करतूतों। इसने अपनी बहन को बुलाया था भुवन मोहिनी की हत्या के लिए। ये कृतज्ञ स्त्री भुवन मोहिनी के त्याग और बलिदान के बदले उसे विष दिला रही थी। महाराज आदित्य सेन की पुत्री का वास्तविक स्वरूप देख लिया? देख लो अच्छी तरह से, देख लो सब और जान लो इसके चरित्र को अच्छी तरह से। भुवन मोहिनी ने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया इसके लिए। प्रतिकार में ये क्या दे रही थी भुवन मोहिनी को? ये विष की शीशी जिसके स्पर्श मात्र से किसी के भी प्राण निकल सकते हैं। इन हत्यारियों के सुंदर चेहरों के धोखे में आकर तुम लोग भी इनके कहने पर आ गए। ये विमला नाम की स्त्री कोई चिकित्सिका नहीं, ये डायन है, डायन। सैनिक स्त्रियों, ले जाओ इन दोनों को, इसी महल में अलग अलग कोठरों में बंद कर दो। और सुनो ध्यान से, किसी ने भी लालच में आकर इन दोनों में से किसी की भी कोई सहायता की तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मेरी आज्ञा के बिना इन दोनों को कोई वस्तु ना दी जाए। मेरी आज्ञा के बिना इन दोनों से किसी को बात न करने दिया जाए, भले ही वो राज परिवार का ही क्यों ना हो। यदि मुझे इसकी जानकारी मिली कि किसी भी प्रकार की शिथिलता की गई तो उसे मैं राजद्रोह मानूंगा। राजद्रोह, ये आदेश राज परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए भी है।

0: राजमाता, राजमाता।
1: क्या हुआ संरक्षिका, क्या हुआ? तुम सब लोग इतनी डरी हुई क्यों हो?
0: राजमाता, आज हम सब ने सम्राट का वो रूप देखा जो भगवान न करे कभी किसी को दोबारा देखना पड़े।
1: क्या हुआ?
0: सम्राट साम्राज्ञी और उनकी अतिथि बहन विमला को अंतर कक्ष से मारते पीटते बाहर ले आए और बंदी गृह में बंद करा दिया।
1: क्या कहा? किस अपराध में?
0: भुवन मोहिनी की हत्या के प्रयास के अपराध में।
1: क्या?
0: हाँ,
1: साम्राज्ञी ऐसा नहीं कर सकती। चलो मैं देखती हूँ।
0: परंतु?
1: क्या परंतु, मैं स्वयं देखती हूँ, तू घबरा मत। संरक्षिका, गांधारी स्त्रियों से कहो बंदी गृह का द्वार खोले।
0: क्षमा राजमाता, क्षमा। सम्राट का आदेश है इन अपराधिनियों से कोई नहीं मिल सकता, चाहे वो राज परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो।
1: क्या?

0: सावधान, भारत सम्राट विजय शर्मा अंतापुर में आ रहे हैं।
1: अरण्यक, सबको कहो कि बंदी गृह के सामने मेरे आदेश को सुनने के लिए उपस्थित हूं।
2: जो आज्ञा।
0: अंतापुर के सभी राज कर्मचारी सम्राट का आदेश सुनने के लिए बंदी गृह के समक्ष उपस्थित हो। शीघ्रता करो।
3: सम्राट, सम्राट हमें क्षमा कर दीजिए। सम्राट हमें, सम्राट क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। सम्राट, सम्राट, सम्राट।
1: कितनी बार चंद्रहासिनी, कितनी बार क्षमा करूं? यदि भुवन मोहिनी की हत्या तुम कर चुकी होती तब भी क्या तुम क्षमा मांगती?
4: प्रणाम सम्राट,
5: प्रणाम सम्राट,
4: प्रणाम सम्राट।
1: इनमें से महिला मजदूर कौन है?
4: हम लोग हैं सम्राट,
5: हम लोग हैं।
3: अंतिम बार, अंतिम बार सम्राट, आपको अपने बच्चे की सौगंध। हमें क्षमा कर दीजिए सम्राट, हमें क्षमा कर दीजिए।
1: मैं विवश हूँ चंद्रहासिनी तुम्हारे छल कपट से, इसलिए अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होगा। सुन लो सब लोग, एक बार पुनः मैं इन दोनों के अपराधों को दोहराता हूं। राजकुमारी चंद्रहासिनी ने अपनी ममेरी बहन विमला को बुलाकर भुवन मोहिनी के प्राण लेने की चेष्टा की थी, ये जानते हुए भी कि मैं उसकी अस्वस्थता के समय स्वयं उसके जीवन की रक्षा कर रहा था। कई बार क्षमादान दे चुकने के बाद भी साम्राज्ञी ने मेरे और मेरे आदेशों की हर संभव उपेक्षा की। महिला श्रमिकों को मेरा आदेश है कि प्राण हत्या के प्रयास के आरोप में चंद्रहासिनी और उसकी बहन विमला की कोठरियों को बंद कर दिया जाए। वो दोनों बहनें दीवारों के भीतर चुनवा दी जाएं आज ही।
3: नहीं, नहीं सम्राट।

0: चाहा किया तुमने, चंद्रहासिनी को मृत्यु दंड का परिणाम अनिष्टकारी होगा पुत्र, अनिष्टकारी। संभवतः महाराज, आदित्य सेन अपनी एकमात्र संतान के जीवन विनाश की कहानी धैर्य पूर्वक न सुन सके और चंद्रहासिनी और विमला का निधन किसी सर्वनाश को न आमंत्रित कर बैठे पुत्र।
1: राजकीय आदेशों के प्रति किसी को कोई असहमति नहीं होनी चाहिए माँ। गंभीरतम अपराधों का दंड भी गंभीर और भयानक होता है। चंद्रहासिनी राजकुमारी बनकर भी अपने जीवन में महानता को स्थान न दे सकी। भारत राष्ट्र की साम्राज्ञी ऐसे नीच षड्यंत्रों का आश्रय ले, इसका प्रभाव सारी जनता पर कितना भयानक पड़ता, कभी सोचा है आपने? मुझे दुनिया क्या कहती? यदि मैंने चंद्रहासिनी को क्षमा कर दिया होता तो संभवतः कल वो मुझसे ही प्रतिकार लेने को तत्पर हो जाती। निरंतर मेरी उपेक्षा करके बारंबार क्षमा और अभयदान का अनुचित लाभ उठाया है उसने। ऐसी अनैतिक घटनाओं का जनजीवन पर सर्वदा भयानक प्रभाव पड़ता, इसलिए जैसा अपराध साम्राज्ञी ने किया वैसा ही दंड उसे भोगना भी पड़ेगा।
0: मैं क्या करूं जिससे मेरी पुत्र वधू का जीवन बच जाए? चाहती तो ये हूँ कि बंदी गृह का द्वार तोड़वा दूं, परंतु सम्राट ने वहां सैनिक पहरा बिठा दिया है। क्या होगा मेरे 5 वर्ष के पौत्र का, जो मातृविहीन होकर अति दीन मलिन सा दीख पड़ने लगा? अब मुझे ही उसे अपने संरक्षण में रखना होगा। अब मेरे पास इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं कि अपने वृद्ध पति को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं।

0: अब मैं जीना नहीं चाहती। ये सारा कलंक मुझ पर ही आरोपित किया जाएगा ना। दुनिया तो यही कहेगी कि सम्राट ने एक नर्तकी का पक्ष लेकर स्वयं अपनी साम्राज्ञी को मृत्यु दंड प्रदान किया है। अब मैं जीकर क्या करूंगी। ये कलंक ढोने से उचित तो ये है कि अब मैं रुग्ण शैया से उठूं ही ना।
1: नहीं देवी भुवन मोहिनी, ऐसा मत सोचिए, अन्यथा सम्राट तो और भी दुखी हो जाएंगे। वो अपने निर्णय से अभी ही बहुत दुखी हैं। एक मास हो गए वो संपूर्ण कार्यों से जैसे संन्यास ले चुके हों, एकांत वास में ही हैं।
0: जिस राजकुमारी के सुख के लिए मैंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, अंत में उसी का अस्तित्व ना पाऊं तो मेरा समर्पण तो व्यर्थ ही हो गया।

0: सम्राट का क्या होगा? अरण्यक, जी चाहता है कि एक बार सम्राट को जाकर मैं स्वयं समझाने का प्रयत्न करूं।
1: कोई लाभ नहीं होगा देवी, सम्राट किसी से भी नहीं मिलना चाहते। इतना अवश्य कह सकता हूं कि मैं आपकी मनोभावनाओं को उन तक अवश्य पहुंचाऊंगा।

0: असक्त रणभिष्वंग पुत्र दार गृह दिशु। मैं स्त्री पुत्र और गृहादिक के निर्मम सामीप्य से अपनी अंतरात्मा को मुक्त कर चुका हूं। बस अरण्यक भुवन मोहिनी की धुंधली स्मृति मात्र से मुक्त नहीं हो पाया। कैसी है वो?
1: पूरे प्रकरण से वो बहुत ही आहत है मित्र। वो आपसे मिलना चाहती है।
0: नहीं अरण्यक, जब मैंने निर्मम न्याय के चरणों में साम्राज्ञी का बलिदान कर दिया, तब भुवन मोहिनी के प्रति आसक्ति को भी छोड़ना होगा, क्योंकि भुवन मोहिनी के स्त्री सौंदर्य के उपभोग करने की लिप्सा ने ही तो इस बलिदान की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है, जिस पर चढ़कर चंद्रहासिनी को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। यदि विवाहिता पत्नी को पति के संपूर्ण प्रेम की आकांक्षा थी तो वो पाप नहीं था, मैं जानता हूं, किंतु संपूर्ण स्नेह दान न मिलने पर उसके हृदय में द्वेष और प्रतिहिंसा की भावना जागृत हुई और निरपराध भुवन मोहिनी का सर्वनाश करने के कुचक्र ने उसे मृत्युदंड दिलाया। इसमें मेरा क्या दोष? चंद्रहासिनी ने तो स्वयं ही मेरी पत्नी बनने का आग्रह किया था, ये जानते हुए कि मैं भुवन मोहिनी के प्रति अपने को पूर्णतः समर्पित कर चुका था। भुवन मोहिनी उदारता पूर्वक उसका स्वागत करती रही और उसके मांगने पर अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इसके बाद भी चंद्रहासिनी को कृतज्ञ बनकर भुवन मोहिनी को विषपान कराने के षड्यंत्र में नहीं तल्लीन होना चाहिए था। इस निर्णय का मुझे कोई पश्चाताप नहीं। चंद्रहासिनी ने जैसा किया वैसा ही परिणाम पाया। अरण्यक, मैं भुवन मोहिनी से मिलना चाहता हूं, उसे बुला लाओ आज ही।
1: जो आज्ञा मित्र।

ये मैं क्या देख रही हूँ? प्रस्तर हृदय वाला भारत का सम्राट अपनी करुणा से स्वयं विगलित है। आपके नेत्रों में करुणा की ये अश्रुधारा क्यों?

मैं सम्राट होकर भी आज दीनहीन बन गया हूं भुवन। अब इस अभिशापित जीवन का अंत हो, बस यही कामना है। मैंने अपना सर्वनाश कर डाला। मैं यदि सम्राट न होता तो शायद इतनी क्रूरता मेरे जीवन में ना आती। आज मैंने अपने इकलौते पुत्र को मातृत्व के सुख से वंचित कर दिया। माता पिता को अपनी सेवकनी पुत्र वधु से वंचित कर दिया। मुझे क्या मिला? हत्या का पाप?

कर दिया, माता पिता को अपनी सेवकनी पुत्र वधु से वंचित कर दिया। मुझे क्या मिला? हत्या का पाप? आज चंद्रहासिनी मेरी अंतर्दृष्टि के अत से इति तक समाई हुई है। मानो नेत्रों में आंसू भरे दया की भीख मांग रही हो।

0: और मेरे सामने भीषण रक्त सागर उद्वेलित होता दिखाई पड़ता है।
1: रक्त सागर
0: महाराज आदित्य सेन की प्रतिच्छाया मानो भीषण प्रतिकार के लिए उद्विग्न। वो अपने प्राणों से प्रिय एकमात्र संतान के सर्वनाश का प्रतिकार लेना चाहते। बड़े बड़े सामंतों की नंगी तलवारें म्यान से निकल चुकी हैं और वो चंद्रहासनी के मृत्यु का पाप प्रक्षालन करने के लिए चंडी की जिह्वा बनकर मेरी सेना और स्वयं मेरे शरीर का रक्त दान मांग रही है। मेरी न्याय प्रियता का भयानक परिणाम प्रतिशोध की रक्त वैतरणी है भुवन मोहिनी, जिसमें मेरे सहित साम्राज्य की सेना को भी निमग्न होना होगा।
1: देव, क्या महाराज आदित्य सेन भारत सम्राट से युद्ध चाहते हैं?
0: हाँ भुवन मोहिनी, मुझे सूचना प्राप्त हो चुकी है कि वो बड़ी तत्परता के साथ भयानक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मुझे उनकी सेना की जितनी चिंता नहीं है, उससे अधिक भय है कि बारंबार पराजित हो जाती हमारे आपसी वैमनस्य का लाभ उठाकर भारत भूमि पर अधिकार करने का प्रयास करेगी, जिसका संभव परिणाम राष्ट्र की स्वतंत्रता का अपहरण होगा और भारतीय राष्ट्र शताब्दियों सहस्त्राब्दियों तक पराजय और दासत्व के कलंक का टीका लगाकर विदेशी आक्रामक शक्तियों के चंगुल में फंस जाएगा।
1: सम्राट, क्या राजकुमारी को दंड देने के पूर्व इन संभव परिणामों की ओर आपने विचार नहीं किया था?
0: सब कुछ किया था, किंतु मैं नहीं चाहता था कि भारतीय राष्ट्र की साम्राज्ञी इतना निंद और गर्हित कर्म करे, और विशेषकर उसके साथ जिसकी रक्षा का अभेद्य कवच बनकर मैं स्वयं खड़ा था।
1: पूज्य सम्राट, क्या ये युद्ध टाला नहीं जा सकता?
0: टाला जा सकता है।
1: कैसे?
0: भुवन मोहिनी के कटे हुए शीश को भेजकर।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी की 12वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृहमंत्री अमित शाह ने हुल दिवस के अवसर पर अमर वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने एक पोस्ट में कहा है कि महान सेनानियों ने आदिवासी समाज के शोषण के विरुद्ध अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और विश्वभर के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। प्रदेश भर में जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के भैरवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान जल संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में इस वर्ष ग्रामीण, नगरीय, वन, सिंचाई, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न स्तरों पर लगभग 3.62 लाख से अधिक जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य किए गए हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है, जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और हमारे ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। बहने सुने अपना कार्यक्रम महिला सभा।

मुश्किलें और समस्याएं केवल आपके कमजोर मन की रचनाएं हैं, इसलिए श्रेष्ठ विचारों से अपने मन को शक्तिशाली बनाइए। इस विचार को लेकर आज के महिला सभा कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं दमयंती वाजपेयी। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। बहनों, कहा जाता है कि एक स्वस्थ महिला पूरे परिवार की ताकत होती है। वो अपने प्रेम, त्याग और समर्पण से घर को सजाती है, संवारती है, लेकिन अक्सर ही अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देती है। समय पर स्वास्थ्य जांच ना होने के कारण छोटी छोटी बीमारियां भी गंभीर रूप ले सकती हैं, तब उनका उपचार भी कठिन हो जाता है। तो बहनों, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हम सभी के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो हमें स्वस्थ, आत्मविश्वासी और जीवन के हर पड़ाव पर सशक्त बनाए रखता है। नियमित हेल्थ चेकअप हमें अपने स्वास्थ्य की वास्तविक स्थिति से अवगत कराता है, जिससे शरीर में होने वाले बदलावों और संभावित बीमारियों का समय रहते पता चल सकता है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड, एनीमिया, स्तन कैंसर और गर्भाशय संबंधी कई बीमारियां शुरुआती अवस्था में ही आसानी से पहचानी और नियंत्रित की जा सकती हैं। समय पर जांच और उपचार न केवल बीमारी की गंभीरता को कम करता है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। बहनों, वर्तमान जीवन शैली, खानपान, तनाव और शारीरिक गतिविधियों की कमी

हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। तब ऐसे समय में नियमित स्वास्थ्य जांच अपने शरीर की जरूरतों को समझने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही उचित आहार, व्यायाम और आवश्यक सावधानियां अपनाकर कई बीमारियों से बचा जा सकता है। वैसे बहनों, महिलाओं का स्वास्थ्य केवल हमारा व्यक्तिगत विषय नहीं है, वरन पूरे परिवार की खुशहाली और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। यदि परिवार की धुरी यानी महिला ही स्वस्थ नहीं होगी तो परिवार की खुशियों का संतुलन भी डगमगा सकता है। इसलिए महिलाओं के लिए नियमित हेल्थ चेकअप केवल एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति जिम्मेदारी, आत्मसम्मान और स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। जब घर का हर सदस्य स्वस्थ हो, चेहरे पर खिली खिली रौनक हो, तब उस घर का तो क्या ही कहना।

0: क्या कहना। अभी हमने इस फिल्म का गीत कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन की आवाज में सुना। मजरूई सुल्तानपुरी की रचना को संगीत दिया था राजेश रोशन ने। बिनु भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर योग और प्राणायाम आज पूरे विश्व में स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन का आधार बन चुकी है। योग में केवल शरीर को स्वस्थ रखने की कला नहीं है, बल्कि ये मन, मस्तिष्क और आत्मा को भी ऊर्जा और शांति प्रदान करता है। तो वहीं प्राणायाम श्वासों के माध्यम से शरीर में नई चेतना और सकारात्मक का संचार करता है। तो योग और प्राणायाम के महत्व को विस्तार से जानने के लिए सुन लेते हैं वार्ता। वार्ताकार हैं राम कुंवर पटेल।
1: आज का युग तीव्र गति, प्रतिस्पर्धा, तनाव, चिंता, अनियमित जीवन शैली और शारीरिक मानसिक समस्याओं का युग बन गया है। ऐसे समय में योग और प्राणायाम मानव जीवन के लिए एक वरदान सिद्ध हो रहे हैं। ये केवल व्यायाम की विधियां नहीं हैं, बल्कि जीवन को संतुलित, स्वास्थ्य, शांत और सफल बनाने वाली संपूर्ण जीवन पद्धति है। योग शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, जबकि प्राणायाम श्वास के माध्यम से शरीर में प्रवाहित होने वाली जीवन ऊर्जा अर्थात प्राण को नियंत्रित और संतुलित करता है। इन दोनों का नियमित अभ्यास मनुष्य को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाता है। वर्तमान समय में विश्व भर के लोग योग प्राणायाम के महत्व को समझ रहे हैं। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह भारतीय ज्ञान परंपरा की विश्वव्यापी स्वीकृति का प्रमाण है। योग का अर्थ एवं स्वरूप। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। योग का वास्तविक अर्थ आत्मा का परमात्मा से मिलन तथा शरीर, मन और बुद्धि का संतुलित विकास है। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने योग के जीवन का आधार माना है। महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृद्धियों का निरोध या नियंत्रण ही योग है। योग केवल आसनों तक सीमित नहीं है, यह एक व्यापक विज्ञान है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि जैसे 8 शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाकर आत्मिक उन्नति की ओर ले जाना है। प्राणायाम का अर्थ एवं स्वरूप। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण जीवन शक्ति, आयाम विस्तार या नियंत्रण, अर्थात प्राणों का विस्तार, नियंत्रण और संतुलन ही प्राणायाम कहलाता है। श्वास केवल हवा का आवागमन नहीं है, बल्कि जीवन ऊर्जा का स्रोत है। जब हम श्वास को नियंत्रित ढंग से लेते हैं और छोड़ते हैं, तब शरीर में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। प्राणायाम के माध्यम से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचती है और मन शांत एवं एकाग्र बनता है। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, उज्जयायी, शीतली, शीतकारी और भस्त्रिका आदि प्रमुख प्राणायाम हैं। योग का ऐतिहासिक महत्व। योग की परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है। इसके प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मूर्तियों और मुहरों से मिलते हैं। वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों में योग का विस्तृत वर्णन मिलता है। महर्षि पतंजलि ने योग को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। बाद में अनेकों संतों, योगियों और आचार्यों ने योग का प्रचार प्रसार किया है। आधुनिक युग में योग ने वैश्विक पहचान प्राप्त की है। आज अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों में योग शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। योग का शारीरिक महत्व क्या है? शरीर को स्वस्थ बनाता है। योग शरीर के प्रत्येक अंग को सक्रिय करता है। नियमित योगाभ्यास से शरीर लचीला, मजबूत और ऊर्जावान बनता है। यह मांसपेशियों, हड्डियों तथा जोड़ों को स्वस्थ रखता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। योग शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। इससे शरीर विभिन्न रोगों से लड़ने में सक्षम बनता है। रक्त संचार में सुधार। योगासन रक्त

संचरण को सुचारू बनाते हैं। इससे शरीर के सभी अंगों तक पर्याप्त पोषण और ऑक्सीजन पहुंचती है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। योग के अनेक आसन पाचन तंत्र को सक्रिय करते हैं। इससे गैस, कब्ज, अपच तथा पेट संबंधी समस्याओं में लाभ मिलता है, मोटापा कम करता है। नियमित योगाभ्यास शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करता है और वजन नियंत्रित रखने में सहायता करता है। हृदय को स्वस्थ रखता है। योग रक्तचाप को नियंत्रित रखता है और हृदय रोगों की संभावना को कम करता है। भुजंगासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन आदि रीढ़ की हड्डी को लचीला और मजबूत बनाते हैं। योग का मानसिक महत्व, तनाव से मुक्ति। आधुनिक जीवन में तनाव एक सामान्य समस्या बन चुका है। योग मन को शांत करता है और तनाव को कम करने में सहायता करता है। एकाग्रता में वृद्धि। योग और ध्यान मन की चंचलता को कम करते हैं, जिससे अध्ययन और कार्य में एकाग्रता बढ़ती है। सकारात्मक सोच का विकास। योग मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। इससे व्यक्ति आशावादी और आत्मविश्वासी बनता है। अवसाद एवं चिंता में लाभ है। योग मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। इसके नियमित अभ्यास से चिंता, घबराहट और अवसाद जैसी समस्याओं में कमी आती है। स्मरण शक्ति में वृद्धि। योग मस्तिष्क को सक्रिय बनाता है, जिससे स्मरण शक्ति और निर्णय क्षमता विकसित होती है। योग का आध्यात्मिक महत्व। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति का साधन है, आत्मज्ञान की प्राप्ति। योग व्यक्ति को स्वयं को समझने की प्रेरणा देता है, वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। आत्म संयम का विकास। योग से इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण विकसित होता है। आंतरिक शांति। योग मनुष्य को मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा। योग व्यक्ति को ईश्वर के निकट ले जाता है और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में सहायता करता है। प्राणायाम का शारीरिक महत्व। श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है। प्राणायाम फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाता है और श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखता है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। गहरी और नियंत्रित श्वास से शरीर को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होती है। रक्तचाप नियंत्रित करता है। प्राणायाम उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक माना जाता है। रोगों से सुरक्षा। नियमित प्राणायाम से दमा, एलर्जी और श्वसन संबंधी समस्याओं में लाभ मिलता है। ऊर्जा का संचार। प्राणायाम शरीर में नई ऊर्जा का संचार करता है और थकान को दूर करता है। प्राणायाम का मानसिक महत्व। मानसिक शांति। प्राणायाम मन को स्थिर और शांत बनाता है। क्रोध पर नियंत्रण। नियमित अभ्यास से क्रोध और उत्तेजना कम होती है। आत्मविश्वास में वृद्धि। प्राणायाम व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। भावनात्मक संतुलन। यह व्यक्ति की भावनाओं को नियंत्रित करने में सहायता करता है। नींद में सुधार। प्राणायाम अनिद्रा की समस्या को कम करके अच्छी नींद प्रदान करता है। विद्यार्थियों के लिए योग एवं प्राणायाम का महत्व। विद्यार्थी जीवन में योग और प्राणायाम अत्यंत उपयोगी है। एकाग्रता बढ़ाते हैं, स्मरण शक्ति विकसित करते हैं, परीक्षा के तनाव को कम करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, अनुशासन की भावना विकसित करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं। योग केवल शरीर को स्वस्थ बनाने का साधन नहीं बल्कि यह व्यक्ति के चरित्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग के प्रथम दो अंग यम और नियम नैतिक जीवन के आधार हैं। यम अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। इन सिद्धांतों का पालन करने वाला व्यक्ति समाज में आदर्श नागरिक बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग का महत्व। आज योग एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन विश्व के करोड़ों लोग योगाभ्यास करते हैं। योग ने विभिन्न देशों के लोगों को स्वास्थ्य, शांति और संतुलन का संदेश दिया है। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत का विश्वव्यापी प्रसार है। योग एवं प्राणायाम से संबंधित सावधानियाँ। योग प्रशिक्षित गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। खाली पेट योग करना उचित है। गंभीर रोग होने पर चिकित्सक की सलाह लें। कठिन आसनों का अभ्यास धीरे धीरे करें। प्राणायाम करते समय श्वास को अत्यधिक ना रोकें। नियमितता बनाए रखें। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में अभ्यास करें। योग एवं प्राणायाम मानव जीवन के लिए अमूल्य वरदान है। ये केवल शरीर को स्वस्थ रखने की विधियां नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के साधन है। इनके माध्यम से मनुष्य शारीरिक शक्ति, मानसिक संतुलन, भावनात्मक स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है और सफल जीवन जी सकता है। योग और प्राणायाम का महत्व निरंतर
बढ़ रहा है। स्वस्थ शरीर, शांत मन।

0: उन्नत आत्मा की प्राप्ति के लिए योग और प्राणायाम का नियमित अभ्यास अत्यंत आवश्यक है।
1: योग और प्राणायाम का महत्व, अभी हम ये वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे राम कुंवर पटेल। और बहनों, अब कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
3: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
1: बहनों, पति पत्नी का संबंध जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील संबंध माना जाता है। विवाह के बाद दो लोग एक साथ जीवन की यात्रा शुरू करते हैं, जिनकी सोच, आदतें और जीवन शैली अलग अलग भी हो सकती हैं। ऐसे में रिश्ते को सफल बनाने के लिए समझदारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और बहनों, समझदारी का पहला आधार है एक दूसरे को सुनना और समझना। कई बार रिश्तों में समस्याएं इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि दोनों अपनी बात कहना तो चाहते हैं, लेकिन सामने वाले की बात सुनने का धैर्य नहीं रखते। पर जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को महत्व देते हैं तो उससे विश्वास और अपनापन बढ़ता है। जहां समझदारी होती है वहां छोटी छोटी गलतफहमियां भी रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती, बल्कि दोनों मिलकर हर परिस्थिति का सामना करते हुए अपने संबंध को और अधिक मजबूत बना लेते हैं। बहनों, सम्मान भी समझदारी का ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जहां दोनों के निर्णयों, इच्छाओं और व्यक्तित्व का सम्मान होता है वहां प्रेम अपने आप ही बना रहता है। जीवन में सुख दुख, आर्थिक चुनौतियां और पारिवारिक जिम्मेदारियां आती रहती हैं। ऐसे समय में एक दूसरे को दोष देने की बजाय साथ खड़े रहना ही सच्ची समझदारी है। देखिए, किसी भी रिश्ते में पूर्णता नहीं होती, इसलिए एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करना और क्षमा करना भी आवश्यक है। मतलब पति पत्नी के रिश्ते में समझदारी वो सूत्र है जो प्रेम, विश्वास और सम्मान को एक साथ बांधे रखता है। तभी आपका वैवाहिक जीवन सफल और आनंदमय बन जाता है। फिर आप भी दिल से यही गुनगुनाएंगी।

गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में सुना। भरत व्यास के गीत को संगीत से सवारा था वसंत देसाई ने। और बहनों, कहा जाता है कि जहां प्रसन्नता होती है वहां जीवन में ऊर्जा, उत्साह और आशा अपने आप ही आ जाती है। प्रसन्नता केवल चेहरे की मुस्कान नहीं, बल्कि मन की वो अवस्था है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीने का साहस देती है। हमारे तन और मन में नई ऊर्जा का संचार करती है प्रसन्नता। प्रसन्न व्यक्ति चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य और आत्मविश्वास से करता है, क्योंकि उसके विचार सकारात्मक होते हैं और वो अपने आसपास के लोगों में भी उत्साह का संचार करता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि प्रसन्न रहने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हृदय स्वस्थ रहता है और मानसिक तनाव कम होता है। वैसे बहनों, प्रसन्नता बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण से पैदा होती है। जो व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना सीख जाता है, दूसरों की सहायता करता है, परिवार के साथ समय बिताता है, हर काम को ईश्वर का काम समझकर कृतज्ञ रहता है, वही सच्ची प्रसन्नता का अनुभव करता है। अब प्रसन्नता का अर्थ ये तो नहीं है कि जीवन में कभी दुख ही नहीं आएंगे, लेकिन जो व्यक्ति सुख दुख यानी हर परिस्थिति में उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता, वही सच्ची प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रसन्नता वो संजीवनी है जो जीवन को केवल लंबा ही नहीं बल्कि सुंदर और सार्थक भी बनाती है। तो बहनों, ईश्वर प्रदत्त इस जिंदगी में जितने भी पल हमें मिले हैं सांसों के, उन पलों को हम भरपूर जिएं, खुश रहें, सकारात्मक सोचें और सभी को हंसाते भी चलें, क्योंकि ये जिंदगी पल दो पल की है।

अभी हमने किशोर कुमार की आवाज में जमीर फिल्म का गीत सुना। साहिल लुधियानवी के गीत को संगीत दिया था सपन चक्रवर्ती ने। और अब यही कहूंगी कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। फर्क सिर्फ इतना है कि समय के अनुसार कुछ लोगों का मन बदल जाता है और कुछ लोगों के दिन। और बहनों, अब कार्यक्रम समाप्त होने का समय हो चला है, तो अब कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए दमयंती वाजपेयी को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आनंदीलाल भवेल द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनते हैं पूर्णिमा नतानी द्वारा गाए गीत और भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पूर्णिमा नातानी द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

अनु मलिक का संगीत वरुण ग्रोवर के लिखे बोल, कुमार सानू की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म दम लगा के हैशा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म मनमर्जियां से, आवाज है हर्षदीप कौर और जाजम शर्मा की।

अमित त्रिवेदी का संगीत शैली के लिखे बोल हर्षदीप कौर और जाज़म शर्मा की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म मरमर्जिया से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जब मन के संकल्प, विचार और भावनाएं एक रूप हो जाती हैं तो हर प्रयास सफल होता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने नागरिकों से एकता के साथ आगे बढ़ने और भारतवर्ष के सभी लक्ष्यों को मिलकर प्राप्त करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज विजयनगरम पहुंचकर केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद कल वे अनंतपुरम जाएंगी, जहां आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के सारंगपुर स्थित भैंसवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और जिले के 352 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इस मौके पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, राज्य मंत्री गौतम टिटवाल और सांसद रूद बलनागर भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री दूध तलैया में गंगा पूजन, गौ पूजन और पौधरोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रदेश भर में जलगंगा संवर्धन अभियान 2026 का आज समापन हो रहा है, जिसमें अभियान के तहत 3.5 लाख से अधिक जल संरक्षण कार्य पूरे किए गए हैं। जिला स्तरीय समारोहों में सांसद गण मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। उज्जैन स्थित महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने की। समारोह में विश्वविद्यालय के 63 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पदक प्रदान किए गए। साथ ही स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज और प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे को विश्वविद्यालय की मानद डेलिट उपाधि से सम्मानित किया गया। श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत बीडी और खदान श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च और व्यावसायिक शिक्षा तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। पात्र विद्यार्थी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर 31 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत विद्यार्थियों को कक्षा के अनुसार 1,000 रूपये से लेकर 25,000 रूपये तक वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रदेश की जनजातीय कार्य विभाग ने वर्ष 2026-27 में छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब शिष्यवृत्ति की दरें हर साल मार्च के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय होंगी और जुलाई में छात्रावास आश्रम शुरू होने से पहले लागू होंगी। नई दरों के अनुसार छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले बालक विद्यार्थियों को 1,720 रूपये प्रतिमाह और बालिका विद्यार्थियों को 1,710 रूपये प्रतिमाह शिष्यवृत्ति दी जाए।

जाएगी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। आज प्रदेश के 50 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 2 जुलाई से एक नया मौसम तंत्र सक्रिय होगा, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। वहीं ग्वालियर, भिंड, मुरैना सहित कुछ जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कलेक्टर के निर्देशन में रोजगार मेले का आयोजन 1 जुलाई को शासकीय शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय में होगा। कटनी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष तिवारी द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण के तहत कल ईवीएम वेयर हाउस स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। सेफ क्लिक अभियान के तहत आगरमालवा जिले के कल 6वें दिन जिला पुलिस द्वारा बैंकों और कॉमन सर्विस सेंटर्स में व्यापक साइबर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। शिवपुरी जिले में सहकारिता और जागरूकता तथा संकल्प सप्ताह का शुभारंभ कल जिला सहकारी संघ कार्यालय में आयोजित हुआ और खंडवा वन मंडल की गुंडी रेंज के ग्राम आमा कुचरी में वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने लगभग 105 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी कर ली है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:15 होने को हैं और कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन

0: निरीक्षण SIR के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 BLO पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन परीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र BLO को वापस करें, ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर BLO और BLA2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी BLO जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत INS देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
2: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
3: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल, सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग,

0: समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हुल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण

0: झारखंड में मनाया जाता है।
1: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तवर, और कार्यक्रम है आपकी फरमाइश का, जिसमें आपके भेजे हुए पत्रों को हम शामिल करते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद के मीठे मीठे गीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक गीत के साथ, जो है लता मंगेशकर की आवाज में, और यह है फिल्म नागिन से। इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है नेपाल पैलेस सागर से, तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की तरफ से। कवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूरा श्रीमाली ने भी इस गीत की फरमाइश की है। तो आप सभी श्रोताओं के लिए लीजिए प्रस्तुत है ये गीत।

हेमंत कुमार का संगीत राजेंद्र कृष्ण के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म नागिन से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम है विजय पथ और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है छत्तीसगढ़ भाटापारा धतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा की तरफ से। इसके अलावा सपना संगीता रोड इंदौर से हमें लिखा है लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए लीजिए प्रस्तुत है यह अगला गीत।

विजयपथ से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में गीत सुन रहे थे आप, जिसे संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने और जिसके बोल लिखे थे जमीर कासमी ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म रजनीगंधा से, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने। और इस गीत के लिए फरमाइशी पत्र हमें मिला है राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं एमएम राजावत, राज, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और उनका पूरा परिवार। और इसके अलावा एक और पत्र हमारे पास आया है जिला नांदेड़ से, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंतले और आरती जोंतले का। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

सलिल चौधरी का संगीत, योगेश के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म रजनीगंधा से, और ये है कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। अगला गीत आपकी फरमाइश पर हम आपको सुनाएंगे किशोर कुमार की आवाज में फिल्म परिचय से, जिसकी फरमाइश हमें भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। इसके अलावा पाकीजा रेडियो श्रोता संघ, वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौर, मोहम्मद शादाब खत्री ने भी हमें फरमाइशी पत्र लिखकर इस गीत की फरमाइश की है। तो लीजिए, प्रस्तुत है आप श्रोताओं के लिए यह अगला गीत।

आर डी बर्मन का संगीत, गुलजार के लिखे बोल, किशोर कुमार की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म परिचय से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है मोहम्मद अजीज की आवाज में फिल्म निगाहें से, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है बजरंगी रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास जिला सागर से। लक्ष्मण रखवार, विनीता रखवार, वैशाली, वैष्णवी, अनरत रखवार, हल्ले लल्लू और साथी ऋषि रखवार और बंडा की ओर से। इसके अलावा एक और पत्र हमें मिला है, वो है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार की ओर से, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता की ओर से। तो लीजिए अगला गीत है आप सभी श्रोताओं के लिए।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, मोहम्मद अजीज की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म निगाहें से। और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन इसी तरह अपने पत्रों का सिलसिला जारी रखिए और हमें भेजते रहें अपने पत्र अपनी फरमाइशों के साथ। हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल, पिन कोड है 462002। नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जब मन के संकल्प, विचार और भावनाएं एक रूप हो जाती हैं तो हर प्रयास सफल होता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज विजयनगरम पहुंचकर केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के सारंगपुर स्थित भैंसवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिले के 352 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। उज्जैन स्थित महर्षि पाणिनी संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल बंगू भाई पटेल ने की। श्रमिक परिवारों

के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत बीड़ी और खदान श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च और व्यावसायिक शिक्षा का वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग ने वर्ष 2026-27 में छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि करने का फैसला किया है और प्रदेश में मानसून धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। आज प्रदेश के 50 जिलों में बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज की सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुनिएगा युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल की गरिमामय उपस्थिति में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के 6वें दीक्षांत समारोह पर केन्द्रित रेडियो रिपोर्ट सुनवाई जाएगी आज शाम 5:33 पर। शाम 6 बजे सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य लंदन में खेले जा रहे महिला टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनवाया जाएगा आज शाम 6:30 से। इसे हम खेल की समाप्ति तक अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

नमस्कार। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है उनका मनचाहा कार्यक्रम युववाणी।

0: श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त एंड होस्ट खुशी करवरिया, और मेरे साथ है
1: शिवांशु प्रजापति।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमेशा हम अपने कार्यक्रम में आपके मनोरंजन के लिए लेकर आते हैं गीत और संगीत, और साथ ही महत्वपूर्ण विषयों पर हम आपको जानकारी भी प्रदान करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में, और सबसे पहले जान लेते हैं गुरु हरि गोविंद जी के बारे में, क्योंकि आज उनकी जयंती है। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत पावन और ऐतिहासिक है, क्योंकि आज पूरा देश और दुनिया भर की संगत सिखों के छठे गुरु साहिब श्री गुरु हरि गोविंद जी का प्रकाश पर्व मना रहा है।
1: गुरु जी का जीवन वीरता, आध्यात्मिकता और न्याय का ऐसा अनूठा संगम है जिसने इतिहासन की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया।
0: आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि गुरु साहिब जी के जीवन से जुड़ी वो बातें जो आज भी हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।
1: दोस्तों, गुरु हरगोविंद साहिब जी का जन्म गुरु की बड़ाली अमृतसर में हुआ था। वे पांचवे गुरु गुरु अर्जुन देव जी के सुपुत्र थे। जब गुरु अर्जुन देव जी की शहादत हुई तो इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया। मात्र 11 वर्ष की छोटी सी उम्र में गुरु हरगोविंद जी ने गुरु गद्दी संभाली,
0: लेकिन उन्होंने एक क्रांतिकारी बदलाव भी किया। गुरु गद्दी पर बैठते ही उन्होंने संतों वाली माला पहनने के बजाय दो तलवारें धारण की।
1: पहली तलवार थी मीरी की, जो सांसारिक सत्ता शक्ति और राजनीति का प्रतीक थी। दूसरी तलवार थी पीरी की, जो आध्यात्मिकता और भक्ति का प्रतीक थी।
0: गुरु हरगोविंद जी ने सिखों में आत्मरक्षा और आत्मसम्मान की भावना भी जगाई। उन्होंने अमृतसर में हरि मंदिर साहब, जो कि अभी स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, उसी के ठीक सामने श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना भी की।
1: यह सिखों के लिए सर्वोच्च न्याय और विचार विमर्श का केंद्र बना, जहां से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाती थी। उन्होंने सिखों को शास्त्र विद्या सीखने, घुड़सवारी करने और शारीरिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रेरित किया।
0: दोस्तों, उनकी महानता का एक और किस्सा मशहूर है। जब मुगल बादशाह जहांगीर ने उन्हें ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था, तो गुरुजी की आत्मिक शक्ति को देखकर जहांगीर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गुरुजी को रिहा करने का भी आदेश दिया।
1: लेकिन हरगोविंद जी ने कहा, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरे साथ कैद बंद बेकसूर 52 हिंदू राजाओं को भी रिहा करना होगा। जहांगीर ने शर्त रखी कि जी राजा हरगोविंद जी की पोशाक पकड़ सकेंगे वही बाहर जाएंगे। तो फिर गुरुजी ने 52 कलियां वाली पोशाक सिलवाई और हर राजा को एक एक कली पकड़ा कर मुक्ति दिलाई। इसी याद में उन्हें बंदी छोड़दाता भी कहा जाता है।
0: बिल्कुल। तो प्रिय श्रोताओं, गुरु हरि गोविंद साहब जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि कमजोर होना कोई विकल्प नहीं है। हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनना चाहिए, ताकि हम दूसरों की रक्षा कर सके और समाज में न्याय की स्थापना कर सके। तो अभी हमने गुरु हरि गोविंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में उनके जीवन के बारे में जाना। आइए रुक लेते हैं एक अंतराल के लिए।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
0: अंतराल के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें चमकते हुए तारे और खूबसूरत चांद दिखाई देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी काले आसमान की गहराइयों में कुछ ऐसी विशालकाय चट्टानें तैर रही हैं जो हमारी धरती का इतिहास भी बदल सकती हैं और भविष्य भी।
1: जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं

0: ग्रहों यानी एस्टेरॉयड की। और आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस।
1: तो आज के सफर में हम जानेंगे कि आखिर ये दिवस क्यों मनाया जाता है, ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं और क्या सच में इनसे हमारी धरती को कोई खतरा है।
0: आखिर यह दिवस 30 जून को क्यों मनाया जाता है? इसकी अपनी एक वजह है। दरअसल 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया में तुंगुस्का नाम की नदी के पास अंतरिक्ष से आया एक विशालकाय क्षुद्र ग्रह धरती के वायुमंडल में दाखिल हुआ।
1: वो जमीन से टकराया नहीं बल्कि हवा में ही फट गया, लेकिन वो धमाका इतना जबरदस्त था कि लगभग 8 करोड़ पेड़ मलबे में तब्दील हो गए और हिरोशिमा परमाणु बम से भी कई तेज गुना ऊर्जा वहां पर फैली।
0: सोचिए, अगर वो किसी शहर पर गिरता तो क्या होता? इसी खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2016 में घोषणा की कि हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस मनाया जाएगा।
1: इसका मकसद साफ है कि दुनिया को अंतरिक्ष के इस छिपे हुए खतरे से आगाह करना और विज्ञान की मदद से सुरक्षा की तैयारी करना।
0: अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये क्षुद्र ग्रह बनती कैसे है। तो आसान शब्दों में अगर हम कहें तो जब करोड़ों साल पहले हमारा सौरमंडल बन रहा था, तो ग्रहों के बनने के बाद जो कंकड़ पत्थर धूल और विशाल चट्टानें बच गईं, उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये हमारे सौरमंडल के लेफ्ट ओवर बचे हुए हिस्से कहते हैं।
1: इनमें से ज्यादातर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक पट्टी में चक्कर लगाते हैं जिसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं।
0: इनके आकार की बात करें तो ये छोटी कार के आकार से लेकर सैकड़ों किलोमीटर बड़े पहाड़ जितने भी हो सकते हैं।
1: इतनी सारी जानकारी के बाद श्रोताओं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां जैसे नासा, इसरो रात दिन आसमान पर नजर रखते हैं। इसे हम प्लेटनरी डिफेंस कहते हैं। अगर भविष्य में कोई भी खतरा आता है तो हमारे वैज्ञानिक इतने सक्षम हैं कि वो उसका रास्ता बदलने की ताकत रखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी रोमांचक लगी होगी। अगली बार जब आप रात में आसमान देखें तो ये सोचिएगा कि वहां ऊपर एक पूरी अलग दुनिया ही है जो आपका इंतजार कर रही है। तो अभी हमने जाना अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के बारे में। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे संजू फिल्म का एक गीत जिसमें आवाज थी सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की।
1: गीतकार थे शेखर अस्तित्व और संगीतबद्ध किया था विक्रम मोन्टरोज ने।
0: श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं कि यदि हम आजकल के मौसम की बात करें तो कभी तेज बारिश होती है तो कभी अचानक गर्मी होने लगती है, और इस मौसम परिवर्तन का जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वो खेती पर पड़ता है, और कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। तापमान में वृद्धि, वर्षा के अनियमित पैटर्न, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, लू तथा असामयिक बारिश जैसी जो घटनाएं होती हैं वो किसानों की आय और फसल उत्पादन को सीधे प्रभावित करती हैं।
1: दोस्तों, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अधिकांश किसान आज भी वर्षा पर निर्भर हैं, इसलिए मौसम में होने वाला छोटा सा बदलाव भी खेती पर बड़ा असर डालता है।
0: तो सबसे पहले तापमान बढ़ने से फसलों की वृद्धि प्रभावित होती है। गेहूं, धान, चना और सरसों जैसी फसलों की उपज में कमी भी आ सकती है। अधिक गर्मी के कारण पौधों में फूल और फल भी कम लगते हैं तथा दानों का विकास भी प्रभावित होता है।
1: वर्षा का अनियमित होना खेती के लिए गंभीर समस्या बन गई है। कभी बहुत अधिक बारिश से खेतों में जल भराव हो जाता है, जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं। वर्षा कम या सूखे की स्थिति में सिंचाई का संकट उत्पन्न होता है और उत्पादन घट जाता है।
0: साथियों, मौसम परिवर्तन के कारण कीटों और रोगों का प्रकोप भी बढ़ता है। बदलते तापमान और नमी के कारण कई बीमारियां और कीट तेजी से फैलते हैं, जिससे किसानों को अधिक दवाइयों का उपयोग करना पड़ता है और खेती की लागत भी बढ़ जाती है।
1: दोस्तों, मौसम की घटनाएं जैसे ओलावृष्टि, तेज आंधी, चक्रवात और लू किसानों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाती है। कटाई के समय हुई बारिश से तैयार फसल खराब हो जाती है और किसानों को उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता।
0: मौसम परिवर्तन का प्रभाव केवल फसलों तक सीमित नहीं है, इसका असर पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन और कृषि से जुड़े अन्य व्यवसायों पर भी पड़ता है। पशुओं में गर्मी के कारण दुग्ध उत्पादन भी घट सकता है और चारे की उपलब्धता भी प्रभावित होती है।
1: दोस्तों, इन चुनौतियों से निपटने के लिए जल संरक्षण, सूखा एवं बाढ़, सहनशील बीजों का उपयोग, फसल विविधीकरण, आधुनिक सिंचाई तकनीक, मौसम पूर्वानुमान का उपयोग, मृदा संरक्षण तथा कृषि वानिकी को बढ़ावा देना आवश्यक है। साथ ही किसानों को फसल बीमा और

0: वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों की जानकारी उपलब्ध कराना भी महत्वपूर्ण है।
1: निश्चित रूप से मौसम परिवर्तन कृषि के लिए गंभीर चुनौती है, लेकिन वैज्ञानिक तकनीकों, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और किसानों की जागरूकता के माध्यम से इसके दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। दोस्तों, टिकाऊ और जलवायु अनुकूल खेती ही भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध कृषि का आधार बना सकती है। तो अभी हमने जाना कि मौसम परिवर्तन का किस प्रकार से खेती पर प्रभाव पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और हम आपको सुनवा देते हैं वार्ता, जिसका विषय है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। वार्ताकार हैं कमला पटेल।
2: आज के समय में प्रतियोगी परीक्षाओं का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे सरकारी नौकरी प्राप्त करनी हो, उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लेना हो, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, पुलिस, शिक्षक भर्ती या अन्य किसी क्षेत्र में करियर बनाना हो, लगभग हर क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाएं सफलता का मुख्य माध्यम बन चुकी हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं केवल ज्ञान की परीक्षा ही नहीं होती, बल्कि वे उम्मीदवार की मेहनत, धैर्य, समय प्रबंधन, निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास तथा मानसिक संतुलन की भी परीक्षा लेती हैं। लाखों अभ्यर्थी हर वर्ष इन परीक्षाओं में शामिल होते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही रणनीति, निरंतर अभ्यास और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ तैयारी करते हैं। इसलिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे की जाए, कौन कौन से तरीके अपनाए जाएं, किन गलतियों से बचा जाए तथा सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सी आदतें विकसित की जाएं। प्रतियोगी परीक्षा वह परीक्षा होती है जिसमें सीमित पदों या सीटों के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवार भाग लेते हैं। इन परीक्षाओं में उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता, ज्ञान और प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग परीक्षाएं, रेलवे भर्ती की परीक्षाएं, शिक्षक पात्रता परीक्षा, पुलिस भर्ती परीक्षा, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं, राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाएं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का महत्व भी सही तरीके से होना चाहिए, जैसे सफलता की संभावना बढ़ती है, आत्मविश्वास विकसित होता है, समय का सदुपयोग होता है, तनाव कम होता है, लक्ष्य स्पष्ट होता है, परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। किसी भी परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले लक्ष्य निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक होता है। लक्ष्य निर्धारण करने के विभिन्न लाभ होते हैं, जैसे दिशा मिलती है, समय का बेहतर उपयोग होता है, प्रेरणा बनी रहती है, मेहनत सही दिशा में होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो उसे पहले यह तय करना चाहिए कि वह कितने समय में परीक्षा देना चाहता है और उसके अनुसार योजना बनानी चाहिए। परीक्षा का मुख्य पाठ्यक्रम अच्छी तरीके से समझना चाहिए। कई छात्र बिना सिलेबस देखे तैयारी शुरू कर देते हैं, जो उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। सिलेबस जानने के बहुत से लाभ होते हैं, जैसे महत्वपूर्ण विषयों की पहचान होती है, अनावश्यक पढ़ाई से बचा जा सकता है, समय की भी बचत होती है, तैयारी व्यवस्थित होती है। इसलिए परीक्षा की आधिकारिक अधिसूचना और सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। परीक्षा पैटर्न का अध्ययन भी करना चाहिए। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा का अलग पैटर्न होता है, जैसे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न, साक्षात्कार, शारीरिक परीक्षा। परीक्षा पैटर्न समझने से यह पता चलता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनकी तैयारी कैसे करनी है। समय प्रबंधन सफलता की कुंजी है। समय प्रबंधन के बहुत उपाय हैं, जैसे दैनिक समय सारणी बनाएं, कठिन विषयों को प्राथमिकता दें, नियमित अध्ययन करें, सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें, समय समय पर आराम लें, अध्ययन योजना बनाना। अध्ययन योजना यथार्थवादी और व्यवहारिक होनी चाहिए। दैनिक योजना 2 घंटे सामान्य अध्ययन, 2 घंटे विषय विशेष, 1 घंटा करंट अफेयर्स, 1 घंटा पुनरावृत्ति, साप्ताहिक योजना, पूरे सप्ताह पढ़े गए विषयों का पुनरावलोकन, मार्क टेस्ट, कमजोर विषयों पर कार्य, सही अध्ययन सामग्री का चयन। सफलता के लिए उचित अध्ययन सामग्री आवश्यक है। अध्ययन सामग्री एनसीईआरटी पुस्तकें, मानक संदर्भ पुस्तकें, समाचार पत्र, मासिक पत्रिकाएं, ऑनलाइन सामग्री। अत्यधिक पुस्तकों के बजाय सीमित और गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। नोट्स बनाने की कला। नोट्स तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। नोट्स बनाने के बहुत से लाभ होते हैं, जिससे पुनरावृत्ति आसान होती है, महत्वपूर्ण बिंदु याद रहते हैं, समय की भी बचत होती है। अच्छे नोट्स की

0: स्थाएं संक्षिप्त स्पष्ट विषयवार और बिंदुवार। नियमित अध्ययन की आदत, प्रतिदिन अध्ययन करना आवश्यक है। नियमित अध्ययन के लाभ, विषयों की बेहतर समझ, स्मरण शक्ति में वृद्धि, आत्मविश्वास में वृद्धि। पुनरावृत्ति का महत्व, कई विद्यार्थी पढ़ते तो हैं लेकिन पुनरावृत्ति नहीं करते। एक शोध के अनुसार व्यक्ति कुछ दिनों बाद अधिकांश जानकारी भूलने लग जाता है, इसलिए नियमित पुनरावृत्ति अत्यंत आवश्यक है। मार्क टेस्ट का महत्व, मासिक टेस्ट वास्तविक परीक्षा जैसा अनुभव प्रदान करते हैं। समय प्रबंधन सीखते हैं, गलतियों का पता चलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, गति और सटीकता में सुधार होता है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रश्नों की प्रकृति समझ आती है, महत्वपूर्ण विषयों की पहचान होती है, परीक्षा स्तर का अंदाजा लगता है। अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में समसामयिक घटनाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सामान्य ज्ञान बढ़ाने के उपाय, प्रतिदिन समाचार पढ़ें, महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी रखें, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों का अध्ययन करें। उत्तर लेखन अभ्यास, वर्णनात्मक परीक्षाओं के लिए उत्तर लेखन अत्यंत आवश्यक है। अच्छी उत्तर लेखन शैली, स्पष्ट भाषा, उचित संरचना, तथ्यात्मक जानकारी, एकाग्रता कैसे बढ़ाएं, शांत वातावरण में पढ़ाई करें, मोबाइल दूर रखें, ध्यान और योग करें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। स्वास्थ्य का महत्व, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन लें, पर्याप्त पानी पिएं, नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें। परीक्षा के दौरान तनाव सामान्य है, तनाव कम करने के उपाय, योग करें, ध्यान करें, सकारात्मक सोच रखें और परिवार से बातचीत करें। आत्मविश्वास का महत्व, आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे नियमित अभ्यास किया जाए, सकारात्मक सोच बनाना, छोटी सफलताओं का उत्सव मनाना। सोशल मीडिया का प्रभाव है, सोशल मीडिया उपयोगी भी है और हानिकारक भी। इससे कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे सीमित उपयोग करें, पढ़ाई के समय बंद रखें, केवल शैक्षणिक उपयोग करें। हमें अपनी असफलताओं से भी कुछ सीख लेनी चाहिए, जैसे असफलता सफलता की जननी है। यदि परीक्षा में सफलता ना मिले तो गलतियों का विश्लेषण करें, नई रणनीति बनाएं, पुनः प्रयास करें। साक्षात्कार की तैयारी, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में साक्षात्कार भी होता है, तो तैयारी के उपाय, व्यक्तित्व विकास की तैयारी करें, समसामयिक घटनाओं की जानकारी रखें, स्पष्ट अभिव्यक्ति करें और आत्मविश्वास बढ़ाएं। सफल विद्यार्थियों की आदतें, सफल विद्यार्थियों की कुछ आदतें अच्छी होती है, जैसे नियमित अध्ययन, समय प्रबंधन, अनुशासन, सकारात्मक सोच, निरंतर अभ्यास। प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली सामान्य गलतियां, बिना योजना पढ़ाई करना, सिलेबस ना देखना, पुनरावृत्ति ना करना, अत्यधिक पुस्तकें पढ़ना, मार्क टेस्ट ना देना, समय की बर्बादी। सफलता के मूल 10 मंत्र दिए गए हैं, लक्ष्य निर्धारित करना, समय का सम्मान करना, नियमित पढ़ाई करना, नोट्स बनाना, पुनरावृत्ति करें, मार्क टेस्ट दें, सकारात्मक रहें, स्वस्थ रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें और कभी हार न मानें। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता केवल बुद्धिमत्ता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यही सही रणनीति, कड़ी मेहनत, अनुशासन, निरंतर अभ्यास और सकारात्मक सोच पर निर्भर करती है। जो विद्यार्थी स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं, नियमित अध्ययन करते हैं, समय का सही उपयोग करते हैं तथा अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करते हैं, वे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। याद रखें, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन अवश्य ही मिलती है। यदि प्रयास निरंतर और सही दिशा में किए जाएं, तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता स्वयं शोर मचा दे।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता, जिसका विषय था प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। वार्ताकार थी कमला पटेल।
2: तो वार्ता के पश्चात एक बार फिर से बढ़ चलते हैं गीत और संगीत की ओर, और सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे पार्टनर फिल्म से गीत, जिसमें आवाज थी वाजिद, लाब जंजुआ और स्नेहा पंत की।
1: गीतकार थे शब्बीर अहमद और संगीतबद्ध किया था साजिद बाजिद ने।
0: तो चलिए श्रोताओं, हम आपको आज की रोजगार सूचना भी दे देते हैं। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया योग उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
1: पद का नाम प्रोबेशनरी ऑफिसर,
0: पदों की संख्या 1500 है,
1: शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन की डिग्री,
0: आयु सीमा की यदि हम बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष रहेगी। आयु सीमा में छूट भी नियमानुसार दी जाएगी।
1: आवेदन की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2026।
0: अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.bank.in पर जाकर के विजिट कर सकते हैं।
1: तो साथियों, ये तो थी आज की हमारी रोजगार सूचना। और खुशी, अब समय हो चला है अपने दोस्तों से अनुमति लेने का।
0: तो इसके पहले हम उनको कल के कार्यक्रम भी बता देते हैं। शिवांशु, कल के कार्यक्रम में रहेगी भेंट वार्ता, फिल्म अभिनेता सुभाष अहिरवार से महिमा देव पटेल की बातचीत। इसी के साथ साथ बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं भी रहेंगी, गीत संगीत भी आपके लिए प्रस्तुत होगा और इसी के साथ साथ हम आपको रोजगार सूचना भी प्रदान करेंगे। तो जुड़ना मत भूलिए कल शाम 5 बजे आपके आकाशवाणी के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जहां पर आपको इस प्रोग्राम की प्रस्तुति दी जाएगी।
1: तो अनुमति दीजिए अपने दोस्त शुभांशु प्रजापति
0: और खुशी करवरिया को।
1: नमस्कार।

युवा साथियों के लिए अभी युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। अब से कुछ देर बाद आकाशवाणी भोपाल से हम रिले करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के 6वें दीक्षांत समारोह पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के छठवें दीक्षांत समारोह पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट।
1: संस्कृत ज्ञान, भारतीय परंपरा और वैदिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के संकल्प के साथ आज उज्जैन की पावन धरती एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण की साक्षी बनी। कालिदास संस्कृत अकादमी के पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल सभागृह में महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का छठा दीक्षांत समारोह गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल ने की, जबकि उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार सहित देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविद, संत और विद्वान इस अवसर के सहभागी बने। दीक्षांत समारोह में जहां विशिष्ट विद्वानों को मानद उपाधियों से अलंकृत किया गया, वहीं पीएचडी, स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए उपाधियां प्रदान की गई। प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण एवं रजत पदकों से सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत भाषा और वैदिक मूल्यों के संरक्षण तथा संवर्धन का संदेश इस समारोह ने पूरे शिक्षा जगत को दिया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा,
2: व्याकरण शास्त्र के प्रणेता, शब्द ब्रह्म के उपासक महर्षि पाणिनी के पावन नाम प्रस्थापित विश्वविद्यालय का दीक्षांत केवल उपाधि

0: वितरण का प्रयास प्रसंग नहीं है, अपितु संस्कृत की सनातन ज्ञान परंपरा के नई पीढ़ी के सौंपने का पवित्र अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान के साक्षी पालकों एवं आचार्य और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी ऊर्जावान विद्यार्थियों को हृदय से बधाई और शुभकामना देता हूँ। जिस प्रकार महर्षि पाणी ने अष्टाध्यायी के 3,959 सूत्रों में पूरी भाषा को नियमबद्ध किया, उसी प्रकार आप सभी स्नातकों भावी जीवन में अपने ज्ञान अनुशासन और चरित्र के राष्ट्र और समाज के संस्कारित आपको करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने और गर्व करने का एक ऐतिहासिक अवसर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने संस्कृत को केवल पूजा पाठ कर्मकांड की भाषा नहीं माना, बल्कि इसे विज्ञान दर्शन गणित कला और आधुनिक तकनीक के वाहक के रूप में मान्यता दी है। यह नीति त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से संस्कृति को प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक मुख्य धारा में लाने का एक सशक्त रोड मैप प्रस्तुत करती है। अब समय आ गया है कि संस्कृत को संग्रहालयों की प्राचीन लिपियों से बाहर निकलकर आधुनिक अनुसंधान के जीवंत भाषा बनाए। विश्वविद्यालय से अपेक्षा है कि भारतीय ज्ञान की प्रणाली का दुनिया में प्रचार के लिए संस्कृत के ज्ञान विरासत को आधुनिक भाषा में प्रचार करे। मगर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, अभी सारे हिंदुस्तान को प्राइम मिनिस्टर ऐलान किया है हमारे को 2047 में विकसित भारत जो बनाना है। तो ऐसे पुराने जो हमारे संस्कार है, पुराने जो प्रकृति की जो हम पूजा करने वाले हैं, ऐसा समाज हम तैयार करेंगे तो सही दिशा में हम विश्व गुरु बनेंगे। 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, ऐसे अपेक्षा के साथ भारत माता की जय।
1: कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने सभी दीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देने के साथ कहा,
0: आज जिस विश्वविद्यालय की स्थापना जिस उद्देश्य से जिस भाव के साथ मैं समझता हूँ की गई थी, इस दीक्षांत समारोह से उसके उद्देश्यों की पूर्ति हुई हम सबको दिखती है। आज जिन भी बंधु भगनी को उपाधि मिली है, मेडल मिले हैं, उन सबको मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। लेकिन जैसा कहा कि दीक्षांत समारोह शिक्षा का अंत नहीं है, शिक्षा का एक पड़ाव है, लेकिन आगे जो चुनौतियां हैं उनको सबको स्वीकार करने की आवश्यकता है। हमको अपने देश की परंपरा को, इस देश की संस्कृति को, इस देश के उस ज्ञान को जिस ज्ञान के आधार पर हम दुनिया में कभी विश्वगुरु कहलाते थे, फिर से विश्वगुरु बनने का संकल्प यदि हम सब में है तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि निश्चित रूप से भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा। और विश्वगुरु बनने के वाहक के रूप में आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप सब बनने वाले हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। मध्य प्रदेश में भारतीय ज्ञान परंपरा को हमने विशेष रूप से सभी विषयों के साथ जोड़ करके पाठ्यक्रमों में सिलेबस में लागू कर दिया है, उस अनुसार पुस्तकें बन चुकी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा यानी भारत के शास्त्रों के बारे में ही केवल पढ़ाने का विषय होगा, ऐसा नहीं है। हमारे वेद हमारे शास्त्र ये सारे है जिनमें कई सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और इसलिए उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समाज के सामने रखना। लेकिन मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में भी क्या भारतीय वैज्ञानिकों का भारतीय समाज में जो परंपरा है क्या वो वैज्ञानिक सम्मत है या नहीं है, इस प्रकार का दृष्टिकोण समाज के सामने आज आने लगा है। और इसलिए मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जब गर्व करने का विषय कभी हमारे सामने आता है तो मैं कई जगह उदाहरण देता हूं। मैथमेटिक्स में तो दुनिया में सबसे अग्रणी हम ही रहे हैं, और भारत के दर्शन में सभ्यता में जो भूगोल शब्द का वर्णन होता है, भू यानी पृथ्वी और गोल यानी पृथ्वी गोल है, ये हमारे देश के शब्द है। और इसलिए भारत के विद्यार्थियों के मन में गणित के प्रति जो अथाह विश्वास और का भाव होना चाहिए, वो निश्चित रूप से हमको विश्व विजेता की ओर आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराएगा। ऐसे कई सारे विषय भारतीय समाज में विज्ञान की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, परंपरा है, पर क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क में एक भाव पैदा कर दिया, कि आपके पूर्वज तो अंधविश्वासी।

0: थे, आपके पूर्वज तो रूढ़िवादी थे, और उस कारण से हमने हमारे अच्छे चीजों को भी, वैज्ञानिक चीजों को भी, विज्ञान के आधार पर समाज में स्थापित चीजों को भी छोड़ने का क्रम बना लिया, या छोड़ा नहीं तो चुपचाप करने का क्रम बना लिया। मैं एक उदाहरण के साथ आप मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। भारत के समाज में, हमारी सभ्यता में प्रकृति के साथ जो विशेष प्रेम है, स्नेह है, और उसके प्रति हम जो कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, और दुनिया में जो आज झगड़ा चल रहा है, लोग ईरान अमेरिका जैसे झगड़ा चल रहा है, काय के लिए झगड़ा झगड़ रहे? ऊर्जा के लिए, तेल के लिए, गैस के लिए। ये भी तेल भी जमीन से जो निकलता है, ये भी कभी न कभी सूर्य की ऊर्जा से ही कन्वर्ट हुआ है, और जो कोयला है वो भी जमीन में है, कभी न कभी सूर्य की ऊर्जा से कन्वर्ट हुआ है। और इसलिए हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि थे, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले थे, उन्होंने उस वैज्ञानिक पक्ष को हमारे समाज में, मान्यता में, निरंतर परंपरा में उसको आगे बढ़ाया है। और इसलिए आज एक बहुत बड़ी चुनौती जो हमारे सामने, देश के सामने भी है, मैं इस विश्वास के साथ कहता हूं कि जब 2047 यानी आजादी के 100 साल पूरे होंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस भारत को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, समाज में कई सारे लोग जिसको विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं, वो विकसित गुरु भारत, विश्व गुरु भारत जब बनेगा, तो हम ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे सूर्य की ताकत पर, हमारे पूर्वजों के उस ज्ञान के ताकत पर, भारत दुनिया में ऊर्जा का केंद्र बनेगा। और केवल हमारे देश की ऊर्जा की पूर्ति करने वाला देश नहीं होगा, हम दुनिया के भी कई देशों की ऊर्जा की पूर्ति कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों के उस ज्ञान को हमने अपने जीवन में उतारना प्रारंभ कर दिया है। दूसरा बड़ा पक्ष होने वाला है कि 2047 का भारत दुनिया का भरण पोषण करने का सामर्थ्यवान भारत बनेगा, क्योंकि इस देश के किसान अपनी भारत माता से, अपनी वसुंधरा से जो अनाज उत्पादित करेंगे, वो केवल भारत के लिए नहीं होगा, वो दुनिया का भरण पोषण करने का सामर्थ्यवान भारत होगा, क्योंकि भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को स्वीकार किया है। जय तु भारतम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।
1: कार्यक्रम में माननीय कुलगुरु प्रोफेसर शिव शंकर व्यास ने अतिथियों के स्वागत में कहा,
2: मित्रों, महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय 2008 में स्थापित हुआ। इस विश्वविद्यालय की एक इस यात्रा में, इस विश्वविद्यालय को विगत पर्याय में नैक के द्वारा ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। इसी सत्र में अभी 8 जून को अभी इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 12B का परीक्षण इस विश्वविद्यालय का संपन्न हो गया है। हमारे इस विश्वविद्यालय के 12B होने के बाद जो हमारी संभावनाएं बढ़ी हैं, वो ये है कि हमें ODL संचालित करना है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स, जिससे कि हमारे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा हो सके। और जो बहुत महत्वपूर्ण स्वप्न है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि 14 विद्याएं और चतुष्षष्ठी कलाएं, इनका स्वरूप आना चाहिए समाज के सामने। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ विश्वविद्यालय इन दिशाओं में बहुत सार्थक प्रयास करेगा, और निश्चित रूप से उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। पुनः एक बार माननीय कुलाधिपति जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का, माननीय विधायक जी का, माननीय सांसद जी का, दोनों सांसद सदस्यों का, माननीय सारस्वत अतिथि वरखेड़ी जी का, और मानद उपाधि पाने वाले पांडे जी का, तथा मंच पर विराजमान समस्त कार्य परिषद सदस्यों का, संकाय अध्यक्षों का, विद्या परिषद सदस्यों का, साधारण परिषद सदस्यों का, समागत समस्त अतिथियों का भूयो भूया स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम इत्युक्त्वा ब्रह्मामि धन्यवादः।
1: कार्यक्रम के माननीय सरस्वत अतिथि प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी ने कहा,
3: माननीय कुलपति महोदय तथा सभी साधारण सभा और विशिष्ट सभा और प्रशासन मंडल के सभी सदस्यों को मैं अभिनंदन करता हूँ। इसलिए मैं छात्रों से निवेदन करता हूँ, आज दीक्षांत हो गया, हमारा पूर्ण उपाधि प्राप्त हो गई, लेकिन पूर्ण उपाधि का वास्तविक अर्थ समाज देगा, क्योंकि आज केवल हमने प्रमाण पत्र दिया है। यहाँ के माननीय कुलाधिपति ने अपने अधिकार से विश्वविद्यालय की ओर से आप सबको एक उपाधि प्रमाण पत्र दिया है। हम सबको जानकारी है, उपाधि पत्र के प्रथम पृष्ठ में उपाधि का नाम होता है, हमारा ग्रेडिंग होता है, लेकिन उपाधि के पृष्ठ में खाली पत्र होता है, रिक्त पत्रे समाज लिखति, प्रमाण पत्रे कुलपति हस्तांकनं करोति, परंतु रिक्ते प्रमाण पत्रे रिक्त स्थाने समाज रिक्त स्थानम पूरयिष्यति, उस रिक्त स्थान में ये इस उपाधि के लिए अर्ह है, ये उपाधि के लिए प्राप्त है, उपाधि के लिए पात्र है, और उपाधि प्राप्त होने के बाद यह वास्तविक रूप से समाज के लिए उपकारी है, ऐसे समाज जब निर्णय करेगा तभी प्रमाण पत्र का पूर्णता प्राप्त होगी। आप सबसे उपाधि धारक

0: स्नातक धारकों को मैं आग्रह करता हूं, निवेदन भी करता हूं, इस दीक्षांत समारोह के बाद पश्चात निरंतर शिक्षा का आरंभ हो जाए और वास्तविक रूप से समाज से आप प्रमाण पत्र स्वीकार करिए। हमारा धर्म होगा केवल हम शिक्षा से विभूषित नहीं है, यदि हमारे मन में केवल सनातन धर्म के लिए निष्ठा नहीं है, अध्यात्म भक्ति नहीं है, संस्कृति का हमारे गंध नहीं है और शास्त्र और कवित्व प्रतिभा के साथ यदि समस्त विद्याओं के प्रति हमारे धारणा नहीं है तो हम वास्तविक रूप से उपाधिधारी नहीं है। इसलिए आज इस उपाधि के साथ अध्यात्मनिष्ठा, सनातन धर्मनिष्ठा, कवित्व शास्त्र प्रतिभा, संस्कृति और समस्त विद्या का प्रतीक के रूप में हमारी पूजा होती है, इसलिए इन सारे विद्याओं का धारक के रूप में हमारा दायित्व भी है। मेरा दायित्व है, मेरे भारत का धारक हूं मैं, तो भारत का धारणा शक्ति मुझ में है, इसलिए इस भावना के साथ हम सबको कार्य करना है। तो इसलिए मेरा आग्रह रहेगा केवल शास्त्र स्मृति से काम नहीं चलेगी, शास्त्र रक्षा भी होनी चाहिए और शास्त्र कृषि भी होनी चाहिए, शास्त्र का अनुभूति भी होनी चाहिए और शास्त्र दृष्टि के साथ अभिनव शास्त्र सृष्टि भी होनी चाहिए। सभी को, छात्रों को यही आदर्श के साथ आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों से मैं वचन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम।
1: दीक्षांत समारोह में स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज को महामहोपाध्याय डिलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सभी शोधार्थियों से कहा,
2: भगवान महाकाल की कृपा है, भगवान विश्वनाथ की कृपा है कि हम लोगों ने एक युग देखा जब 370 धारा हट गई, हम लोगों ने यह देखा भगवान श्री राम का मंदिर बन गया, हमने ये देखा कि IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम भारतीय ज्ञान परंपरा का पुनः उद्घोष हमारी शिक्षा पद्धति में आरंभ हुआ। यह मंच आपको कह रहा है निमित्त मात्र बन जाओ, उठ करके खड़े हो जाओ, भविष्य काल हमारा है, हम उसको करके दिखाएंगे। कितना भी चुनौती भरा समय होगा तो भी क्या, यह उथल पुथल उत्ताल लहर, यह उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी, भारत माता की।
1: ज्ञान, संस्कार और परंपरा के संगम बने इस दीक्षांत समारोह ने विद्यार्थियों को नई उड़ान और नई जिम्मेदारियों का संदेश दिया है। उपाधियों और सम्मान के साथ आज इन विद्यार्थियों ने समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प भी लिया। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस विशेष प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं।
3: अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल की गरिमामय उपस्थिति में महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के छठवें दीक्षांत समारोह पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आकाशवाणी उज्जैन की प्रस्तुति थी और इसका प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया गया।

फिल्म का नाम है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आवाजें सोनू निगम और अलका याग्निक की, जावेद अख्तर की बोल हैं और संगीत जतिन ललित का।

लीजिए सुनिए अगला गीत फिल्म दिल धड़कने दो से। यशिता शर्मा, मनीष कुमार टीपू और साथियों की आवाज है, बोल जावेद अख्तर के हैं और संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने।

श्रोताओं, आपसे कुछ देर बाद यानी शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल से हम रिली करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में शाम 6:30 पर कलाकार होंगे धनीराम अहिरवार। 7:20 पर होगा कार्यक्रम घरनी। इसमें ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी श्रोताओं के पत्रों और ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति की होगी। इसके अलावा होगी ब्रिजेश कुमार पुष्पद की वार्ता, पीएम मुफ्त सूर्य घर योजना का लाभ एवं फायदे। रात 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। आकाशवाणी दिल्ली से आज हम रिले करेंगे 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक और 9:45 पर मंथन। आज रात 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

कल हमारी पहली सभा में हिंदी महक के अंतर्गत सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे रमेश चंद्र विश्वकर्मा की वार्ता बुंदेलखंड के कृषि गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कल सुबह 8:30 पर संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे दुर्गा भाभी से बातचीत और बेगम अख्तर से कैफी आजमी की बातचीत। लोकरंग कार्यक्रम में कल सुबह 9 आप सुनेंगे आकांक्षा राजपूत के गाये बुंदेली लोकगीत। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे हमराज फिल्म के गाने। 10:05 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन। 10:10 पर सामुदायिक गान प्रशिक्षण पाठ के अंतर्गत आप सुनेंगे उड़िया भाषा के गीत का पाठ। कल सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कल हमारी दूसरी सभा आकाशवाणी मध्य प्रदेश

कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन 10:10 पर सामुदायिक गान प्रशिक्षण पाठ के अंतर्गत आप सुनेंगे उड़िया भाषा के गीत का पाठ। कल सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कल हमारी दूसरी सभा आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले होगी, इसमें आप सुनेंगे 11 बजे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12 बजे और 2:30 पर होगा आपकी फरमाइश। 12:30 पर होगा कार्यक्रम संग्रहालय से महिला कार्यक्रम में दिन में 1 बजे महिलाएं सुनेंगी रानी विश्वकर्मा की वार्ता, घर से व्यवसाय तक महिलाओं की सफलता यात्रा। 1:30 पर लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति होगी। दिन में 2 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कल हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे युववाणी कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्म अभिनेता सुभाष अहिरवाड़ से महिमा दीप पटेल की बातचीत भेंटवार्ता क्रम में। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 5:40 और रात 8:15 पर। कल शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल से हम रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा 6:30 पर कलाकार होंगे राजेश कुमार मिश्रा। 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में होगा धारावाहिक चिट्ठिया देवर भौजाई की, प्रस्तुति शमुदयाल हरवार की, वाचन साहब सिंह सेंगर का। इसके अलावा डॉ राजीव रंजन पटेल की वार्ता किसान उत्पादक संगठन संगठित किसान समृद्ध किसान। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है, न्यूज हेडलाइंस आकाशवाणी भोपाल से होंगी।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में छात्रों से शिक्षा को एक न्यायसंगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस के अवसर पर विदेशी शासन के अन्याय के विरूद्व दृढ़ता से संघर्ष करने वाले सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित सभी वीर आदिवासी योद्वाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। जनरल धीरज सेठ ने आज भारतीय थलसेना के नए प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। जनरल उपेन्द्र द्विवेदी का कार्यकाल पूरा होने पर एक आधिकारिक समारोह में उन्होंने सेना की कमान जनरल सेठ को सौंपी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज राजगढ़ में आयोजित जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम में 352 करोड़ की लागत के 31 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन सिंगल क्लिक के माध्यम से किया और 2026 फीफा विश्व कप के पहले दौर के 32 मैचों के बाद तीन और टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। मोरक्को ब्राजील और पराग्वे ने क्रमशः नीदरलैंड, जापान, जर्मनी पर जीत हासिल करके राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 6 बजने वाले हैं। आप सुनिए कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान। ये भी जानिए में लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
1: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
1: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
0: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
1: जी,
0: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
1: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
0: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है
1: जी।
0: जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
1: जी श्रोताओं, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
0: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
1: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
0: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
1: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
0: जी जी।
1: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
0: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
1: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे। दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
0: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
1: जी,
0: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
1: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
0: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओं, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है, वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
1: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए। वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
0: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं।
1: जी।
0: प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
1: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं।

0: TIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
0: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: संजय मार्केंडे जी ने लिखा है, गुजरे

0: तो अजीत जी, रोचक बात यह है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
1: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
0: जी
1: तो श्रोताओ, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप सोशल मीडिया पर भी, यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
0: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ।
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
3: फूलों से नित हंसना सीखो,
2: भौरों से नित गाना,
3: भौरों से नित गाना,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
3: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: सीखो शीश झुकाना,
3: सीखो शीश झुकाना,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
3: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: कोमल भाव बहाना,
3: कोमल भाव बहाना,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
3: दूध तथा पानी से सीखो,
2: मिलना और मिलाना,
3: मिलना और मिलाना,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
3: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
3: सूरज की किरणों से सीखो,
2: जगना और जगाना,
3: जगना और जगाना,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
3: लता और पेड़ों से सीखो,
2: सबको गले लगाना,
3: सबको गले लगाना,
2: दीपक से सीखो जितना,
3: दीपक से सीखो जितना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
3: हो सके अंधेरा हरना,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
3: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
3: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: सच्ची सेवा करना,
3: सच्ची सेवा करना,
2: जलधारा से सीखो आगे,
3: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
3: जलधारा से सीखो आगे,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
3: जीवन पथ में बढ़ना,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
3: और धुएं से सीखो हरदम,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना,
3: ऊंचे ही पर चढ़ना।
1: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खो देंगे तालाब बड़ा सा। बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी,

0: थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
1: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करें खत्म।
0: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
2: खोद लेंगे भाई खोद लेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
3: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, काओ काओ काओ।
4: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों है ना कोयल बहन?
5: कू कू।
6: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता।

0: 到夜吧的哈，啊，强吧的没你都满了，各种么一叫各那家呢，干干干，
1: 强
2: 强
1: 强
0: 啊，不讲什么过瘾了该，
1: 过过，
0: 这什么啥不是呢？सबका तुम दो जोश बढ़ाना तुम सब में उत्साह जगाना काम
3: हाँ हाँ यही करो तुम दोनों
1: जो आज्ञा महाराज
4: दम लगा के कू
2: हईशा
4: दम लगा के कू
2: हईशा
0: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे, पपीहा कहाँ है? हाँ, करता होगा बड़ा आराम। चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी। चलकर उसको समझाऊं मैं काम, काम, काम, काम, काम, काम, काम। लो ये रहा पपीहा चुप्पा बैठा गाल फुला कर कुप्पा काम काम काम अरे पपीहे ऐसे क्यों बैठा है भैये सारा जंगल झूम रहा है अरे तू कैसा दुख मना रहा है काम काम काम
5: तंग मत कर तू मुझको कौवे जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले अरे तू मुंह तो धोकर आ
0: काँ काँ काँ मुंह भी धोकर आऊंगा मैं पानी भी पीऊंगा जी भर सबके संग मिलता लखोदने मैं भी मदद करूंगा डट कर अरे पपी है अरे पपी है तुम भी चलो कुछ मदद करो
5: ताल खोदने में इस जंगल में खुदेगा तालाब अरे वाह जनाब ताल के अंदर मिट्टी होगी पानी भी गंदा ही होगा छी छी कौन पिएगा उसको अरे काले कौवे मुझको बख्शो
0: का का का
6: कौवा मदद मांगने आया पपीहे ने डांट कर उसे भगाया रिमछिम रिमछिम बरखा आई पपीहे ने झूम कर गाया।

0: पपीहा पिए
1: अरे इसने तो बस रट ही पकड़ ली।
2: भौ भौ भौ, अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भौ भौ, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं।
1: कहाँ कहाँ।

0: कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। काँ काँ शेर महाराज, अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते।
1: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: इसकी यही सजा हो,
3: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
0: काँ, काँ, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। काँ।
4: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं, भयानक गर्मी है ना।
5: भाई मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
0: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
5: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
4: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब। तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
0: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
4: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
5: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
0: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपीहे के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।

0: क्या ये मर गया?
1: क्या पता,
0: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
1: हाँ, चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
0: हाँ ये ठीक रहेगा।
1: पपी है, अरे देखो तो हम आए हैं तुम्हें लेने। माहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
2: पानी,
1: अरे
0: पपी है भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच लंदन में खेले जाने वाले महिला T20 क्रिकेट मैच के पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक, जिसे हम आकाशवाणी
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इसमें आज कलाकार हैं धनीराम अहिरवार, इनके साथ संगत कर रहे हैं झींका पर बाबू रेकवार, बैंजो पर अशोक मस्ताना और ढोलक पर वीरेंद्र अहिरवार। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए पर्यावरण पर आधारित ये लोकगीत।

धनीराम अहिरवार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण लोकगीत। इन्हीं की आवाज में लीजिए अब हम आपको सुना रहे हैं छुआछूत निषेध पर आधारित बुंदेली लोकगीत।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा,
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ये लावणी। कलाकार थे धनीराम अहिरवार, संगतकार थे झींका पर बाबू रेगवार, बैंजो पर अशोक मस्ताना और ढोलक पर वीरेंद्र अहिरवार।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए एक विदाई लोकगीत। कलाकार हैं धनीराम अहिरवार।

धनीराम महिरवार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये विदाई लोकगीत। इन्हीं की आवाज में लीजिए अब हम आपको सुना रहे हैं एक चेतावनी भजन।

अभी आप सुन रहे थे ये चेतावनी धनीराम अहिरवार से। और लीजिए कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुना रहे हैं एक लोक भजन। कलाकार हैं धनीराम अहिरवार, संगतकार हैं झींका पर बाबू रैकवार, बेंजो पर अशोक मस्ताना और ढोलक पर वीरेंद्र अहिरवार।

अभी आप सुन रहे थे ये लोग भजन, कलाकार थे धनीराम अहिरवार, इनके साथ संगत कर रहे थे झींका पर बाबू रेखवार, बैंजो पर अशोक मस्ताना और ढोलक पर वीरेंद्र अहिरवार। इसी लोक भजन के साथ ही बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है, लीजिए अब प्रस्तुत है गुमशुदा सूचना।

ग्राम पोस्ट मदारीपुर थाना कुठौंद जिला तहसील जिला और तहसील जालौन उत्तर प्रदेश की निवासी निक्की प्रजापति पुत्री बेटालाल प्रजापति 19 मई 2026 को करीब 3 बजे दोपहर घर से बिना बताए अपनी सहेली के साथ घर से चली गई है। अभी तक वापस नहीं लौटी। इनकी गुमशुदगी थाना कुठौंद जनपद जालौन में अंकित कराई गई है। जिस किसी भी सज्जन को जानकारी मिले वे सूचना दे सकते हैं। हुलिया इस तरह है, उम्र करीब 19 वर्ष, रंग सांवला, चेहरा पतला, लंबाई 5 फीट। गुमशुदा होते समय सलवार सूट और लोअर टी शर्ट पहने हुए हैं। जिस किसी को भी इनके बारे में सूचना मिले वे इन नंबरों पर जानकारी दे सकते हैं। क्षेत्राधिकारी जालौन मोबाइल नंबर है 9454401428। थाना अध्यक्ष कुठौंद का मोबाइल नंबर है 9454403600। इसके अलावा उपनिरीक्षक मुकेश कुमार का मोबाइल नंबर है 8869060634।

एक और सूचना सुनिए। ग्राम पोस्ट मदारीपुर थाना कुठौंद जिला और तहसील जालौन की निवासी प्रीति पुत्री स्वर्गीय मुरली प्रसाद 19/5/2026 को करीब 3 बजे दोपहर घर से बिना बताए गुमशुदा हो गई हैं। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इसके पहले जिन निक्की प्रजापति की सूचना आपको दी थी, निक्की और प्रीति दोनों आपस में सहेली हैं और दोनों एक साथ ही करीब 3 बजे दोपहर घर से बिना बताए एक साथ चली गई हैं, जो कि अभी तक वापस नहीं लौटी। इनकी गुमशुदगी थाना कुठौन जनपद जालौन में अंकित कराई गई है। प्रीति का हुलिया इस प्रकार है। उम्र करीब 19 वर्ष, रंग गेहुआ, चेहरा गोल, माथे पर चोट का निशान है, लंबाई 4.5 फीट है और गुमशुदगी के समय गुलाबी शर्ट और लोअर पहने हुई थी। जिस किसी सज्जन को भी इनके बारे में पता चले, इन नंबरों पर सूचित कर सकते हैं। क्षेत्राधिकारी जालौन का मोबाइल नंबर है 9454401428। थानाध्यक्ष कुठौन का मोबाइल नंबर है 9454403600 और उपनिरीक्षक मुकेश कुमार का मोबाइल नंबर है 8869060634। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। शाम के 7:10 होने को हैं प्रादेशिक समाचार। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। इसके पश्चात 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर में।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हूल दिवस के अवसर पर वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति मुर्मू ने जनजातीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। राजगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 352 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और उज्जैन में महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह संपन्न। 63 विद्यार्थियों को मिले पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हूल दिवस के अवसर पर सिधो, कान्हू, चंद भैरव और फुलोझानो सहित सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हूल दिवस आदिवासी समुदायों के असाधारण साहस और बलिदान का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए उनका संघर्ष देशवासियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 1 जुलाई को

0: भारत आ रही हैं। ताकाइची 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में छात्रों से शिक्षा को समावेशी समाज निर्माण का साधन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि शिक्षित युवाओं को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देना चाहिए और जनजातीय भाषाओं के संरक्षण पर भी बल दिया।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज राजगढ़ में जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम में 352 करोड़ की लागत के 31 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने भैंसवा माता मंदिर परिसर में आयोजित समारोह को संबोधित किया। डॉ. यादव ने कहा कि 19 मार्च से 30 जून तक चले इस अभियान में प्रदेश में 3.5 लाख से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण और पुनरुद्धार किया गया है।
2: जलगंगा अभियान 10 संभाग में 55 जिलों में सभी विधानसभा सभी तहसील सभी पंचायत में एक साथ हजारों लाखों लोग करोड़ों लोग इस प्रकार की योजनाओं से जुड़े हैं, जिसके माध्यम से ये हमारा पूरा कार्यक्रम आज समापन पे इस अभियान का एक चरण हो रहा है, अगला चरण भी हम चालू करेंगे।
0: इसी के साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बेहतर प्रबंध किए जा रहे हैं।
2: सिंहस्थ में जब 40 करोड़ लोग आने वाले हैं और 40 करोड़ लोगों के लिए हम अगर प्रबंधन कर रहे हैं और वो प्रबंधन भी मास्टर प्लान के हिसाब से कर रहे हैं, मास्टर प्लान भी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के समय जो बनाया गया है उनका प्रबंधन भी वैसे करने वाले हैं। विश्व के लिए सबसे बड़ा मेला अगर कोई है, ये देश का और देश से बढ़कर विदेश से लेकर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला है।
0: जनरल धीरज सेठ ने आज भारतीय थल सेना के नए प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कार्यकाल पूरा होने पर एक आधिकारिक समारोह में उन्होंने सेना की कमान जनरल सेठ को सौंपी। जनरल सेठ इससे पहले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं और 28 साल बाद आर्म्ड कोर से सेना प्रमुख बने हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित समत्व भवन में लोकमाता अहिल्याबाई राष्ट्रपुनरुत्थान की संकल्पना पुस्तक का विमोचन किया। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित इस शोध संकलन में अहिल्याबाई होलकर के जीवन, प्रशासनिक दक्षता और समाजोत्थान से जुड़े 19 अध्याय शामिल हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। उज्जैन स्थित महर्षि पाणिनी संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने की। समारोह में विश्वविद्यालय के 63 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पदक प्रदान किए गए। साथ ही स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज और प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे को विश्वविद्यालय की मानद दिलित उपाधि से सम्मानित किया गया। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने आज गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाएं समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि बावड़िया कला से आशिमा मॉल तक प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसी माह निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। मंत्री ने पिपलानी खजूरी रोड में देरी पर नाराजगी जताते हुए ठेकेदार को नोटिस देने के निर्देश दिए। प्रदेश ने एक साथ 12 उद्यानिकी फसलों के लिए जीआई टैग हासिल किया है। देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जीआई टैग मिले हैं, जिसमें गुना का धनिया, बैतूल का गजरिया आम, खरगोन की लाल मिर्च, जबलपुर का मटर और सिंघाड़ा, बुरहानपुर का केला और छतरपुर का पान शामिल है। इसके अलावा 7 और फसलों के लिए जीआई टैग का प्रस्ताव भेजा गया है। भोपाल में नमामि गंगे मिशन के तहत बेतवा नदी के पुनर्जीवन के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने संबंधी दो दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यशाला में डीपीआर तैयार करते समय प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण को

प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक 1,43,150 उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। इनके बैंक खातों में करीब 1,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी जमा कराई गई है। श्री तोमर ने बताया कि 1 किलोवाट संयंत्र पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 और 3 किलोवाट या अधिक पर 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी सास गिरबाला सिंह और पति समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 14 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। सीबीआई ने अदालत से जब्त लैपटॉप का पासवर्ड दिलाने और दोनों आरोपितों के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति मांगी है, जिस पर 3 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं गिरबाला सिंह के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने नशा विरोधी अभियान के तहत गोविंदपुरा क्षेत्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 2 ग्राम स्मैक और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अगले महीने जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। हरमनप्रीत कौर को कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। टीम में 2 बदलाव किए गए हैं। यास्तिका भाटिया की जगह जी कमलनी को टीम में शामिल किया गया है, जबकि प्रीमा राउत को बाहर रखा गया है। आपको समाचार संक्षेप में। अशोकनगर जिले में पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंदौर के मूसाखेड़े स्थित कबीर मंदिर में श्री सतगुरु कबीर साहब का 629वां प्रकट उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में चौका आरती और भजन संध्या हुई, जिसमें विधायक महेंद्र हड्डिया सहित बड़ी संख्या में कोलीकोरी समाजजन शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन लालचंद सोमेश ने किया। खंडवा में जलगंगा संवर्धन अभियान का जिला स्तरीय समापन समारोह आज किशोर कुमार सभागार में आयोजित किया गया। वहीं शिवपुर कलेक्टर के मार्गदर्शन में जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह आज ग्राम पंचायत मठेपुरा स्थित बावड़ी पर आयोजित हुआ। झाबुआ में ग्राम पंचायत जुलवानिया बड़ा जनपद थांदला में 14वें वित्त आयोग के 2 निर्माण कार्यों में अनियमितता पर कार्रवाई की गई है। देवास में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जिला स्तरीय मास्टर वॉलेंटियर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदसौर में जिला स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर ने 83 आवेदकों की समस्याएं सुन निराकरण के निर्देश दिए। वहीं नीमच कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में अपर कलेक्टर ने जिले भर से आए नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। शहडोल जिले में आकाशीय बिजली गिरने की घटना में बीते 4 दिन में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

धरणी कार्यक्रम सुनवे बारे सबई भैया बहन हा अपनी भोपानी बहन की दो हाथ जोड़ के राम राम पहुंचावे। देखो भैया बहनों, बेरा भाई और हम अपन सबई जनन के बीच में हाजिर हो गए लेके कछु जन उपयोगी बतका और गीत संगीत। आज अपन से कछु उपयोगी बतकाव भी हुई है और गीत संगीत भी हुई है। आज मंगलवार है सो अपन खा अपन की मनपसंद के लोकगीत भी सुनवा है। कैसे के हर मंगलवार खा अपन खा पता है कि अपन की मनपसंद को कार्यक्रम लोक मंजरी हम लेके आउ थे।

और भैया बहनों देखो, समय समय पे हम अपन किला ने खेती किसानी और पर्यावरण से जुड़े अलग अलग विषय से संबंधित उपयोगी और नौनी जानकारी भी लेके आए थे। तो आज हम अपन किला ने लेके आए हैं औषधीय महत्व के पौधा आक। जी हाँ, अपने गांव की भाषा में अपन अकौआ का। तो अकौआ के बारे में उपयोगी जानकारी। तो बहनों, अपन सभी जने जाना थो कि अकौआ अपने आसपास अपने देखो हुई है। तो अकौआ यानी आक एक औषधीय महत्व का पौधा है, जो पौधा हमारे आसपास आसानी से अपन का मिल जाते है और इको उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में भी करो जाते है। अकेले कई बार कछु कीट व्याधियां ई पौधा हा नुकसान पहुंचा देती। तो भैया बहनों, जो औषधीय महत्व का पौधा है, तो जैसे कछु भैया बहन अपने जो है बाग बगीचे लगाऊ थे, तो उनमें भी औषधीय पौधन की खेती करते हैं। तो अपने भैया बहनन का अपने ई पौधा के जो रोग व्याधियों से सुरक्षा के लाने कछु अपन खा जानकारी बता रहे हैं। अपने कहा है कि पौधा में कछु कीट या व्याधियां लग जाती हैं। तो पहले अपन बात करते हैं माहू कीट की। जो माहू कीट होते है पौधा की कोमल पत्तियां खा और तना को रस चूसत है, जिसे पत्तियां मुड़ जाती और पौधा की वृद्धि प्रभावित होते है। तो इके नियंत्रण के लाने अपन नीम के तेल को छिड़काव करें, तो जिसे अपने पौधा की एक कीट से सुरक्षा करी जा सकता है। और एक और कीट होते है भैया बहनों, मिली बाग। जो कीट सफेद रुई को जैसे समूह में दिखत है और पौधा हाँ प्रभावित करत है। इके बचाव के लाने जो प्रभावित भाग है वहां हटा के अपन नष्ट कर दें और नीम के घोल को छिड़काव करें, तो उसे अपने पौधा का लाभ हुई है। और भैया बहनों, एक और कीट होते है पत्ती खावे वाली इल्लियां। तो जो इल्ली तो अक्सर और भी फसलन में लग जाती हैं, तो ये इल्ली का करती हैं कि पत्तियां का खाती हैं, उनको रस खात रहती और जिसे जो पौधा है वो प्रभावित होते उनकी वृद्धि तो रुका ही जाता है और संगे संगे उनकी जो पत्तियां हैं वो झिल्ली की तरह हो जाती हैं। तो इसकी रोकथाम के लाने खेत या बगीचा की नियमित निगरानी कर वो जरूरी है और जरूरत के हिसाब से अपन जैविक दवाई को उपयोग करें, जिससे ई कीट से राहत मिल सकते है। तो भैया बहनों, जाकर छू जानकारी हती थी आग के कीट और प्रबंधन के। और अब बात करते हैं अपन से बेर के कीट और प्रबंधन की। तो देखो भैया बहनों, अपने बेर भी अपने आसपास भी जो बेर को पेड़ होते वो भी लगू रहा है और अपने भैया बहन बाग बगीचा में भी बेर लगाऊ थे। तो बेर में भी कई प्रकार के कीटन के आक्रमण हो जाते हैं, जिसे इसकी पैदावार और गुणवत्ता प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें बेर फल मक्खी कीट के। जो कीट फल में छेद करके अंडा देते है, जिसे फल सड़न लगत और समय से पहले फल गिर जात। तो इके नियंत्रण के लाने खेत या अपने बगीचा में गिरे भय संक्रमित फल है उन्हें इकट्ठो करके अपन नष्ट कर दें और बगीचा की साफ सफाई को ध्यान रखें। और फल मक्खी की निगरानी के लाने फेरोमोन या आकर्षक ट्रैप का उपयोग अपन करें। और एक और कीट होते है फल छेदक कीट। अपन ने देखो हुई अक्सर कि अपने जो बेर होते हैं, बेर के ऊपर से साज मतलब अच्छो दिखा दे, लेकिन ऊ के अंदर जो है उसमें कीड़ा रात है और ऊ के अंदर को जो गूदर होते है, अपनी भाषा में गूदो ही बोला थे, तो ऊ बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। तो जो फल छेदक कीट होते है, जो कीट फल के अंदर जाके फल हा नुकसान पहुंचाऊ थे और ई के नियंत्रण के लाने प्रभावित फल जो है जिनमें कीड़ा लगे हैं, तो अपन तोड़ के उन्हें नष्ट कर देवे और अपने बगीचा से या खेत से उन्हें बाहर हटा देवे। एक और कीट होता है जो अपने बेर खां प्रभावित करत है पत्ती खावे वाली इल्लियां। जैसो कि अब अकौआ के लाने भी अपन खां बताओ हतो, तो कि इल्लियां जो है अकौआ के पौधा हाँ भी प्रभावित करती और बेर के पौधा हाँ भी प्रभावित करती, बेर हाँ नुकसान पहुंचाती है जो पत्तियां खाकर पौधा की वृद्धि कम कर देती। इके प्रबंधन के लाने खेत की साफ सफाई रखवो बहुत ज्यादा जरूरी है और नीम आधारित जैविक कीटनाशकन को प्रयोग करके अपन एक कीट से अपने बेर की या पौधा की सुरक्षा कर सकते हैं। तो भैया बहनों, अपने स्वस्थ बाग के लाने या बागवानी फसल के लाने समय समय पे अपने बाग बगीचा

0: निगरानी करवो और संतुलित पोषण बहुत जरूरी है। अगर अपने भैया बहन कीट की पहचान करके शुरुआत ही में उनको नियंत्रण कर देवे तो अपनी जो फसल है या फल की जो पेड़ हैं उनके उत्पादन और गुणवत्ता अच्छी बनी रात है। तो अपन से मत का अपन करते ही रहे हैं, इसे पहले तनक एक विराम लेते हैं।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
0: और भैया बहनों, अब हम अपन के लाने एक और उपयोगी जानकारी लेके आए हैं। आज अपन का सुनवा रहे हैं अब एक वार्ता, पीएम मुफ्त सूर्य घर योजना, और इसके लाभ काका है, वार्ताकार हैं ब्रजेश कुमार पुष्पद। तो सुने अपन जा वार्ता।
3: आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आपसे एक ऐसी योजना के बारे में चर्चा करूंगा जो न केवल हमारे बिजली के खर्च को कम कर सकती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह योजना है सूर्य घर मुक्त बिजली योजना। प्रिय श्रोताओं, भारत जैसे विशाल और तेजी से विकसित हो रहे देश में ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है। आज हमारे घरों में पंखे, कूलर, एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, कंप्यूटर तथा अनेक विद्युत उपकरणों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप बिजली की खपत और बिजली बिल दोनों में वृद्धि हो रही है। ऐसे समय में भारत सरकार ने फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना प्रारंभ की। इस योजना का उद्देश्य देश के लगभग 1 करोड़ परिवारों की छतों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करना तथा उन्हें सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना है। सरकार द्वारा इस योजना के लिए लगभग 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। योजना का संचालन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से किया जा रहा है। सौर ऊर्जा कैसे काम करता है, क्या है? सौर ऊर्जा सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। सोलर पैनल सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। यह ऊर्जा प्रदूषण रहित, निशुल्क और अक्षय होती है। सोलर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से सोलर सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, यह प्रणाली सीधे बिजली विभाग के ग्रिड से जुड़ी रहती है, इसमें बैटरी की आवश्यकता नहीं होती। दिन में उत्पन्न अतिरिक्त बिजली ग्रिड में चली जाती है, नेट मीटर के माध्यम से उसका हिसाब रखा जाता है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में मुख्य रूप से इसी प्रकार के सोलर सिस्टम को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। इस प्रणाली में बैटरी का उपयोग किया जाता है। जहाँ बिजली की उपलब्धता कम होती है वहाँ यह अधिक उपयोगी होती है। गांव और दूरस्थ क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। यह ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का मिश्रण होता है। इसमें बैटरी भी रहती है तथा ग्रिड कनेक्शन भी उपलब्ध रहता है। बिजली कटौती के समय भी घर में विद्युत आपूर्ति बनी रहती है। सोलर पैनल कितने प्रकार का होता है? सोलर पैनल मोनोकिस्ट लाइन पैनल, इसकी दक्षता लगभग 18 से 24% तक होती है। कम जगह में अधिक बिजली उत्पन्न करते हैं, इनकी कीमत अपेक्षाकृत अधिक होती है। दूसरा है पॉलीक्रिस्ट लाइन पैनल, इसकी दक्षता 15 से 18% तक होती है। ये अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। भारत में इनका व्यापक उपयोग किया जा रहा है। तीसरा है बाईफेसियल पैनल, ये पैनल दोनों तरफ से सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर सकते हैं। इनसे 10 से 15% अतिरिक्त बिजली उत्पादन संभव होता है। कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम कितनी बिजली उत्पन्न करता है? सामान्यतः भारत में प्रतिदिन 4 से 5 घंटे प्रभावी धूप उपलब्ध होती है। जैसे 1 किलोवाट सोलर सिस्टम प्रतिदिन लगभग 4 से 5 यूनिट बिजली बनाता है, प्रतिमाह लगभग 120 से 150 यूनिट और साल भर में लगभग 1500 यूनिट बिजली उत्पन्न करता है। जबकि 2 किलोवाट सोलर सिस्टम प्रतिदिन 8 से 10 यूनिट बिजली बनाता है, प्रतिमाह लगभग 250 से 300 यूनिट तक और प्रतिवर्ष लगभग 3000 यूनिट बिजली उत्पन्न कर सकता है। 3 किलोवाट सोलर सिस्टम प्रतिदिन लगभग 12 से 15

0: इन्वर्टर बिजली बना सकता है। माह में लगभग 360 से 450 यूनिट तक बिजली उत्पन्न कर सकता है और साल में लगभग 4500 यूनिट बिजली बनाता है। 5 किलोवाट सोलर सिस्टम प्रतिदिन लगभग 20 से 35 यूनिट तक बिजली उत्पन्न कर सकता है। प्रति माह लगभग 600 से 750 यूनिट बिजली बनाता है और साल भर में लगभग 7500 यूनिट बिजली उत्पन्न कर सकता है। सोलर सिस्टम लगाने में खर्च क्या आता है? बाजार में कीमतें स्थान और कंपनी के अनुसार बदल सकती हैं। 1 किलोवाट प्रणाली लगाने का खर्च लगभग 60,000 से 70,000 रुपये तक हो सकता है। दो किलोवाट प्रणाली की लागत लगभग 1,20,000 रुपये तक हो सकती है। 3 किलोवाट प्रणाली की कीमत लगभग 1,80,000 रुपये तक हो सकती है। 5 किलोवाट प्रणाली का लगभग 3,00,000 रुपये तक खर्च आ सकता है। प्रधानमंत्री सौर घर योजना के अंतर्गत मिलने वाली सरकार के द्वारा जो सहायता है, 1 किलोवाट तक अगर आप सोलर पैनल लगवाते हैं तो 30,000 की सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त होती है। 2 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवाते हो आप तो 60,000 रुपये तक का सब्सिडी प्राप्त होगी। 3 किलोवाट या उससे अधिक किलोवाट तक का सोलर पैनल आप लगवाते हो तो 78,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रधानमंत्री सहायता के माध्यम से होती है। इस सहायता के बाद उपभोक्ता की वास्तविक लागत काफ़ी कम हो जाती है। सोलर सिस्टम में कौन कौन से उपकरण चलाए जा सकते हैं, जैसे पंखे, LED बल्ब, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर, कूलर, AC, इंडक्शन चूल्हा इत्यादि। सोलर पैनल की देखभाल करना भी अति आवश्यक है। उसकी देख रेख, साफ सफाई कैसे करें, कितने दिन में करना चाहिए। पैनल की सफाई प्रत्येक 15 से 20 दिन में करें। धूल पत्तियों और पक्षियों की वीट नियमित रूप से हटाएं। पैनलों पर छाया नहीं पड़नी चाहिए। समय समय पर वायरिंग की जांच कराते रहें। प्रधानमंत्री सौर घर योजना के प्रमुख लाभ, घरेलू बिजली बिल में भारी कमी होती है। दूसरा, लगभग 25 वर्षों तक निःशुल्क बिजली उत्पादन। तीसरा, कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है। चौथा, केवल आधारित बिजली पर निर्भरता कम होती है। पाँचवा, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। छठवां, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री सौर घर योजना मुक्त बिजली योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना आम नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से उत्पादन बनाने का अवसर प्रदान करती है। आइए हम सभी स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर पर्यावरण सुरक्षित करने का संकल्प करें। प्रिय श्रोताओं, आज विश्व स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत भी इस अभियान में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री सौर घर मुक्त बिजली योजना केवल एक सहकारी योजना नहीं बल्कि यह भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था का आधार है। यदि आपके घर की छत पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध है तो आप भी इस योजना का लाभ उठाकर न केवल अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दे सकते हैं। आइए हम सब मिलकर स्वच्छ ऊर्जा को अपनाएं, ऊर्जा की बचत करें और विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बने। नमस्कार।
1: देखो भैया बहनों, अब अपन सभी जने सुन रहे थे वार्ता। विषय हो तो PM मुक्त सौर घर योजना के लाभ। वार्ताकार हते ब्रजेश कुमार पुष्पद। तो भैया बहनों, इसके बारे में अपन ने जा PM मुफ्त सौर घर योजना के बारे में अपन ने नोनी जानकारी सुनी है और अपने भैया बहन इको लाभ जरूर ले हैं। कैसे? जो सूर्य है वो ऊर्जा को ऐसा स्रोत है कि जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता, और कछु ऊर्जा के संसाधन ऐसे होते हैं जो सीमित हैं और एक समय आवे पे जो है वो खत्म होने की संभावना उनकी रात है। तो अपन ऐसे स्रोतन को या ऐसी ऊर्जा स्रोत को अपन उपयोग करें कि जो कि खत्म ना हो पावे, यानी जिन्हें अपन कह सकते हैं कि ऊर्जा के जो है गैर परंपरागत स्रोत। और भैया बहनों, अब अपन से बात का और करें, इसे पहले लेते विराम।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
3: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
1: और देखो भैया बहनों, जैसे कि अब बरसात को टाइम आ गया है और कुछ दिन में खरीफ की फसल को टाइम भी आ जा रहा है, तो जैसे ही पहला पानी बरसात वैसा ही अपने किसान भैया खरीफ की फसल की बुवाई के लाने अपने खेत तैयार करने लगा था। और अच्छे

खाद बीज की व्यवस्था भी करने लगे थे। कैसे फसल की अच्छी पैदावार के लाने उत्तम किस्म के बीज और अच्छे उर्वरक की जरूरत होते है। तो अब बात करते हैं अपन हाँ एक अच्छे उर्वरक की, नैनो उर्वरक। नैनो उर्वरक ऐसा होते है कि जी के कण जो है बहुत छोटे होते हैं, जिसे पौधा उन्हें आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। और जो उर्वरक कम मात्रा में भी अगर उपयोग करो जावे तो पौधा हाँ आवश्यक पोषक तत्व तो उपलब्ध करावे में मदद करत। जो नैनो उर्वरक है वो यूरिया को एक अच्छा उदाहरण है। इसे पत्तियन इसके छिड़काव से जो है पत्तियन के माध्यम से इनको पोषण जो है अपनी फसल हाँ मिलत है। और इसे पौधा में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है और फसल की वृद्धि भी अच्छी होती है। और नैनो उर्वरक के कछु लाभ होते हैं वो अपन हाँ बता रहे हैं। पहला लाभ तो जो है कि कम मात्रा में भी ज्यादा प्रभावी पोषण मिला थे अपनी फसल हाँ, और उर्वरक की बचत और लागत में भी कमी आउत है और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, यानी पोषक तत्वों को अच्छा उपयोग अपनी फसल का हो जाता है। और मिट्टी में जो अनावश्यक रसायन भार को कम करने में सहायता करत और फसल की हरियाली वृद्धि और उत्पादन क्षमता में भी सुधार करत है। तो भैया बहनों अपने सभी भैया बहन किसानों से हम जो एक वो चाहते हैं कि नैनो उर्वरक को उपयोग अपन कृषि वैज्ञानिकन की सलाह के अनुसार करें और इनको छिड़काव सही समय पर सही मात्रा में और सही विधि से करें ताकि अपनी फसल में अच्छों से अच्छो लाभ अपन का मिल सके। और भैया बहनों अब अपन इंतजार कर रही हुई हो अपन की मनपसंद के कार्यक्रम लोक मंजरी के। तो अब अपन सुनवा रहे हैं अपन की मनपसंद को कार्यक्रम लोक मंजरी, जो कार्यक्रम श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी लोकगीतन को कार्यक्रम है और प्रस्तुति है रविंद्र कुमार प्रजापति जी की। तो कछु भैया बहन चिट्ठियां पाती भेजत हैं और चिट्ठियां पाती के माध्यम से अपनी पसंद लिख कर भेजत हैं जिन्हें हम आज के कार्यक्रम में शामिल करत हैं। हमारे पास कछु भैया बहन ने चिट्ठियां पाती लिख के भेजी हैं और अपने मन पसंद के लोकगीत सुनबो चाहे हैं तो हम अपने भैया बहन का उनकी मन पसंद के लोकगीत जरूर सुनवा है। और जो भैया बहन चिट्ठियां पाती भेजबो चाहते हैं तो हम कार्यक्रम के अंत में अपन खा अपना पतो बताए सोपना हमारा पतो लिख लेने और चिट्ठियां पाती जरूर भेजने। तो भैया बहनों हमारे पास पहले लोकगीत के लाने जब पहली चिट्ठिया आई है ग्राम तरसना जिला मुरैना मध्य प्रदेश से भेजने वाले भैया हैं हरिविलास सिंह तोमर। और यही लोकगीत के लाने एक और चिट्ठिया आई है देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से भेजने वाले भैया बहन हैं गन्नू लाल रजक के आर साहू अश्विनी वर्मा गणेश मिस्त्री। और यही लोकगीत के लाने एक और चिट्ठिया आई है वेड़ी से भेजने वाले भैया बहन हैं हुकुम करमकर सुनीता करमकर हार्दिक करमकर और तनुज करमकर। ए लोकगीत के लाने एक और चिट्ठिया आई है ग्राम कटकहा जिला पन्ना से भेजने वाले भैया बहन है प्रताप सेन सविता सेन प्रशांत नेहा अम्बेश कृष्णा और प्रांसी सेन। और ए लोकगीत के लाने एक और चिट्ठिया आई है अमलेश्वर से भेजने वाले भैया बहन है डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथिलेश ठाकुर तारिणी ठाकुर और सूरज ज्योति रियांश ठाकुर। और ए लोकगीत के लाने जा एक और चिट्ठिया आई है ननोरा महोबा उत्तर प्रदेश से भेजने वाले भैया बहन हैं बलराम दास हरवार श्रीमती कस्तूरी कुमारी आराधना शौनिका उपमा और नैतिक बर्मान। इन भैया बहन ने सुनबो चाहो है नथु सिंह को गाओ हो बरसात गीत कैसे बरसात का मौसम आ गओ है तो अपन सुनाते हैं अपन की मन पसंद को जो बरसात गीत।

देखो भैया बहनों, अभी अपन सब जन ने सुनो अपन की मनपसंद को जो बरसात गीत रिमझिम बरसात कारी बदरिया। तो भैया बहनों हमें बहुत अच्छा लगो, अपन खा भी नोनो लगो हुई है, मन प्रसन्न होगा। और अपन से देखो भैया बहनों बदका भी होद रहा, संगे संगे मनोरंजन होद रहा, तो बात कर भी को मजा ही कछु आर लग रहा। और अब हम अपने भैया बहनन खा अपन की मनपसंद को एक और लोकगीत सुनवा रहे हैं। देखा थे लोकगीत के लाने किन किन भैया बहन ने फरमाइश करी है। तो भैया बहनों अगली लोकगीत के लाने हमारे पास जा चिट्ठिया आई है, ग्राम रतवास पोस्ट मबई तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से लिखे वाले हैं बीरेंद्र कुमार कृष्णा, कृष्णा भैया शुक्ला, अनु शुक्ला, नीलम शुक्ला, सेजल कुमारी और चुन्नी बिटिया। ए लोकगीत के लाने एक और चिट्ठिया आई है, भूषण खेरा जिला खेड़ा से भेजने वाले भैया बहन हैं, शालिनी खेड़ा, आरवी खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और खेड़ा परिवार वाले। ये लोकगीत के लाने एक और चिट्ठी आई है, नेपाल पहले सागर से भेजने वाले भैया बहन हैं, तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रोवेंशन। और ये लोकगीत के लाने एक और चिट्ठी आई है, मोहाली चंडीगढ़ से भेजने वाले भैया बहन है, टीडी मल्होत्रा।

प्रतीक मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप कालका सिंह, शुभ चंद्र बजाज, साहिल विट्टा बजाज। और एक लोकगीत के लाने एक और चिट्ठी आई है, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से भेजे वाले भैया बहने हरदेव मीका, बलविंदर मीका और जैतिक विरक और मीका विरक। एक लोकगीत के लाने जा एक और चिट्ठी आई है, मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से भेजे वाले भैया बहन है अभिजीत गवहाड़कर, राही श्रीमती सरिता गवहाड़कर, प्रिंस एकांक गवहाड़कर। इन भैया बहनों ने सुन बोचा हो है चंद्रभूषण पाठक को गाओ हो साक्षरता गीत। तो भैया बहनों सुना थे अपन की मनपसंद को जो साक्षरता गीत।

देखो भैया बहनों, अभी अपन सभी जन ने सुनो अपन की मनपसंद को जो लोकगीत चंद्रभूषण पाठक को गाओ साक्षरता पे। तो भैया बहनों, अपन खा जरूर अपने बाल बच्चन खा पढ़ भी लिखे भी भेजने हैं और सभी जनन खा साक्षर होने हैं। खुद पढ़े लिखे अपनी बिटियन खा पढ़ाए लिखाए अपने बाल बच्चन खा भी पढ़ावे लिखावे। कैसे अपनी बिटियन है पढ़ाए लिखाए तो अपनी बहू भी पढ़ी लिखी अपन खा मिले। उम्दा लगो अपन की मन पसंद जान के बहुत अच्छो लगो। और अगले लोकगीत के लाने हमारे पास है और चिट्ठियां पाती आई है, तो अगले लोकगीत के लाने जा चिट्ठी आई है। पहली ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद से भेजे वाले भैया बहन है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवी सिंह। ए लोकगीत के लाने एक और चिट्ठी आई है ग्राम लहोडा जिला बागपत से भेजे वाले भैया बहन है जगमोहन सिंह प्रजापत, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी ने। और ये लोकगीत के लाने एक और चिट्ठिया आई है मजनू का टीला से। तो भैया जिनने भी मजनू का टीला से जा चिपाती भेजी है तो अपन पूरा पतो जरूर लिख देवे जिला और संगे संगे कौन सा प्रदेश है। तो मजनू का टीला से भेजे वाले भैया हैं कमल बलूजा, मधु बलूजा और सागर सागर बलूजा, उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक, माही मलिक। और ए लोकगीत के लाने जाए एक और चिट्ठी आई है महोबा से और भेजने वाले भैया हैं जयपाल यादव। इन भैया बहन ने सुनबो चाहो है शकुंतला राजपूत को गाओ भाव जल संरक्षण गीत। तो सुनत है उनकी मन पसंद को जो जल संरक्षण गीत।

देखो भैया बहनों, अब अपन सभी जन ने सुनो अपन की मनपसंद को जो जल संरक्षण गीत शकुंतला राजपूत को गाओ भाओ। तो भैया बहनों, हमें बहुत नौ लगो अपन की पसंद जान के, और ऐसा ही अपन खां चिठिया पाती भेजत रहना है। अब अपन की मनपसंद को कार्यक्रम लोक मंजरी पूरो भाओ, जो कार्यक्रम श्रोताओं के पत्र और ईमेल पे आधारित फरमाइशी लोकगीतन को कार्यक्रम हतो, और प्रस्तुति हती रविंद्र कुमार प्रजापति जी की। और जो भैया बहन चिट्ठियां पाती लिख के भेजबो चाहते हैं तो अपन हम आप

पाती भेजत रहने। अब अपन की मन पसंद को कार्यक्रम लोक मंजरी पूर्व भाव जो कार्यक्रम श्रोताओं के पत्र और ईमेल पे आधारित फरमाइशी लोकगीतन को कार्यक्रम हतो और प्रस्तुति हती रविंद्र कुमार प्रजापति जी की। और जो भैया बहन चिट्ठियां पाती लिख के भेजबो चाहत हैं तो अपन हमारा पतो लिख लेवे। हमारा पतो है लोक मंजरी कार्यक्रम द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी छतरपुर पिन है 471001। ई पते पे अपन खा चिट्ठियां पाती जरूर भेजने हैं। और भैया बहनो देखो अब है बारी आज की सीख की। तो विषय है जो जिये सो खेले भाग। ई को मतलब होत है कि जी हाँ जीवन मिलो है वही जीवन के सुख और आनंद को अनुभव कर सकते हैं। मतलब जो है कि जीवन रहत भय अपन सभी जने खुशियां मना सकते हैं और अच्छे अवसरों को लाभ अपन ले सकते हैं। देखो भैया बहनों जा कहावत है अपन सभी जनन के जीवन के महत्व के बारे में बताओ कि अपन का अपने जीवन को महत्व हाँ समझने हैं। बेकार की बातन में अपन का अपना जीवन बर्बाद नहीं करने और ना निराशा में अपन खा डुबो रहना है। छोटी छोटी सी परेशानी से आपकी जिंदगी में आती हैं तो अपन खा उनमें हौसला बनाए रखने हैं और हमेशा सकारात्मक सोच के संगे नई उमंग उत्साह के संगे आगे बढ़ने हैं और खुशियां मनाने हैं। और भैया बहनों अब हो रही बेरा चल रही है बता दें कल के कार्यक्रम। कल पंच भैया ग्राम सभा में सुने धारावाहिक चिठिया देवर भौजाई की भाग चार। वाचन शुरू हुई है साहब सिंह सेंगर को प्रस्तुति संभुदयाल अहरवार जी की और वार्ता सुने अपन किसान उत्पादक संगठित किसान और समृद्ध किसान। वार्ताकार हुई है डॉक्टर राजीव रंजन और आज किसी को विषय हुई है जाड़ो ठाड़ो खेत में कहत है भर भर सांस और मोरे बैरी तीन है पैरा उन कपास। अब एक संगे दो आगे अपनी बहन भुमानी खा बहनों राम राम।

ग्रामीण महिलाओं के लिए घरनी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला नगमा मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में प्रोफेसर फिल्म से। हसरत जयपुरी की शब्द रचना है, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

प्रोफेसर फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को। हसरत जयपुरी की शब्द रचना थी, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए दिल एक मंदिर फिल्म का गाना, आवाजें मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की हैं। हसरत जयपुरी की शब्द रचना एक बार फिर से और संगीतकार शंकर जयकिशन।

ये आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था दिल एक मंदिर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज। फिल्म का नाम है पारसमणि। गीतकार हैं असद भोपाली और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये आवाजें थीं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था पारसमणि। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की आवाजें। शब्द रचना भी आनंद बख्शी की है, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है चरस।

चरस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी तथा आनंद बख्शी की आवाजों में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको सुना रहे हैं गुलजार की रचना, राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में। आवाजें हैं लता मंगेशकर और भूपिंदर की। फिल्म का नाम है किनारा।

ये खूबसूरत आवाजें थी लता मंगेशकर और भूपिंदर की, फिल्म थी किनारा। शब्दकार थे गुलजार और संगीतकार राहुल देव बर्मन। नीचे इसी जोड़ी के गीत और संगीत अब हम आपको आंधी फिल्म में सुनवाने जा रहे हैं। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में, लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है लवर्स।

प्रेम रोग फिल्म के संगीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: दिल नहीं इख्तियार में मेरे, जान जाएगी प्यार।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतनभोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।

0: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृहमंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्डधारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
2: One key pillar which has brought about a transformation.
3: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
1: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
4: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के

0: रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
3: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,800

80 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला

0: कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सस में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living. Also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch 3 projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today interacted with various secretaries to several ministries at Sevatirth in New Delhi. The discussion focused on 2 key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. During the interaction, the secretaries outlined the major steps being taken by their ministries and departments in line with the 2 key themes. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow. On the eve of the nationwide rollout of VB G Ramji Act 2025, Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said, the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. He added, the enhanced guarantee of 125 days of wage employment will strengthen rural livelihoods, create durable community assets and accelerate the vision of Viksit Bharat. President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said it.

0: Manthan.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
2: श्रोताओं, कल सांख्यिकी दिवस के मौके पर सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कई खास रिपोर्टें जारी की और इन रिपोर्टों में भारत की जो सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की रफ्तार है, इसके बारे में हमें एक तस्वीर जानने को मिली। हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों के लिए सतत विकास के लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करने का एक लक्ष्य रखा है और भारत इस दिशा में कैसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जो संकेतक हैं उनमें भारत कैसे अच्छी प्रगति दिखा रहा है। तो आज हम मंत्रालय की जो ये रिपोर्टें जारी हुई हैं उनका एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और किस तरह से भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में हमारे मेहमान आज हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद।
2: तो सिंह साहब, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। जैसे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण, इन तीन मुद्दों पर हम देखते हैं कि जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है उसने इन रिपोर्टों में फोकस किया है कि उसमें तेज गति से हमें प्रगति देखने को मिली है। शुरुआत में हमारे श्रोताओं को बताएं कि जो ये सतत विकास के लक्ष्य हैं ये कितने इम्पोर्टेंट हैं सभी देशों के लिए और कैसे भारत इसमें आगे बढ़ रहा है।
3: देखिए, संयुक्त राष्ट्र में जब 2015 में एक सतत विकास लक्ष्य तय किया गया था और इसका उद्देश्य था कि 2030 तक दुनिया से गरीबी समाप्त करी जाएगी, पर्यावरण की रक्षा की जाएगी और सभी के लिए समृद्ध एवं समावेशी विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें भारत ने बड़ी पहल की और इसे 2026 तक में ही उसने एक तैयार किया खाका और 277 मानकों पर आधारित 17 SDG जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तैयार किया और इसमें जो बनाया गया वो सबसे पहला है गरीबी समाप्त करना, यानी सभी तरह की गरीबी को हर जगह से उन्मूलन इसका किया जाए और इसके लिए भारत सरकार ने बहुत मेहनत से पूरे देश में इसको लागू किया है और इसका मतलब यह है कि अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, सभी आयु वर्ग लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और सुनिश्चित करना, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ और स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, इसके अलावा समानताएं किसी भी तरह की किसी को नहीं होनी चाहिए, हर व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो बेसिक सुविधाएं होती है, मूलभूत सुविधाएं होती हैं, यानी कोई भी व्यक्ति बाहर खुले में शौच करने के लिए बाध्य न हो उसकी ये सुविधा मिलनी चाहिए, यानी बेसिक चीजें होनी चाहिए, उसके बच्चे को स्कूल मिलना चाहिए, हर गरीब आदमी को जितनी भी उसकी जरूरतें होती हैं बेसिक, सबसे पहला उद्देश्य था भारत सरकार का कि उनको कैसे हम दिया जाए। दूसरा था कि उनको स्वास्थ्य कैसे उनका सही किया जाए, सभी आयु वर्ग के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण उनका निश्चित करना इसका उद्देश्य था। तीसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन सबको प्राइमरी मिल रही थी लेकिन प्राइमरी एजुकेशन से कैसे आगे बढ़ा जाए, ड्रॉप आउट ना हो, बच्चे स्कूल जाएं तो वो फिर आगे की शिक्षा ले सकें, सबसे बड़ी जरूरत थी। इस देश में लैंगिक समानता,
2: बिल्कुल,

0: जेंडर इक्वलिटी, जैसे इस रिपोर्ट में भी आप अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं को कहा जाता था कि कुशल महिला मजदूर हमारे देश में कम उपलब्ध होती हैं वनस्पति पुरुषों के, लेकिन इस रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के जो स्किलफुलनेस है वो बढ़ी है, यानी उनकी निपुणता प्रवीणता काम करने की दक्षता में सुधार हुआ है। और यह एक बड़ा संकेत है इस देश के लिए कि जिस वर्ग को हम हाशिए पर रखकर चलते थे महिलाओं को, उस वर्ग की भागीदारी इस देश के विकास में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा स्वच्छता क्लीनलीनेस, जिसके लिए प्रधानमंत्री जब से सत्ता में आए हैं 2014 से, जब से इन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला है, तब से इस देश में स्वच्छता का एक कल्चर डेवलप हुआ है जो लोगों को यह बता रहा है कि स्वच्छता से क्या क्या मिल सकता है। और हमें लगता है कि यह हर व्यक्ति तक पहुंचाने में यह सरकार सफल रही है।
1: बिल्कुल, आपने जैसा कि बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं के बारे में हमारे श्रोताओं को बताया कि कैसे सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में इन पैमानों को रखा जाता है, और इसमें आंकड़ा भी सामने आया है जिस पर मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहूंगा कि जो सोशल प्रोटेक्शन है यानी सामाजिक सुरक्षा का दायरा है वो 2016 में करीब 22% आबादी तक थी, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं इन रिपोर्टों में उनके मुताबिक ये कवरेज 65% से भी ज्यादा आबादी तक पहुंचा है। इसके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे ये संभव हुआ है और इसको कैसे मापा जाता है।
0: सतत विकास लक्ष्य का जो हमारे 17 तय किए गए हैं, ये 100% कवरेज होनी चाहिए, हर व्यक्ति को ये सुविधा मिलनी चाहिए, खास तौर से जिन्हें जरूरत है। और ये 22% से अगर 65% हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जिन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक से नहीं मिलती थी, जिन एक सीमित दायरे में ही स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त सरकारी सबको मिला करती थी, जिनका दायरा बढ़ा है। जैसे आयुष्मान को अगर हम ले लें, आयुष्मान की सुविधा जो भी उसके योग्य होगा, दक्ष होगा, उसके लिए होगा, वो सबको उपलब्ध होने लगी है। इसका सीधा सा मतलब है कि सबके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, सबके बच्चे को प्री एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक की सुविधा देने की सरकार कोशिश कर रही है कि हर तरह की सुविधाएं उन्हें मिले। इस देश में IIM, IITs और इस तरह के विश्वविद्यालयों की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को इसमें कैसे समाहित किया जाएगा, सरकार ने इस तरह की सुविधाएं बढ़ाई है, IIM की संख्या बढ़ी है, IIT की संख्या बढ़ी है, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है, मेडिकल कॉलेजों में सीट्स की संख्या बढ़ी है। तो इससे क्या है कि ये दायरा बढ़ने का मूल वजह ये है। दूसरा है कि खाद्यान्न की सुविधा, आप सोचिए इस देश में 2/3 आबादी को यानी करीब करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज सरकार की ओर से मिलता है। इसका यह मतलब है कि जिन्हें जरूरत होगी मुफ्त अनाज की, उन्हें मुफ्त भी दिया जा रहा है, यानी सरकार किसी को भी भुखमरी का शिकार नहीं होने देगी। एक हमारे 17 जो गोल्स हैं, इसमें एक गोल भुखमरी का भी है कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा इस देश में। जो हंगर इंडेक्स में हम कभी बहुत पीछे हुआ करते थे, उसी को देखते हुए ये बात लाई गई कि भला हमारे देश में इतना अनाज पैदा होता है, खाद्यान्न सुरक्षा हमारी इतनी मजबूत है, सब कुछ सुविधाएं हैं, हर व्यक्ति को उपलब्ध है, तो इससे क्या हुआ कि दायरा बढ़ गया।
1: बिल्कुल, आपने जैसा कि विस्तार से बताया कैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य की स्थिति में और मूलभूत सुविधाओं में जो बढ़ोतरी हुई है, उससे निश्चित तौर पर जो विकास के मानक है या संकेतक है वो ऊपर आए हैं। इसी तरह से आपने लैंगिक समानता की बात की, तो अपने श्रोताओं के साथ मैं ये आंकड़ा जरूर यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि 2015 से 17 के बीच प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 896 थी, जिसे हम सेक्स रेशियो एट बर्थ कहते हैं, यानी जन्म के वक्त लैंगिक जो अनुपात होता है, जन्म के वक्त लैंगिक अनुपात बढ़कर 2022 से 24 में ये हो गया 918, और आगे आने वाले समय में इसके और तेज गति से बढ़ने की संभावना है। इसी तरह से जो तकनीकी क्षेत्र में कौशल की हमने चर्चा की, उसमें महिलाओं की भागीदारी 2022-23 में जो 48% थी वो 2025 में बढ़कर 51% हुई। एक मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ रोजगार पर। हमने इन रिपोर्ट्स में ये देखा कि जो पहले बेरोजगारी दर 6% थी वो घटकर अब 3.1% के आसपास आ गई है, तो बेरोजगारी दर के घटने के किन कारणों को आप देखते हैं और कैसे ये संभव हो रहा है?
0: देखिए, बेरोजगारी का घटना इस देश में सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंच रही है, सरकार जो सोच रही है वो लोगों तक पहुंचाने में सफल है। सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि लोगों को कैसे रोजी और रोजगार उपलब्ध कराया जाए। रोजगार के मायने सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, पहले तो इस धारणा से बाहर आना होगा लोगों को। और इस देश में सरकारी और गैर सरकारी जानकारी के अलावा रोजी रोजगार छोटे उद्यमों को भी सरकार ने इस श्रेणी में रखा। छोटे मोटे रोजगार करने वाले, मान लीजिए किसी के यहाँ 5, 7, 6, 5 मतलब 10 से ज्यादा नहीं, इससे भी कम लोग काम करने वाले थे, तो पहले इनका नाम दर्ज नहीं होता था पीएफ में। सरकार ने कहा कि आखिर कैसे इसको आंकड़ा कैसे जुटाया जाए, किस मानक पर माना जाए कि ये लोग नौकरी इनको मिल गया, इम्प्लॉयमेंट मिल गया। इम्प्लॉयमेंट मिलने

0: का जो मानक माना गया है कि जिनका पीएफ कटता होगा यानी प्रोविडेंट फंड कटता होगा, भविष्य निधि में जिनकी कटौती होती होगी उन्हें मान लिया जाएगा कि उन्हें नौकरी दे दी गई। अब होता यह था कि सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरी देने में प्रॉब्लम एक आती थी पीएफ कटवाने के चक्कर में, वो उद्यमी डरता था कि किसी नए आदमी को नौकरी दे दें हम और उसका पीएफ कटने लगेगा तो सरकारी ढेर सारे हमारे पर नियम कानून लाद दिए जाएंगे और वो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, प्लस जितना पीएफ कटता है उतना और हमें तनख्वाह वेतन देना पड़ेगा। सरकार ने एक नई योजना लागू की कि नहीं, जो भी आपके पास जितने दिन भी और जितने लोग भी काम करते हैं, कम से कम हो ज्यादा से ज्यादा हो, तनख्वाह कितनी देते हैं ये आप तय करेंगे, न्यूनतम तनख्वाह से ज्यादा होनी चाहिए या न्यूनतम तनख्वाह तो मिलनी ही चाहिए, उसमें से जितनी आप पीएफ कटेगा उतना सरकार आपको एक्स्ट्रा आपको क्रेडिट करेगी आपके अकाउंट में, यानी उस उद्यमी के, यानी ताकि आपको अतिरिक्त बोझ न पड़े। इससे क्या हुआ कि हर उद्यमी इस बात के लिए खुश हो गया और अपने यहाँ जो भी लोगों को नौकरी पे रखता उनका पीएफ कटने लगा, तो ऐसे में संख्या रोजगार की बढ़ी और वो जो डेटा दिख रहा है वो क्लियर कट बता रहा है कि रोजगार बढ़ा है।
1: बिल्कुल,
0: रोजगार बढ़ने की वजह और भी है कि आप देखें कि भाई पीएफ तो नहीं कटता, आप एक चीज देखिए कि हमारे यहाँ जो ब्लू इकोनॉमी है, इस गोल में एक चीज दिया गया है ब्लू इकोनॉमी को लेके कि जल के नीचे की कैसे संरक्षित किया जाएगा, उसमें इन लोगों ने क्या किया कि भाई ब्लू इकोनॉमी हमारे देश में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमें उसमें रोजी रोजगार इस गति से बढ़ा है कि मछुआरों की जिंदगी में सुधार आया है, लोगों के जेब में पैसे जाने लगे हैं, और खेतिहर लोगों के घासों से किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है।
1: बिल्कुल, आपने विस्तार से बताया। और एक और बड़ा रोचक तथ्य यहाँ आपके सामने में रखना चाहूंगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2014-15 में प्रति व्यक्ति जो नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और आदि ऊर्जाओं को शामिल करते हैं, उसमें खपत जो थी वो 64 वाट थी प्रति व्यक्ति, वो बढ़कर अब 193 वाट पहुंच गई है। यानी अब नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल हर व्यक्ति जो 2014-15 में जिस गति से करता था उसमें 3 गुना की वृद्धि हुई है। आप कैसे देखते हैं कि देश में रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हम रुख कर रहे हैं जो कि पर्यावरण के लिए और विकास के लिए बहुत अहम है?
0: देखिए, भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है ना नवीकरणीय ऊर्जा, यानी जो वो ऊर्जा जो तेल यानी पेट्रोलियम, कोयला या ताप विद्युत गृह से नहीं आती थी, वो इन्होंने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या हाइडल यानी पानी से, जिनमें इस तरह की ऊर्जा की खपत तेजी से इसलिए बढ़ी है कि अब उसकी बड़ी वजह है क्योंकि इसका जनरेशन शुरू हुआ पहले। भाई पहले ऊर्जा होगी तो खपत होगी ना, हमारे यहाँ सप्लाई पहले बढ़ाई गई। सप्लाई बढ़ाने का मतलब कि सरकार की योजना यह है कि हर घर की छत पर बिजली पैदा होनी चाहिए, हर किसान के खेत में बिजली पैदा होनी चाहिए यानी सौर ऊर्जा पैदा होनी चाहिए, ऊर्जा पैदा होनी चाहिए। जितने भी पंपिंग सेट लगेंगे, जितने भी ट्यूबवेल लगेंगे किसानों के खेतों में, हर ट्यूबवेल के ऊपर वो योजना है कुसुम योजना। कुसुम योजना के तहत यह है कि किसान के खेत में जो उसका पंप चलेगा वो सौर ऊर्जा से चलेगा या पवन चक्की से चलेगा। तो इसका मतलब है कि देश में लाखों की संख्या में कुसुम योजना के तहत, प्रोजेक्ट के तहत किसानों के खेत में अपने ही खेत से पैदा हुई ऊर्जा, यानी जो ऊपर की धूप है, धूप से पैदा हुई ऊर्जा से खेत की सिंचाई हो रही है, ट्यूबवेल चल रहा है, बाकी उसके काम हो रहे हैं। इसी तरह से हर घर में जो खपत होती है ऊर्जा की, अपनी छत पर आदमी लगा लेता है पैनल, सौर पैनल लगा हुआ है, सोलर पैनल, और सोलर पैनल से बिजली आ रही है। बिजली से अपनी जरूरत के मुताबिक जितनी बिजली खर्चा होती है उसके अलावा जो फालतू यानी सरप्लस जो बिजली पैदा होती है वो चली जाती है सरकार के नेटवर्क में, यानी बिजली कंपनी की ओर चली जाती है, यानी वो क्रेडिट हो जाती है उसके अकाउंट में, जब उसकी जरूरत होती है तब उसका वो खर्च कर सकता है। यानी बिजली की खपत भी करता है और उस बिजली को लोगों को बेचता भी है। ऐसे में खपत बढ़ती आज स्थिति यह हो जाएगी एक दिन आने वाले दिनों में, जिस तरह से हमारे हर छत पर ऊर्जा पैदा हो रही है, सौर ऊर्जा पैदा हो रही है, आने वाले दिनों में हमें लगता है कि हमारे पास सौर ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी दैन की जो हमारे अभी ताप विद्युत गृह और हाइडल से पैदा।
1: बिल्कुल, तो कई और संकेतक हैं, जैसे पर्यावरण के मामले में भी कई सकारात्मक नतीजे आए हैं। और एक खास विषय जिस पर मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहूंगा कि देश में डिजिटल कनेक्टिविटी किस तेजी से बढ़ी है, इसका उदाहरण हमें इससे मिलता है कि करीब 32 करोड़ लोगों के पास 2015 में इंटरनेट सब्सक्रिप्शन था जो बढ़कर अब पहुंच चुका है 98 करोड़।
0: इसके सीधा सीधा मतलब है, आप समझिए, पूरी दुनिया में जिस गति से डिजिटल ताकत बढ़ी है, लोगों में ताकत आई है, इस देश की सबसे बड़ी अगर मैं कहूं आधारभूत अगर मजबूती आई है तो वो आई है डिजिटल क्रांति से। इस देश में प्रधानमंत्री की ये योजना जो डिजिटल क्रांति आई है, चाहे वो जीवन के किसी भी हिस्से में आप देख लें, भाई आप डीबीटी कैसे होता है, डीबीटी बिना फोन के तो हो नहीं सकता, फोन में तब होगा जब इंटरनेट कनेक्शन होगा, इंटरनेट कनेक्शन कहां से आ रहा है,

0: सरकार ने इतना सस्ता, दुनिया में इतना सस्ती डिजिटल सुविधा और कहीं नहीं है,
1: और पूरा इकोसिस्टम बना है,
0: पूरा इकोसिस्टम बन गया। हमारे जीवन का हर हिस्सा इसी से प्रभावित हो रहा है। हम बैंक का संचालन यहीं से कर रहे हैं, हम अपने घर के बैठे हुए यहीं पर सब कुछ देख रहे हैं। कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चीज होती है इस देश में। आप समझिए, हमारे एक जमाना था रूरल इंडिया, सबसे गरीबी का मानक क्या था मालूम है? कनेक्टिविटी का अभाव आदमी को गरीब बना देता था। कनेक्टिविटी के चलते आज छोटा सा छोटा उद्यम करने वाला व्यक्ति भी ज्यादा कमा रहा है। सिर्फ कनेक्टिविटी अगर उसकी आज कट कर दी जाए तो हमें लगता है कि उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा कट जाएगा। सरकार ने यह इतनी बड़ी ताकत लोगों के हाथ में पहुंचा दी है, डिजिटल ताकत से हमारे देश के गरीबों का सबसे बड़ा उद्धार हुआ।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सिंह साहब कार्यक्रम में जुड़े और विस्तार से आपने इन पूरी रिपोर्टों पर अपना विश्लेषण रखा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

श्रोताओं, आज के मन भवन कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मित्र शिवेंद्र शुक्ला। स्वीकारे प्यार भरा नमस्कार। आज हम अलग अलग जमाने के अलग अलग वैरायटी के गाने आपकी पसंद के लेकर आए हैं, तो लीजिए सुनिए।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। लैला मजनू फिल्म का गाना था, साहिर लुधियानवी की रचना, संगीतकार मदन मोहन। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, जावेद अख्तर की शब्द रचना, कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आवाजें हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की, फिल्म का नाम है साथ साथ। अब बारी आती है हमारे श्रोता मित्रों की, जो इन गीतों को पसंद कर रहे हैं। गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी से मनोज नामदेव, मयंक नामदेव, खुशबू, ममता नामदेव, रेखा और समस्त नामदेव परिवार ने हम तक ये पत्र भेजा हुआ है और बहुत सारी फरमाइशें हम तक आपकी लगातार चली आ रही हैं और बहुत सारे श्रोता मित्र हमें अपनी पसंद के गाने लिखकर भेज रहे हैं, तो हम उनके नाम पढ़ते हैं। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमल अनेजा ने हम तक अपनी फरमाइश भेजी है। नूरमहल मैसोल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां नाज, तलत जहां, फरज जहां, रिफत जहां, नुजहत जहां नाज, शाजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज ने भी हम तक मेल भेजा है। इसके अलावा सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी पद्मा टॉकीज नेपानगर से हम तक अपने फरमाइशें भेज रहे हैं। इसके अलावा डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिय, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय ने भी हमको मेल भेजा है। एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम, गुमला झारखंड से हम तक अपनी फरमाइश भेज रहे हैं। इसके अलावा बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन और अपार ढिंगिया ने भी हम तक अपनी फरमाइश भेजी है। अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी कलेर बिहार से, मोहम्मद आसिफ खान, निकत परवीन, और ये जो पहले नाम मैंने लिए थे वो नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से हम तक मेल भेजने वाले श्रोता मित्र थे। इसके अलावा अब ये अगला जो मेल हम तक आया है वो है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, लिखने वाले हैं मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। इसके अलावा मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और कुमकुम ने भी हम तक अपना मेल भेजा है। ये अगला मेल हम तक आया है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ इसको भेजने वाले हैं। दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह, अंशराज और समस्त परिवार वाले ग्राम खक्कल, विकासखंड नदी गांव, जिला जालौन से हम तक अपनी फरमाइशें भेज रहे हैं। गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से ये पत्र हम तक, मेल हम तक पहले ही पहुंच चुका था। और ये अगला है मुकाम पोस्ट फूलचिलौली तालुका पंढरपुर से, जाकिर मुलाड़ी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमान, मुमताज, दिलशाद, नसीर, बानूबी, बादशाह और पूरा मुलाड़ी परिवार हम तक ये अपनी फरमाइशें भेज रहा है। बहुत सारे हमारे ऐसे श्रोता मित्र हैं जिनके बारे में बता चुका हूं कि वो कई बार हम तक दो दो मेल लगातार भेज देते हैं और ऐसे में ये दिक्कतें हो जाती हैं कि कई बार नाम दो बार शामिल हो जाते हैं। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभी, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय ने हम तक ये मेल भेजा है। और इसी के साथ जो अगला मेल हम तक पहुंचा है उसे लिखने वाले हैं हमारे ये श्रोता मित्र जिनके नाम हैं राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन और गोटना जैन, मुल्लापुर दाखा से। तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुना रहे हैं साथ साथ फिल्म का ये नगमा, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में।

ये गीत आप सुन रहे थे साथ साथ फिल्म से। आवाजें थीं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की, शब्द रचना जावेद अख्तर की, संगीतकार कुलदीप सिंह। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। अनजान की शब्द रचना कल्याण जी, आनंद जी का संगीत और आवाज आशा भोसले की। पसंद करने वाले श्रोता मित्र हैं मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर। महोबा से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत और दर्श राजपूत ने हम तक अपना ये मेल पहुंचाया हुआ है और ये अगला मेल है। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से लिखने वाले हैं कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। मेल हमारे पास लगातार आते जा रहे हैं। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूर्णा राम देवांगन और कृष्णा देवांगन ने पलारी छत्तीसगढ़ से हम तक ये मेल भेजा हुआ है और इसके बाद ये अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया

बेगम मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवान परवीन और अब्दुल्ला आजाद ने भी हम तक मेल पहुंचाया हुआ है। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने भी अपना मेल हम तक पहुंचाया हुआ है और अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी का ये मेल हम तक आया है। लोहेड़ी से जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव ने भी हम तक मेल पहुंचाया है। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर मुकद्दर का सिकंदर फिल्म में सुनिए आशा भोसले को।

आशा भोसले और किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में। अनजान का गीत था कल्याण जी आनंद जी का संगीत। एक बार फिर से अनजान की रचना हम आपको सुनाने जा रहे हैं। संगीत निर्देशन बप्पी लहरी का है। आवाजें एक बार फिर से आशा भोसले और किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है शराबी। पसंद करने वाले श्रोता मित्र हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने हम तक ये पत्र भेजा हुआ है। ये लगातार मेल हम तक पहुंचने वाले हैं, पहुंच रहे हैं। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा अगला मेल हम तक पहुंचा हुआ है। लिखने वाले हमारे श्रोता मित्र हैं गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार और उनके बहुत सारे श्रोता मित्र और उनके परिवार वाले। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी ने भी हम तक ये मेल पहुंचाया है। इसके अलावा भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल साहू और चंपा साहू का मेल हम तक आया हुआ है। अगला मेल है सौराष्ट्र राजकोट से। लिखने वाले हैं जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी। इसी के साथ गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले ने भी हम तक मेल पहुंचाया है। गांव कुम्हारखेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शायना हसन, नाजिया इब्राहिम ने भी हम तक अपना मेल और अपनी पसंद पहुंचाई है। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने भी हम तक अपना ईमेल भेजा है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि बहुत सारे हमारे श्रोता मित्र हमको दो दो बार, तीन तीन बार मेल भेज रहे हैं और ऐसे स्थिति में कई बार रिपीटिशन हो जाता है, कई बार दो दो बार नाम ले लिए जाते हैं और उसके बाद फिर आपको लगता है कि अरे भाई ये क्या हुआ। फाजिल्का पंजाब खेड़ा से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाड़ी, शालनी, टिवांशी खेड़ा ने भी हम तक अपना मेल पहुंचाया हुआ है। गुनौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली ने भी अपना मेल हमें अपनी फरमाइशों के लिए भेजा है। ग्रामपोस तालगांव भांडेर जिला दतिया से मेहरबान सिंह नागल, संतोष कुमार, प्रताप सिंह, अभिषेक कुमार, शिव कुमार ने भी अपना मेल हम तक अपनी पसंद के लिए पहुंचाया है। भट्टीपुरा महोबा से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी, पंकज और आयुषी भी हम तक अपना मेल पहुंचा रही हैं। इसके बाद मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप और इसके अलावा अन्य उनके परिवार वाले और उनके बहुत सारे मित्र अपनी पसंद भेज रहे हैं। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन ने भी हम तक अपना मेल पहुंचाया हुआ है। अगला मेल हम तक आया है

एके पांडे, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश से। तो लीजिए, आप सभी की पसंद पर हम आपको कार्यक्रम का अगला नगमा सुनवाने जा रहे हैं, शराब की फिल्म से।

शराबी फिल्में आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार को। अनजान का गीत, बप्पी लहरी का संगीत। कार्यक्रम मनभावन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मित्र शिवेंद्र शुक्ला। यीशुदास की आवाज में अब हम आपको सुना रहे हैं पी पंकज का लिखा गीत राजकमल के संगीत निर्देशन में, और ये मखमली आवाज आप सुनने वाले हैं फिल्म सावन को आने दो में। पसंद करने वाले श्रोता मित्र हैं अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल और गोपी वर्मा, गोयल जिनसनावत से मोहम्मद सुफियान, हाशिम, इसाक और बब्बू तथा डब्बू ने भी हम तक मेल पहुंचाया है। कासम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रिश खत्री, नूरू मीना, इरफान मीना और कासिफ मीना ने भी हम तक मेल पहुंचाया हुआ है। इसके अलावा सादरुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ ने भी हम तक अपनी पसंद भेजी है। कंवर कॉलोनी बड़वा जिला खरगोन से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली ने भी अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है। पश्चिमपुरी दिल्ली से उत्तम सिंह जुनेजा, भूपेंद्र, सीमा, अनमोल, साहिबा गुप्ता ने भी हम तक अपना मेल पहुंचाया हुआ है और गीत की फरमाइश की है। इसके अलावा सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सफुल्ला सवाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख ने भी अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाई हुई है। अगला मेल हम तक आया है चिटे जिला सांगली से हनुमंत शिंदे, संगीता शिंदे, ऋषिकेश और वसुंधरा का, जिन्होंने ये मेल हम तक किया हुआ है। और इसके अलावा मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान ने भी मेल पहुंचाया हुआ है। रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजूर, अंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी ने भी हमें सरीला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से ये मेल पहुंचाया है। तो लीजिए यशुदास की मखमली आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं सावन को आने दो फिल्म का ये गाना।

ये आवाज थी यशुदास की, फिल्म का नाम था सावन को आने दो। कार्यक्रम का अगला नगमा आनंद बख्शी का लिखा हुआ है और इसे संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए, आवाज है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। पसंद करने वाले हैं जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से हम तक ये पहुंचाने वाले हैं। इसके अलावा रामचबूतरा कालपी से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी ने हम तक ये मेल भेजा है। संतोष खड़के, विनोद खड़ से यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से हम तक मेल भेज रहे हैं। रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जिशान खान ने हनुमानगढ़ राजस्थान से हम तक मेल पहुंचाया हुआ है। अगला मेल है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। लिखने वाले ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी दुबिया नेवादा गाजीपुर से, प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा और शायना शर्मा तथा मैंडी शर्मा का भी मेल हम तक पहुंच चुका है।

इसके अलावा जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश, प्रीतेश और पूरा संघई परिवार हम तक ये मेल पहुंचा रहा है, शुभकामनाएं भी भेज रहा है। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु का मेल हम तक पहुंचा हुआ है। बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम और कुसुम नेताम का मेल हम तक पहुंच चुका है। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने भी हम तक मेल पहुंचाया हुआ है। तो लीजिए, आप सभी की पसंद पर अब सुनते हैं एक दूजे के लिए फिल्म में लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम को।

एक दूजे के लिए। इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम को। एक बार फिर से इन्हीं दोनों की आवाजें हम आपको सुनवा रहे हैं मैंने प्यार किया फिल्म में। असद भोपाली की शब्द रचना, संगीतकार हैं राम लक्ष्मण। पसंद करने वाले श्रोता मित्र हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू। एयरपोर्ट रोड वंदन नगर इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश कार्तिक, परी और स्वाति प्रयाग चौधरी ने भी हम तक मेल पहुंचाया हुआ है। अगला मेल है अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। इसके अलावा और मेल हमारे पास जो हैं उनमें वडिंगखेड़ा से ये पहले भी मेल हमारे तक आ चुका है। रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी ने हम तक मेल पहुंचाया हुआ है और रमेश चौहान, मोहनी, कल्पित, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमाक्ष ने कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से हम तक मेल किया हुआ है। अगला मेल है जनकपुरी सहारनपुर से, लिखने वाले हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और एस के पप्पी ने हम तक ये मेल भेजा है एमएलबी रोड ग्वालियर से। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर मैंने प्यार किया फिल्म का ये नगमा।

मैंने प्यार किया फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम को। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इन सभी की पसंद पर, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, गुरौर से आदिल कमर, तस्दीक अली और मुजफ्फर अली ने भी हम तक मेल पहुंचाया हुआ है। ग्राम करेली बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, माहिनूर अंसारी।

और उनके सभी परिवार वाले। देवीदीन अहिरवार, सुनीता अहिरवार, दिनेश कुमार, कपिल और पूजा वर्मा ने पनवाड़ी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से हम तक मेल पहुंचाया है। करनाल से सुधीर नूतन संदीप ने हम तक मेल पहुंचाया हुआ है। और इसके अलावा हमारे जो अन्य श्रोता मित्र हैं उनमें रिजवान अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान का मेल हमारे पास तक आया हुआ है। इसके अलावा रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरुशब्द सिंह राहुल ने कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से हम तक मेल पहुंचाया हुआ है। तो लीजिए, आप सभी की पसंद पर हम आपको ये सुनाने जा रहे हैं। और ये सदर बाजार, मारवाड़, बिलारा, राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण और प्रतीक ने भी मेल पहुंचाया है। तो कार्यक्रम का आखिरी गाना साजन फिल्म से, आवाजें हैं कुमार सानू, एसपी बालासुब्रमण्यम, पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल की, समीर का गीत, नदीम श्रवण का संगीत।

साजन फिल्म के इस गीत के साथ ही मन भवन कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने रेडियो मित्र शिवेंद्र शुक्ला को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साढ़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है।